मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 जून 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:55 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी रेडियो मित्र स्मिता। आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात।

आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना का शुभारंभ हम कर रहे हैं समूह स्वर में गाए इस देशगान से।

अभी आपने सुना समूह स्वर में देशगान। वंदना में अब लीजिए सुनते हैं जगजीत सिंह के स्वर में ये भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में ये भक्ति रचना वंदना में। अब लीजिए सुनिए मन्ना डे और साथियों के स्वरों में ये भजन।

मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। अब लीजिए वंदना में आनंद लता मंगेशकर के गाए इस भक्ति गीत की।

0: इस शिव स्तुति के साथ ही आज की वंदना यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। चिंतन के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं श्री गुलाब सिंह के विचार। वाचक स्वर सुनील केशव देवधर्त का है।
1: कबीर ने कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहुं शीतल होए। बात बड़ी छोटी सी और उपदेशात्मक लगती है, लेकिन ये न तो छोटी है और न ही आदर्शात्मक, बल्कि ये जीवन की असलियत से इतनी जुड़ी है जितनी बहुत कम चीज़ें जुड़ी हैं। जीवन और जगत में सुख शांति की चाह रखने वाले संसार को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए ये बात अंतर्राष्ट्रीय आण्विक संधि से कम महत्वपूर्ण नहीं है। कवि ने जो मीठी बानी बोलने की बात कही है, इसके लिए सबसे जरूरी तत्व है मन का आपा खोना। ये मन का आपा क्या वस्तु है?

0: या मन में दीनता, हीनता और लघुता का बोध उपजाना, अथवा अपने अस्तित्व का विलयन या विघटन करना, या अपनी अस्मिता की पहचान को समाप्त कर देना, संभवतः ऐसा नहीं है। आपा हमारे अहम या गर्व भावना का परिचायक है, जो दूसरों के सामने अपने को बड़ा, विशिष्ट या महत्वपूर्ण सिद्ध करने की चेतना से संबद्ध है। उल्लेखनीय यह है कि संसार में जितना अकांड तांडव हुआ है, उसके पीछे व्यक्ति का ये अहम ही प्रमुख कारण रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में शांति पर बल देते हुए कहा गया है कि लड़ाई मनुष्य के मस्तिष्क से उपजती है। इसमें शक नहीं कि लड़ाई किसी भूमि या हथियार से शुरू होने के पहले मस्तिष्क से शुरू होती है। यही वो केंद्र बिंदु है जहां से लड़ाई का बीज भाव उत्पन्न होता है। इसलिए सच्चाई ये है कि जब तक हम अपनी सत्ता, संपत्ति, वैभव, बल, बुद्धि, विद्वत्ता, बड़प्पन आदि की अहम भावना का परिहार करके मन को संतुलित नहीं कर लेते, वाणी से मीठी बानी निकल ही नहीं सकती। सहज बानी बोलने के लिए हमारा सहज जीवन बोध बहुत जरूरी है। जो फरेबों में जीता है, वो सहज कैसे हो सकता है? और बिना जीवन की सहजता के वाणी का सहज होना कठिन है। कविवर प्रसाद ने कहा है कि प्रकृति के हर काम में एक गति है, एक लय है। हम देखते हैं कि झरने के झरने से लेकर पक्षी के कलरव तक एक सम है, एक लय है। लेकिन मनुष्य है कि उसने अपने राग को बेसुरा बना लिया है। परिणाम ये होता है कि मानव समाज में आपसी मनमुटाव, कलह से लेकर युद्धों तक की स्थिति है। भाई भाई लड़ रहे हैं, एक ही धर्म के मानने वाले एक दूसरे को तबाह कर रहे हैं, और मजा ये कि इसका प्रचार करते हुए अपने को गर्वोन्नत समझ रहे हैं। कारण क्या है? संभवतः आपा न खोने की बात। जब हम आपा नहीं खोते तो हमारी जबान कतरनी की तरह चलती है। जबान ऐसा घाव करती है जो कभी भरता नहीं। इतिहास या पुराकथाओं की दुनिया में जाएं तो पता चलेगा कि महाभारत की लड़ाई का एक कारण यह भी था कि द्रौपदी ने दुर्योधन पर यह कटाक्ष किया था कि अंधों के अंधे ही होते हैं। इस कथन ने विनाश की लीला को आमंत्रित किया। इतना ही नहीं, पांडवों को जहां वनवास की त्रासद पीड़ा भोगनी पड़ी, वहीं महाभारत के भयानक विनाश तांडव को भी सहना पड़ा। खुद द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ। इसलिए यदि हम अपने अहम को संबंधों के बीच में बाधक न बनने दें और उचित समय पर सार्थक बात सही शब्दों में कहें, तो निश्चित रूप से एक बृहत्तर सामाजिक उपकार कर सकते हैं। संभवतः इसी को लक्ष्य करके संस्कृत के नीतिकार ने कहा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यमप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य न बोलो। तात्पर्य ये कि सत्य बोलना श्रेयस्कर है, लेकिन उससे भी श्रेयस्कर है प्रिय बोलना। प्रिय बोलने का अर्थ चाटुकारी या खुशामत करना नहीं है, बल्कि शब्दों के एक विशेष अनुक्रम से है जिसमें ध्वनि और बलाघात का सही उपयोग किया गया हो, क्योंकि विभिन्न ध्वनियों और बलाघात के परिवर्तन से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इसी को कहते हैं कि बिना पद के कोई पदार्थ नहीं होता। पद से ही व्यक्ति की मानसिकता जुड़ी होती है। इसमें अहम का विसर्जन या घोल प्रस्तुत करके ही ऐसी बानी बोली जा सकती है जो दूसरों को सुख देती है और अपने को मानसिक शांति।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत श्री गुलाब सिंह के विचार, वाचक स्वर सुनील केशव देवधर का था। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

रावण ने छल कपट करके सीता जी का हरण किया। साधारण मनुष्यों की भांति दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम से लौटते हुए शिव जी ने प्रभु को देखा तो उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। उन्होंने उन्हें सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और अपने मार्ग पर चलते रहे। सती के मन में शंकर की यह दशा देखकर संदेह उत्पन्न हो गया। उन्हें शंका हुई कि जो स्वयं जगत का ईश्वर है, देवता मनुष्य तथा मुनि जिसके सामने सिर नवाते हैं, क्या वह एक राजपुत्र को इस प्रकार प्रणाम करेगा?

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा। आज की सामयिक चर्चा का विषय है कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे बढ़ाएं। जानकारी दे रहे हैं SS चौधरी।
1: किसान भाइयों, हम सबकी यही कोशिश होती है कि हम जो भी फसल बोएं उससे हमको अधिक से अधिक लाभ मिले, और ये तभी संभव है जब हम सही समय पे बोनी करेंगे, सही समय पे खाद उर्वरक का प्रयोग करेंगे और जो वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की जा रही नवीनतम तकनीक है उसका खेती में ठीक से प्रयोग करेंगे, तभी हम कम लागत में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कुछ किसान भाई कहते हैं कि फसल की लागत लगातार बढ़ रही है इसलिए खेती में मुनाफा कम है, तो हम आपको बताएं कि बहुत सी ऐसी छोटी छोटी

0: जाते हैं, जिनको यदि हम ध्यान में रखें तो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति भी अच्छी रहेगी और कम लागत में अच्छा से अच्छा हम उत्पादन ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी ये होता है कि समय पे एक तो हम बोनी करें, फिर उन्नत बीज कृषि अनुसंधान संस्थानों, पंजीकृत संस्थाओं, कृषि विश्वविद्यालयों, इनसे ही लेना चाहिए और खुला बीज न लें। फसलों को रोग मुक्त और स्वस्थ रखने के लिए बीज उपचार बहुत ही जरूरी है। इसके लिए कवकनाशी, एग्रोसांजीएन, थायरम, कैप्टान, इसकी 2 ग्राम दवा प्रति किलो बीज में मिला करके यदि हम उपचारित कर लें तो करीब 50-70% रोग कम किए जा सकते हैं जो फसलों में लगते हैं। इसी तरह से कीट नियंत्रण के लिए समन्वित, यानी जिसको हम कहते हैं समन्वित कीट नियंत्रण प्रबंधन तकनीक, इसको अपनाएं। रासायनिक दवाएं हम कम डालें, इनकी जगह नीम पाद कीट भक्षी कीट हैं और जीवाणु, इनका ज्यादा से ज्यादा खेती में प्रयोग करें। इसी तरह से जो घनी बुवाई कहीं कहीं हो जाती है तो हमें निराई का खर्च करना पड़ता है। अच्छा ये रहता है कि हम सही बीज का प्रयोग करें, उचित पौध संख्या बनाए रखें और जो बोनी है वो कतारों में ही करें, तो इससे काफ़ी कुछ खर्च को कम किया जा सकता है। बीज की मात्रा ज़्यादा नहीं देना है, कतारों में बोने से खरपतवार के नियंत्रण में भी सुविधा रहती है और जो बोनी करेंगे वो लाइन से यदि करेंगे तो सिंचाई आदि बहुत सी खेती की क्रियाएँ हैं उनको करने में सुविधा रहती है। फिर फसल चक्र अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। यदि फसलों को बदल बदल करके, हेर फेर करके हम बोते हैं तो फिर क्या है कि जो फसलों में कीट लगते हैं, कीट और रोग लगते हैं, उनकी लगने की संभावना बहुत कम रहेगी। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए हम फसलों को हेर फेर करके यानी फसल चक्र की मदद जरूर लें। पानी की बचत के लिए स्प्रिंकलर, ड्रिप, इन पद्धतियों को अपनाएं, इससे करीब 70% पानी की बचत हो जाती है। इसी तरह से समन्वित पोषक तत्वों द्वारा आवश्यक पोषण दें, अर्थात फसलों को आवश्यक पोषण तत्व रासायनिक उर्वरकों, कार्बनिक पदार्थ और जैविक पदार्थों को मिलाकर दें, इससे उपज और भूमि की उपजाऊ शक्ति टिकाऊ बनी रहेगी। बीज, दवा, खाद क्रय करते समय गुणवत्ता की सुनिश्चितता हेतु पक्की रसीद अवश्य प्राप्त करें। ये भी ध्यान रखें कि मिट्टी का परीक्षण कराकर ही एक संतुलित मात्रा में खाद उर्वरक का प्रयोग करें। श्रम और लागत कम करने के लिए सदैव उन्नत कृषि यंत्रों का ही प्रयोग करें तो काम जो है तकनीक से ही होगा। कृषि में प्राकृतिक जोखिम कम करने के लिए कारगर उपाय जैसे एकांतर कृषि पद्धति, कृषि वानिकी को अपनाएं। इस पद्धति को अपनाने से क्या होता है, पर्यावरण भी ठीक रहता है, पशुओं को चारा भी मिल जाता है। इसी तरह से कृषि विविधीकरण को अपनाएं तो इसके जो खेती के साथ साथ दूसरे सहायक व्यवसाय हैं, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, सब्जी उत्पादन, तो इन सबको यदि अपनाएं तो एक तो खेती में जोखिम कम रहता है और दूसरी फसल से कुछ ना कुछ अतिरिक्त लाभ भी मिल जाता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है अनाज का भंडारण। जो भी हमें उत्पाद मिले उसका सही समय पर यदि भंडारण करें, उचित तकनीक से करें, तो फिर अनाज बर्बाद नहीं होगा और अच्छे दाम भी मिलेंगे। तो ये सब कुछ बातें हैं, बहुत जरूरी हैं। ये बातें ध्यान में रखेंगे तो किसान भाई हमारी खेती में लागत कम आएगी और अच्छा लाभ भी मिलेगा।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। आज की कृषि चर्चा में सामयिक चर्चा का विषय था कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे बढ़ाएं। जानकारी दे रहे थे SS चौधरी। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।
2: मन की बात है जन जन की बात, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700001।

0: 42।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: सड़क पर गाड़ी चलाते समय पैदल चलने वालों का ध्यान रखें। ट्रैफिक सिग्नल पर निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें। यदि सिग्नल पर टाइमर 90 सेकंड रुकने का निर्देश दे तो इंजन बंद कर दें। बेवजह ईंधन की खपत ना करें। प्रदूषण भी ना बढ़ाएं। हरी बत्ती मिलने पर हॉर्न बजाते हुए आगे जाने की जल्दबाजी ना करें। ये दुर्घटना को बढ़ावा तो देगा ही, ध्वनि प्रदूषण से चालकों का तनाव भी बढ़ाएगा। सड़क पर चलने का हक सबको है, इसलिए सबका ध्यान रखें।

0: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।
1: धरती माँ की यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन पांच तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।
2: अरे क्या बात है, आज तो तुम बड़ो ही नोनो गीत गा रही हो। और जो तो बई गीत है, जाके हम फरमाइश की चिट्ठी लिखकर भेजा थे और हमारी पसंद को लोक गीत हमारी जिज्जी हमें लोक माधुरी में भी सुनवाऊ थी।
3: हाँ, खूब ही सही चीज ना तुमने, जो बई लोक गीत है और आज हम जी को जासे गा रहे कि आज हमारा मन बहुत ही उल्लास में है।
2: काय ऐसो का होगा जिज्जी?
3: अपना जो पसंदीदा कार्यक्रम लोक माधुरी को हम सभी सुन सकते हैं हर सोमवार शाम 7:21 से 8 बजे के बीच।
2: जिज्जी जाके लाने अपने को चिट्ठी कैसे भेजनी होगी?
3: अरे चिट्ठी विट्ठी छोड़ो, अब हम हो गए डिजिटल, सो अब हम लिख के भेजेंगे अपनी फरमाइश व्हाट्सएप पे।
2: तो जीजी जाको व्हाट्सएप नंबर का है?
3: डायरी तनक खोलो और जल्दी से लिख लो, 9425702768। तो याद भाव कि नहीं, तनक बताओ तो जल्दी से,
2: 9425702768।
3: तो आप अपनी पसंद को लोकगीत के बोल और कलाकार को नाम हमें जा नंबर पे व्हाट्सएप करो, को आपकी पसंद को लोकगीत लोक माधुरी कार्यक्रम में जरूर ही सुनवाएं।
2: तो सुनना न भूले हर सोमवार शाम को 7:21 से 8 बजे के बीच लोक माधुरी।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरम् अद्य आरभ्यमाणस्य 25वें G7 शिखर सम्मेलनस्य आयोजनाय सज्जः अस्ति। आल्पस पर्वत श्रेण्याः लेमनाख्य सरोवरस्य च मध्ये स्थितं सुरम्यं लेक्सेंड नगरं वैश्विक कूटनीतेः केन्द्ररूपेण परिवर्तितमस्ति, यत्र नेतारः प्रतिनिधयश्च त्रिदिवसीयेस्मिन् कार्यक्रमे

0: गच्छन्ति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रों अद्य अपराह्णे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान इत्यादीनां G7 राष्ट्राणां नेतृणां यूरोपीय परिषदः यूरोपीय आयोगस्य च अध्यक्षैः सह औपचारिकरूपेण स्वागतं करिष्यति। अयं शिखरसम्मेलनं तस्मिन् समये भवति यदा विश्वं भूराजनैतिकसङ्कटैः आर्थिक अनिश्चिततया नूतनप्रौद्योगिकीनां द्रुतविकासेन च ग्रसितमस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः आउटरीच इत्येतेषु सत्रेषु भागं ग्रहीष्यति। शिखर सम्मेलने भारतस्य सहभागित्वेन प्रमुख वैश्विक विषयेषु चर्चासु योगदानं कुर्वन् वैश्विक दक्षिणस्य प्राथमिकताः चिन्ताः च प्रकाशयितुम् अवसराः प्राप्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन सह विस्तृत चर्चां विधाय भारत फ्रांस विशेष वैश्विक सामरिक सहभागित्वं सुदृढं कर्तुं चर्चासु भागम् अगृह्णन् फ्रांस देशस्य नीस नगरस्य स्वयात्रा समापिता। विदेशमन्त्रालयेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः फ्रांस देशस्य यात्रायाः परिणामे विशेषसूचनाः प्रदत्ताः। सूचनायां विदेशसचिवः विक्रम मिश्री फ्रांस भारत नवान्वेषणस्य मार्गचित्रं 30+2000 इति अस्याः यात्रायाः प्रमुखं परिणामम् इति वर्णितवान्, यस्योद्देश्यं महत्वपूर्ण उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीषु कृत्रिमबुद्धिमत्ता संशोधनेषु शैक्षणिक विनिमयेषु च सहयोगं सुदृढं कर्तुमस्ति। उत्तरप्रदेशस्य गौतमबुद्धनगरस्य जेवरनगरे स्थितात् नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकात् वाणिज्यविमानसेवाः अद्य आरभ्यन्ते। इण्डिगो एयरलाइन्स् संस्थया प्रथमं विमानं लखनऊतः प्रातः 5:07 प्रचालयिष्यते। नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके प्रातः 5:08 तद्विमानम् आगमिष्यति। तदनन्तरं नोएडा नगरात् बेंगलुरुनगरं प्रति प्रथमं नियमितं वाणिज्यिक विमानम् अपि प्रचलिष्यति। एकं विमानं लखनऊनगरं प्रति प्रस्थास्यति। जेवरस्य एमएलए धीरेन्द्र सिंहेन सह प्रथमे विमाने 20 महिलाभिः सह 270+ यावत् कृषकाः भविष्यन्ति। एते कृषकाः ते सन्ति येषां भूमिः विमानस्थानकस्य कृते अधिगृहीता आसीत्। लखनऊनगरं प्राप्य एते कृषकाः मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन सह मिलित्वा कार्तज्ञतां प्रकटयिष्यन्ति। अद्य विश्ववायुदिवसः आचर्यते। पवनशक्तेः जलवायुपरिवर्तनं प्रतिरोधे तस्यां भूमिकां च प्रोत्साहनाय प्रतिवर्षं जूनमासस्य 15 दिनाङ्के अयं दिवसः आचर्यते। भारतम् अद्य गोवाराज्ये 26+2000 वैश्विकवायुदिवससम्मेलनस्य आयोजनं करिष्यति। सम्मेलने सर्वकारेण नियामकैः विकासकैः निर्मातृभिः विशेषज्ञैः च सह पूर्णोपवेशनं करिष्यति। महिलानाम् ICC 20x20 विश्वचषकक्रीडायां वर्मिंघम् नगरस्य एज्वेस्टन् नगरे ग्रूपे क्रीडायां भारतेन पाकिस्तानदलं 64 धावनाङ्कैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही वैश्विक तेल आपूर्ति के 1/5 हिस्से का परिवहन करने वाला हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन का योगदान दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। भारत अब 17 जून को नीदरलैंड से खेलेगा। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया है। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुन सकेंगे डॉक्टर जगदीश सलील से काव्य पाठ। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे हमारे ग्वालियर केंद्र से।

7:30 पर, सुबह 8:30 पर आप सुन सकेंगे सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ कलाकार होंगी रश्मि सासोड़े। सुबह 9:00 आप सुन सकेंगे सूचनाओं और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। 9:30 पर आप आनंद लेंगे शास्त्रीय संगीत का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे रंजना तोंडपे का गायन, राग होगा रामकली। 10:05 पर आप सुन सकेंगे अपनी ही पसंद की फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। सुबह 11:00 से दोपहर 3:00 तक सभी कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। हमारे शाम की सभा आरंभ होती है हमारे युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी से। 5:02 पर आप सुन सकेंगे युववाणी कार्यक्रम, जो हमारे भोपाल केंद्र की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर, शाम 6:30 पर, शाम 8:15 पर और रात 10:00। शाम 6:00 आप सुन सकेंगे NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। 6:40 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आजकल। 7:20 पर हमारे ग्रामीण श्रोता सुनते हैं अपना कार्यक्रम चौपाल। ये कार्यक्रम हमारे ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति होगी। आज इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और अटल पेंशन योजना। साथ ही कार्यक्रम के अंतर्गत सुनवाई जाएगी हमारे श्रोता साथियों के पसंद के लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। 9:15 पर आप सुन सकेंगे उर्दू समाचार। 9:30 पर आप आनंद लेंगे अपनी ही पसंद की फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का। ये फरमाइशी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से। 10:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम राग रंजनी। श्रोताओं, ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों का रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया की यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। NTA ने नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए और प्रदेश में अगले 4 दिनों तक आंधी और बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू 18 जून को इंदौर आएंगी और यहां से वे बैतूल में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ओंकारेश्वर पहुंचेंगी, जहां वे शाम को ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन कर आरती में शामिल होंगी। अगले दिन 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। वे अगले दिन इंदौर से पश्चिम बंगाल के कलाईकुंड जाएंगी। वहीं राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू 20 जून को शाम को जबलपुर आएंगी। अगले दिन 21 जून को वे जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। श्रीमती मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें कॉन्क्लेव दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। 22 जून को वे कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण भी करेंगी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियान शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश भाग लेंगे। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया की 2 दिन की यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये वहां की पहली यात्रा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने विषय पर आज भोपाल में विभागीय परामर्श कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। कार्यशाला का उद्देश्य राज्य शासन के विभिन्न विभागों में साइबर सुरक्षा से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों, उभरते साइबर खतरों, डेटा संरक्षण की आवश्यकताओं और डिजिटल शासन प्रणालियों की सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श करना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के ग्राम बेरखड़ी जेतु में कृषि विज्ञान केंद्र के भूमि पूजन एवं खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में शामिल होकर सहभागिता की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विदिशा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है।
1: बेरखेड़ी जेतु में ये कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसा केंद्र होगा जो देश और दुनिया में हो रहे रिसर्च को तत्काल किसानों तक पहुंचाने का काम करेगा। अलग अलग किसान कैसे उन्नत खेती करें, कम जमीन में भी कैसे लाभकारी खेती की जाए, इसलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल भी यहाँ तैयार होंगे। बेहतर कृषि पद्धतियों का प्रदर्शन करके कैसे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, उस पर भी यह काम होगा। यहाँ एग्री क्लिनिक भी स्थापित होगा। AI का उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कैसे उन्नत खेती कर सकते हैं, इस पर भी यह काम होगा।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। अब रुक करते हैं एक अच्छी खबर का। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदेश के आलोट तहसील स्थित खमरिया गांव की महिलाएं हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से बिना मिट्टी के मवेशियों के लिए हरा चारा उगाकर अपनी आमदनी में कई गुना वृद्धि कर रही हैं। और अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी रतलाम संवाददाता अदिति मिश्रा।
3: सरकार की योजनाओं और महिलाओं की मेहनत जब एक साथ जुड़ती है तो बदलाव की नई मिसाल सामने आती है। रतलाम जिले के आलोट विकास खंड के ग्राम खमरिया में महिलाओं ने हाइड्रोपोनिक्स तकनीक अपनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। ग्राम खमरिया स्थित श्री राड़ी माता गौशाला का संचालन कन्हैया स्वयं सहायता समूह की 11 महिलाएं मिलकर कर रही हैं। पहले ये महिलाएं कृषि मजदूरी और सीमित आय पर निर्भर थीं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद कम पानी और कम लागत में ही 7 से 10 दिनों के भीतर पौष्टिक हरा चारा तैयार होने लगा।

0: का स्वयं सहायता समूह की ही महिला मधु बताती हैं कि
1: पहले हम लोग गांव में मजदूरी करके घर चलाते थे, पर आमदनी कम थी। गौशाला में भी चारा नहीं था, पर सरकार की योजना से आजीविका मिशन से जुड़ के नया तकनीकी प्रशिक्षण मिला। अब हम कम पानी में कम खर्चा में हरा चारा बहुत जल्दी बना लें।
0: अब समूह की महिलाएं गोबर खाद निर्माण, जैविक खाद विक्रय और नर्सरी विकास जैसी गतिविधियों से अतिरिक्त आय अर्जित करने के साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर लखपति दीदी बनने की दिशा में बढ़ रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज पेश है पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों पर एक रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार GST, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के GST ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। पढ़ना सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में सक्रिय ट्रफ लाइन और अन्य मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश और गरज चमक का दौर बना रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने विदिशा, रायसेन और सागर जिलों में तेज आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 18 जून के आसपास मध्य प्रदेश में मानसून का प्रवेश हो सकता है। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप में बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेले गए ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से हरा दिया। भारत ने अपने पारंपरिक प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम 17 ओवर में 106 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। स्मृति मंधाना ने 44 गेंदों में 68 रनों की पारी खेली, वहीं दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे मैच में बांग्लादेश ने नीदरलैंड पर 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कल लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के साथ रानी दुर्गावती फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। राजगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना और पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला चिकित्सालय झाबुआ में कल रक्तदान शिविर का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने किया। इंदौर में 16 से 18 जून तक जिले के प्रत्येक विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालय पर 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर लगाए जाएंगे। नर्मदापुरम में कल विशेष सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीधी में लोक कल्याण मेला के तहत PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत विशेष ऋण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। डिंडौरी में कल 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर में कुल 120 आवेदनों का निराकरण किया गया। धार में रबी फसल ऋण को जमा करने के अंतिम दिन आज ऋण को जमा कर किसान 0% ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने की योजना का लाभ उठा सकते हैं। शिवपुरी जिले में कल महिला हिंसा निवारण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवास में कल ग्राम पंचायत पालनगर और नागदा में कृषक संगोष्ठी और खेत पाठशाला का आयोजन किया गया। मुरैना में कल एक यात्री ट्रेन से कुचलकर 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ये लोग आग की अफवाह के चलते दूसरी ट्रेन से उतरकर पटरी पर आ गए थे और कटनी में एक यात्री बस और हाईवा की टक्कर में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 29 लोग घायल हो गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 7:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है काव्य पावट। लीजिए सुनिए डॉक्टर जगदीश सलील से काव्य पाठ।
1: ये कविता पढ़ रहा हूँ,

ये कविता है वर्तमान। वर्तमान वो जिसमें हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं उस ज़िंदगी के बारे में कुछ बात इसमें मैंने अपनी तरह से कही है। वर्तमान इस तरह की ज़िंदगी को किस तरह से जिया जाए, इस तरह की ज़िंदगी को किस तरह से जिया जाए, आंसुओं का ये समंदर किस तरह से पिया जाए, इस तरह की ज़िंदगी को किस तरह से जिया जाए, आंसुओं का ये समंदर किस तरह से पिया जाए। सोचता हूँ मैं कि जीवन भार क्यों है, सोचता हूँ मैं कि जीवन भार क्यों है, और आग में झुलसा हुआ सा प्यार क्यों है। सोचता हूँ मैं कि जीवन भार क्यों है, आग में झुलसा हुआ सा प्यार क्यों है, क्यों बुझे से हो गए हैं स्वप्न सारे, क्यों बुझे से हो गए हैं स्वप्न सारे, हर दिशा का बदलता आकार क्यों है। सोचता हूँ मैं कि जीवन भार क्यों है, आग में झुलसा हुआ सा प्यार क्यों है, क्यों बुझे से हो गए हैं स्वप्न सारे, हर दिशा का बदलता आकार क्यों है। ये धरा धुंधली नहीं हो आंधियों से, ये धरा धुंधली नहीं हो आंधियों से, सोचता हूँ मैं बताओ क्या किया जाए, इस तरह की ज़िंदगी को किस तरह से जिया जाए, आंसुओं का ये समंदर किस तरह से पिया जाए। रूप क्यों बदरूप होता जा रहा है, रूप क्यों बदरूप होता जा रहा है, आसमां पर क्यों अंधेरा छा रहा है, रूप क्यों बदरूप होता जा रहा है, आसमां पर क्यों अंधेरा छा रहा है, बदलियों को छांटना मुश्किल नहीं है, बदलियों को छांटना मुश्किल नहीं है, क्यों अंधेरा और घिरता रहा है, रूप क्यों बदरूप होता जा रहा है, आसमां पर क्यों अंधेरा छा रहा है, बदलियों को छांटना मुश्किल नहीं है, क्यों अंधेरा और घिरता आ रहा है। मिटा दो काली लकीरों की स्याही, मिटा दो काली लकीरों की स्याही, सोचता हूँ इन्हें बढ़ने क्यों दिया जाए, इस तरह की ज़िंदगी को किस तरह से जिया जाए, आंसुओं का ये समंदर किस तरह से पिया जाए। जानता हूँ मैं कि बादल घिर रहे हैं, जानता हूँ मैं कि बादल घिर रहे हैं, वक्त बदला स्वप्न कल के लुट रहे हैं, जानता हूँ मैं कि बादल उठ रहे हैं, वक्त बदला स्वप्न कल के लुट रहे हैं, और धूल होती जा रही है जिंदगानी, धूल होती जा रही है जिंदगानी, कल तलक थे साथ वो सब छूट रहे हैं। जानता हूँ मैं कि बादल उठ रहे हैं, वक्त बदला स्वप्न कल के लुट रहे हैं, धूल होती जा रही है जिंदगानी, कल तलक थे साथ वो सब छूट रहे हैं। इस तरह बदली गई है हर कहानी, इस तरह बदली गई है हर कहानी, किस तरह अब फटे कागज को सिया जाए, किस तरह अब फटे कागज को सिया जाए, इस तरह की जिंदगी को किस तरह से जिया जाए, आंसुओं का ये समंदर किस तरह से पिया जाए। आखिरी है इस कविता का कि चाहता हूँ वक्त की रफ्तार बदलूं, चाहता हूँ वक्त की रफ्तार बदलूं, चाहता हूँ मैं क्षितिज की ओर चल दूं, चाहता हूँ वक्त की रफ्तार बदलूं, चाहता हूँ मैं क्षितिज की ओर चल दूं, लड़खड़ाने लग गए हैं पांव फिर भी, लड़खड़ाने लग गए हैं पांव फिर भी, आज थक

0: हार के काले जहर को क्यों पिया जाए, इस तरह की जिंदगी को किस तरह से जिया जाए, आंसुओं का ये समंदर किस तरह से पिया जाए। सोचता हूँ मैं कि जीवन भार क्यों है, आग में झुलसा हुआ सा प्यार क्यों है। ये एक कविता पढ़ रहा हूँ, दूसरी कुछ इसी तरह से है, कुछ अलग लेकिन आज के संदर्भ में है कि आज कुछ नई बात तुम कहो, आज कुछ नई बात तुम कहो, धार से अलग दिशा को बहो। आज कुछ नई बात तुम कहो, धार से अलग दिशा को बहो, तभी कुछ बात नई होगी, तभी कुछ रात नई होगी। आज कुछ नई बात तुम कहो, धार से अलग दिशा को बहो, तभी कुछ बात नई होगी, तभी कुछ रात नई होगी। सुबह का हल्दी मला शरीर, नाज नखरों में पला शरीर। सुबह का हल्दी मला शरीर, नाज नखरों में पला शरीर, कंवारे गुल मेहंदी से अधर, कहीं पर बिकी हुई सी नजर। सुबह का हल्दी मला शरीर, नाज नखरों में पला शरीर, कंवारे गुल मेहंदी से अधर, कहीं पर बिकी हुई सी नजर। लाजवंती अनब्याही उषा पहनकर किरणों की चोली लगाती है मेरी बोली। लाजवंती अनब्याही उषा पहनकर किरणों की चोली लगाती है मेरी बोली। अगर मैं बिका रूप के हाथ, सुहानी रात नहीं होगी, सृजन की बात नहीं होगी। आज कुछ नई बात तुम कहो, धार से अलग दिशा को बहो। आखिरी है इसका कि बादलों ने मिल माया रची, रात भर काफी हलचल मची। बादलों ने मिल माया रची, रात भर काफी हलचल मची। चांद के तन को काला किया, बुझाया घर घर जलता दिया। अंधेरे को सब शासन सौंप, चला दिन बनने सन्यासी। अंधेरे को सब शासन सौंप, चला दिन बनने सन्यासी। जगाने अलख चला काशी। अगर मैं भी मल राख चलूं, अगर मैं भी मल राख चलूं, चांदनी रात नहीं होगी, सुबह की बात नहीं होगी। आज कुछ नई बात तुम कहो, धार से अलग दिशा को बहो।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर जगदीश सलील से काव्य पाठ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म बहारें फिर भी आएंगी का गीत। गीत के बोल लिखे थे अनजान ने और संगीत ओपी नैयर का था। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त स्मिता। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ों में, फिल्म कश्मीर की कली से। गीत SH बिहारी का है और संगीत OP नैयर का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म कश्मीर की कली का गीत। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आकाशवाणी ग्वालियर आपकी सेवा में है।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त स्मिता। सुनते हैं अगला गीत फिल्म मासूम से। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है रॉबिन चटर्जी ने और आवाज़ है आरती मुखर्जी की।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में फिल्म हम दोनों का ये गीत। सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ में। फिल्म का नाम है फिर वही दिल लाया हूँ। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत ओपी नैयर का है। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म वही दिल लाया हूँ का गीत। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म मेरे सनम से। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत रचना ओपी नैयर की है। आवाज़ एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी की।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: सब्जियों के 2000
2: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
6: हॉर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया।

0: समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
0: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवीआर फ्रांस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थीं। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
4: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
5: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
6: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
5: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
7: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे या पूरे देश में ट्रेन चले।
5: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
8: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के DNA में शामिल, वीर अर्जुन ने PM के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार, अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है, आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार, पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा, विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है, एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ानें। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा, वे खुद संगठन को परखें।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंस मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। US एंड ईरान रीच अग्रीमेंट टू एंड मिलिट्री ऑपरेशंस, ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड लिफ्ट US नेवल ब्लॉकेड ऑफ इरानियन पोर्ट्स। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Evian in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. National Testing Agency releases admit cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And now the news in detail. The United States and Iran finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry 1/5 of the global oil supplies. US President Donald Trump made the announcement on Truth Social last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. We have a report.
10: The peace agreement will be signed on June 19 in Switzerland. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. He said this great deal will bring peace and security to the whole region. The agreement calls for the United States of America and Iran to negotiate over Iran's nuclear enrichment and the disposal of its highly enriched uranium during a 60-day window. Iran's Supreme National Security Council said that the war and military operations on all fronts, including Lebanon, will end permanently starting tonight. Oil prices fell on the news. Brent crude futures fell 4% in early trading today, while US West Texas Intermediate slid more than 4.6%. Stock markets in Asia jumped. Komudi Parekh for Akashwani News, Delhi.
9: Leaders across the world have welcomed the peace deal announced between the United States and Iran, describing it as a major diplomatic breakthrough that could help restore stability in West Asia. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to Slovakia after completing the first leg of his visit to Nice in France. Mr. Modi said that this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. In a social media post, Mr. Modi also said that he is looking forward to productive meetings with Slovakia's President Peter Pellegrini and Prime Minister Robert Fico. This is the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovakia since its independence in 1993. The visit by Mr. Modi follows President Draupadi Murmu's state visit to Slovakia in April last year and Slovak President Peter Pellegrini's visit to India for the AI Impact Summit in February this year. The visit reaffirms India's commitment towards strengthening its bilateral relationship with Slovakia in various sectors, including trade, investment, and automobile and railway manufacturing. Our correspondent reports that upon his arrival in Bratislava, Mr. Modi was given a warm welcome and accorded a traditional Slovak hospitality.
11: Prime Minister Narendra Modi was received by Slovak Foreign Minister Juraj Blanar upon his arrival in Bratislava last night. Members of the Indian diaspora gathered in Bratislava welcomed him with slogans upon his arrival. Slovak musicians of the Luknisa ensemble performed Vande Mataram on the Prime Minister's arrival. Sri Narendra Modi will be accorded a ceremonial welcome today in Bratislava. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News from Bratislava.
9: The 52nd G7 summit will begin at Avignon in France today. The three-day event is being attended by G7 members, Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US and European Union. In addition to the members, France has invited India, Brazil, Egypt, Kenya, South Korea, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Ukraine and UAE as outreach partner countries. This will be the 13th time that India will participate in the G7 summit as a partner country. Prime Minister Narendra Modi will participate in outreach sessions tomorrow. His participation in the G7 summit underscores India's important role in global geopolitics. India is important for the G7 as a premier economic powerhouse, a diplomatic bridge to the developing world, and a strategic anchor in the Indo-Pacific. A report from our correspondent.
2: As the summit gets underway, reducing global imbalances has emerged as the central priority of the host nation's G7 presidency. According to the official summit framework, leaders will deliberate on geopolitical challenges, international peace and security, balanced economic growth and key global crises during the closed-door sessions beginning today. Prime Minister Narendra Modi will participate in the outreach sessions tomorrow. India's participation in the summit will provide an opportunity to highlight the priorities and concerns of the Global South while contributing to deliberations on key global issues. Ankit Kumar, Akashvani News, Avignon, France.
9: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Commercial flight services from the Noida International Airport, located at Jewar in Gautam Buddha Nagar of Uttar Pradesh, began this morning. Our correspondent has filed this report.
4: Built in Jewar along the Yamuna Expressway Industrial Development Authority region, the airport was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on March 28 this year. The land acquisition for the airport spans around 1,334 hectares, which is nearly 3,300 acres. The airport, which has been developed as a major aviation hub, will have initial passenger handling capacity of 1.2 crore travelers in its first phase. In the future, it is expected to become a global aviation hub with the capacity of 22.5 crore passengers. In its final phase, the airport will have 5 runways, placing it among the largest airports in the world. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, Lucknow.
9: India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal, Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the steps taken by the government for building modern infrastructure with the vision of making India Viksit Bharat by 2047.
12: A strong and modern nation is built on the foundations of world-class infrastructure. Over the past 12 years, India has embarked on an unprecedented journey of transformation, making infrastructure-led development the cornerstone of its growth story. This commitment is reflected in a six-fold increase in government expenditure on infrastructure, rising from 2 lakh crore rupees in 2014-15 to 12.2 lakh crore rupees in the current financial year. India's metro rail network has expanded nearly fivefold from 248 kilometers to 1100 kilometers today, making cities more connected, efficient and commuter friendly. Talking to Akashwani News, a Delhi resident, Alisha, who commutes with Delhi Metro daily, has shared her experience.
6: Metro to hamari lifeline ban chuki hai.
13: Metro has really become our lifeline. I have to go to Gurugram every day for my office, for which I use the metro. Traveling in the metro is convenient and comfortable, but along with that, the good thing is that it is completely safe. Because of its being safe, my family and I remain worry free.
12: India today has the world's second largest road network. The national highway network has expanded from over 91,000 kilometers in 2014 to over 1,46,000 kilometers in 2026. Budgetary support for Indian Railways has increased nearly 9 times from 32,000 crore rupees in 2014-15 to 2.78 lakh crore rupees now. This investment has powered modernization and improved passenger experience across the network. A symbol of this new era is the Vande Bharat train, with 162 services now operational, it reducing travel time up to 45%. Talking to Akashwani News, a frequent traveler of Vande Bharat from Lucknow, Pooja said that the train is comfortable and it saves a lot of time.
6: Traveling in the Vande Bharat train brings immense joy. Ever since the Vande Bharat train services started, we mostly travel by it. It is an absolutely excellent train, and the best part about it is that it saves a lot of time during the journey and the seats are very comfortable.
12: Together, these achievements are creating a faster, more connected and more prosperous India, laying the foundation for a Viksit Bharat by 2047. Saklain Akhtar for Akashwani News, Delhi.
9: The National Testing Agency, NTA, has released the admit cards for the NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical education. Candidates can download their admit cards from NTA's official website, neet.nta.nic.in. The re-examination is scheduled to be held on 21st of this month from 2 p.m. to 5:15 p.m. NTA has advised the candidates that they should verify their bank account details for refund before downloading the admit card. The 19th Mumbai International Film Festival will begin today. The formal opening ceremony will be held at Mumbai's Ravindranath Mandir in the evening, whereas the screenings of films will begin from the morning. This year, the competition section comprises 144 films, including 52 international and 92 national entries, representing filmmakers from 13 countries, whereas the non-competition section will feature a total of 202 films, including 106 international titles and 96 national films from 46 participating countries. On to sports. In ICC Women's T20

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं सुगम संगीत का। सुगम संगीत में अब हम आपको सुनवा रहे हैं रश्मि सासोड़े के गाए ये भजन।

0: रश्मि सासोड़े के गाए इस भक्ति रचना के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया की दो दिन की यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कूनो अभयारण्य जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने विषय पर आज भोपाल में विभागीय परामर्श कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। इसमें साइबर सुरक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। मुरैना में पातालकोट एक्सप्रेस से कुचलकर 4 यात्रियों की मृत्यु हो गई है। ये यात्री खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग की अफवाह के कारण उससे उतरकर पटरी पर आ गए थे, तभी दूसरी तरफ से ट्रेन आ गई। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप में बर्मिंघम में खेले गए ग्रुप ए के मैच में कल भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से हरा दिया और प्रदेश में अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश और गरज चमक का दौर बना रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने विदिशा, रायसेन और सागर जिलों में तेज आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 9 बज रहे हैं। अब वक्त है सूचनाओं, समाचारों और नगमों के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर का।

सूचनाओं, समाचारों और मधुर नगमों के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त स्मिता। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और उत्साह से भरपूर हमारे ग्वालियर केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। श्रोताओं, कहते हैं जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला अनुभव है और अनुभव की सबसे समृद्ध पुस्तक हमारे बुजुर्ग होते हैं। जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है उस घर में सुख, शांति और संस्कार स्वयं ही निवास करते हैं। हमारे जीवन में घर के बड़े बुजुर्गों की एक विशेष भूमिका होती है दोस्तों। उनके अनुभव

उनका स्नेह, उनका मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं। बचपन से लेकर जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ तक वे हमारे लिए एक मजबूत सहारे की तरह खड़े होते हैं। लेकिन दुख की बात है कि आज समाज में अनेक बुजुर्ग शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। इसी गंभीर विषय के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, बुजुर्गों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार केवल मारपीट तक सीमित नहीं है। कई बार उन्हें अपमानित करना, उनकी बातों को अनसुना करना, उन्हें अकेला छोड़ देना या उनकी भावनाओं को अनदेखी करना भी मानसिक प्रताड़ना का रूप ही है। वहीं उनकी पेंशन या संपत्ति का जबरन अधिकार जमाना आर्थिक शोषण कहलाता है। समय पर भोजन, दवाइयाँ और उचित देखभाल ना देना भी एक प्रकार की उपेक्षा है। ज़रा सोचिए, जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा परिवार, समाज के निर्माण में लगा दिया, यदि उन्हें अपने ही घर में सम्मान और सुरक्षा ना मिले तो यह कितनी पीड़ादायक स्थिति होगी। आज के इस विशेष दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने घर के बुजुर्गों को समय देंगे, उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उन्हें यह महसूस कराएंगे कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो। कभी कभी कुछ मिनटों की बातचीत, एक मुस्कान या हालचाल पूछ लेना भी उनके जीवन में खुशी भर देता है। दोस्तों, यदि हमारे आसपास कोई बुजुर्ग किसी प्रकार की प्रताड़ना या उपेक्षा का शिकार हो रहा है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। समाज और प्रशासन की सहायता लेकर उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। तो आइए, इस अवसर पर हम सब मिलकर यह संदेश फैलाएं कि बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और अनुभवों के जीवंत स्रोत हैं। उनका सम्मान करना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें प्रेमपूर्ण वातावरण देना हम सभी का कर्तव्य है। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर हम सभी अपने जीवन के उन सभी अनमोल लोगों को धन्यवाद दें जिनके अनुभवों की छाँव में हमने अपने जीवन जीना सीखा है। बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी मुस्कान का ध्यान रखें, उनकी मुस्कान का हिस्सा बनें। यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो विशेषकर ये दिन उनके लिए समर्पित करें आज का, और यही सच्ची सेवा है, यही संस्कार है, यही है हमारा सबसे बड़ा उपहार।

0: बिल्कुल सही कहा है। ज़िंदगी में कुछ मकाम ऐसे होते हैं जो गुज़र जाते हैं, वो वापस नहीं आते। इसलिए हमें भी ये याद रखना चाहिए कि बुज़ुर्ग उस पेड़ की छांव की तरह होते हैं जिनकी कीमत अक्सर धूप निकल जाने के बाद समझ में आती है। तो दोस्तों, फ़िलहाल कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और सुन लेते हैं ये महत्वपूर्ण सूचना।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, आज के इस आधुनिक और डिजिटल युग में हमारा मोबाइल फोन हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। बैंकिंग से लेकर खरीदी तक, पढ़ाई से लेकर मनोरंजन तक, हम अपने अनेक दैनिक कार्य मोबाइल और इंटरनेट की मदद से आसानी से कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मॉल, होटल, रेस्टोरां या फिर किसी भी अन्य सार्वजनिक स्थान पर उपलब्ध फ्री और बिना पासवर्ड वाले वाईफाई नेटवर्क का उपयोग किया है? यदि आपका जवाब हाँ है तो अब समय है थोड़ा सावधान होने का। दोस्तों, अक्सर हम मुफ्त इंटरनेट के लालच में किसी भी खुले वाईफाई नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। हमें लगता है कि इससे हमारा मोबाइल डेटा बचेगा और काम भी आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये छोटी सी लापरवाही हमारी निजी जानकारियों को खतरे में डाल सकती है। साइबर अपराधी कई बार ऐसे नकली वाईफाई नेटवर्क तैयार कर देते हैं जो बिल्कुल असली नेटवर्क जैसे दिखाई देते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति उससे कनेक्ट होता है, उसकी निजी जानकारियाँ, पासवर्ड, बैंकिंग डिटेल्स, ईमेल और अन्य महत्वपूर्ण डेटा चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इस तरह के किसी भी वाईफाई नेटवर्क जब आपको पब्लिकली अवेलेबल हो तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, यदि संभव हो तो ऑटो कनेक्ट फीचर को बंद रखें। इससे आपका फ़ोन किसी अज्ञात नेटवर्क से स्वतः नहीं जुड़ेगा। दूसरी बात, वाईफाई से कनेक्ट करने के पहले नेटवर्क का नाम और उसकी सर्टिफिकेशन अवश्य जांच लें। किसी भी संदिग्ध या अनजान नेटवर्क से जुड़ने से बचें। और तीसरी खास बात ये कि सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल्स, डिजिटल भुगतान या संवेदनशील जानकारी साझा करने से बचें। दोस्तों, तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाती है, लेकिन उसका सुरक्षित उपयोग करना भी उतना ही आवश्यक है। याद रखिए, सुरक्षा में ही समझदारी है और सावधानी ही डिजिटल सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। जागरूक व्यक्ति केवल अवसरों को ही नहीं पहचानता, बल्कि खतरों को भी समय से पहले समझ लेता है। तो आइए हम सभी ये संकल्प लें कि डिजिटल दुनिया में कदम रखते समय सुरक्षा के नियमों का पालन ज़रूर करेंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाएंगे। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अब समय है कार्यक्रम में आगे बढ़ने का और सुनने का एक शानदार गीत।

Jumbo

दोस्तों जीवन का एक अनमोल हिस्सा है हमारा परिवार, हमारे अपने लोग, जिनके लिए हम हमेशा अग्रसर रहते हैं कुछ भी अच्छा करने के लिए, और उनके लिए ही अपना जीवन पूरा समर्पित करते हैं और सपने देखते हैं आने वाले अच्छे भविष्य का। सपने देखने, उन्हें पूरा करने और अपने परिवार तथा समाज के लिए कुछ अच्छा करने का अवसर हमें जीवन ही देता है। लेकिन कई बार कुछ गलत आदतें, बुरी संगत हमें ऐसे रास्ते पर ले जाती हैं जहां से लौटना आसान नहीं होता। कहा भी गया है, नशा किसी समस्या का समाधान नहीं बल्कि अनेक समस्याओं की शुरुआत है। और इसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज हम आपसे बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 की। दोस्तों नशा केवल एक व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उसका परिवार, समाज और पूरा भविष्य इसकी कीमत चुकाता है। यदि हम इस बात पर ध्यान रखें और आसपास भी अपने लोगों को जागरूक करें कि नशे से दूरी बनाना है, तो हमारा भी समाज के लिए एक ये बहुत अच्छा कदम हो सकता है। और नशा ही वो कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश को ड्रग फ्री मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये संकल्प हम सब मिलकर बिल्कुल निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। इस लक्ष्य को सरकार 15 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक प्रदेश के सभी जिलों में नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 इस नाम से अभियान चलाया जाएगा। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं और किशोरों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना तथा समाज और पुलिस के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है, क्योंकि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल कानून की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। दोस्तों आज का युवा देश का भविष्य है। यदि युवा स्वस्थ, जागरूक और सकारात्मक सोच वाला होगा तभी हमारा समाज और राष्ट्र मजबूत बन सकेगा। लेकिन नशे की लत धीरे धीरे व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर देती है। नशा न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है बल्कि पढ़ाई, करियर, रिश्तों और सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी गहरा प्रभाव डालता है। कई बार लोग उत्सुकता, दोस्तों के दबाव या तनाव के कारण नशे के ओर कदम बढ़ा देते हैं, लेकिन बाद में यही आदत एक गंभीर समस्या बन जाती है। इसलिए इस अभियान के अंतर्गत पुलिस और नारकोटिक्स विंग द्वारा स्कूलों, कॉलेजों और स्थानीय समुदायों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। युवाओं को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी जाएगी, काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा ज़रूरतमंद लोगों के पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों ये अभियान केवल जानकारी देने का नहीं बल्कि जीवन बचाने का अभियान है। याद रखिए, जो नशे से दूरी रखता है वही अपने सपनों से नज़दीकी बनाए रखता है, और मजबूत इंसान वह नहीं जो गलत रास्ते पर चल पड़े बल्कि वह है जो हर प्रलोभन के बावजूद सही रास्ता चुन सके। तो आइए हम सब मिलकर इस संकल्प लें और हम भी इस बात को बहुत अपने ध्यान में रखें कि ना स्वयं किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करेंगे, ना ही अपने मित्रों, परिजनों को या आसपास के लोगों को इसकी ओर बढ़ने देंगे। यदि कहीं नशे से संबंधित गतिविधियां दिखाई दें तो
संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी देकर समाज को सुरक्षित बनाने में अपना योगदान देंगे। क्योंकि दोस्तों, नशे से दूरी है ज़रूरी, तभी जीवन बनेगा खुशियों से भरपूर। इसी सकारात्मक संदेश के साथ आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं कार्यक्रम में ये मधुर सा गीत।

दोस्तों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। तो हर दिन कुछ नया सीखिए, जिज्ञासु बनिए और अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहिए। और मुझे दीजिए अनुमति, फिलहाल अब समय हो गया है 9:30। तो सुनते रहिए आकाशवाणी ग्वालियर से प्रसारित सभी कार्यक्रमों को और इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त स्मिता को। नमस्कार, आपका दिन मंगल हो। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और अपने आसपास सकारात्मक विचारों को फैलाते रहें।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर, आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं रंजना तोंडपे का गायन, राग है रामकली।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाया रंजना टोंटपे का गायन, राग था रामकली। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

6:15 से 7:35 तक एक विशेष ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रतलाम से प्रतिभागियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। नगरपालिका परिसर रतलाम में 12 से 14 जून तक 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया। पूरे जिले में आलोट, जावरा, ताल, बड़ावदा, सैलाना, धामनोद, नामली, पिपलोदा आदि क्षेत्रों में जन कल्याण शिविरों के माध्यम से आम जनता की समस्याएं सुनी जा रही हैं। जन प्रतिनिधियों अधिकारियों द्वारा उनका मौके पर ही निराकरण भी किया जा रहा है। जिले में रतलाम शहर समेत अधिकांश नगरीय निकायों में शिविरों का आयोजन हो चुका है, जबकि कुछ बचे हुए शिविरों का आयोजन 17 जून तक किया जाएगा। शिविर के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और रतलाम विधायक चैतन्य कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में हुए विकास कार्यों का सिलसिला निरंतर जारी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जनसेवा और जन कल्याण के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। उनका लक्ष्य है कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक सीधे उनके घर पहुंचकर उपलब्ध कराया जाए। बीते दिनों कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मिश्रा सिंह की अध्यक्षता में नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम के संशोधन के संबंध में राजनीतिक दलों की बैठक का आयोजन किया गया। प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण 25 जून तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य निर्धारित समय सीमा में गंभीरता एवं पारदर्शिता के साथ पूर्ण किया जाएगा। संशोधित कार्यक्रम के तहत फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 18 जुलाई को निर्धारित स्थानों पर किया जाएगा। इस दौरान मतदाता सूची को त्रुटि रहित, अद्यतन और व्यवस्थित बनाने पर विशेष काम किया जाएगा। बीते दिनों आत्मा योजना के अंतर्गत विकासखंड पिपलोदा की ग्राम पंचायत में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसानों को प्राकृतिक खेती, ई टोकन प्रणाली एवं नरवाई प्रबंधन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र कालूहेड़ा के वैज्ञानिकों ने खेत बचाओ अभियान, मिट्टी परीक्षण और संतुलित उर्वरक उपयोग के संबंध में जानकारी दी। पिछले दिनों जिले के विभिन्न शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जिले में 1395 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, आवश्यक उपचार एवं प्रबंधन किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर संध्या बेलसरे ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को 100% गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर 616 गर्भवती महिलाओं की जांच एवं उपचार किया गया। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। पिछले दिनों जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित कर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान शिशु के जन्म के 6 माह तक और 6 माह के पश्चात पोषण संबंधी महत्व आदि पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। बीते दिनों जावरा तहसील के ग्राम बीमाखेड़ी में नकली दूध बनाने की फैक्ट्री की सूचना पर पुलिस प्रशासन एवं राजस्व विभाग तथा खाद्य औषधि प्रशासन के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। प्रदेश में वर्ष 2028 में होने वाले उज्जैन संघस्थ महामेले के आयोजन की तैयारियां भी चल रही हैं। पिछले दिनों कलेक्टर मीशा सिंह और एसपी अमित कुमार ने जिले की विभिन्न सीमा क्षेत्रों और उज्जैन से आने जाने वाले रास्तों पर संघस्थ के दौरान आने वाले ट्रैफिक के प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर बैठकें की। रतलाम जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आपके अपने पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त स्मिता। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म गाइड से। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है एसडी बर्मन ने और आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता साथी, जो हमें लिखते हैं मैसेज, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नरसीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म गाइड से।

श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता साथी ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार सचिन वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार संचित वायाल, कुमार सर्वद देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना देशमुख, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु मुकेश जगताप। इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है फाजिल्का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा लाड़ी खेड़ा, विशाल खेड़ा शालिनी खेड़ा, टिवानशी खेड़ा और नई बस्ती गुंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौशीफ हाजमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म जब जब फूल खिले से। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने और आवाज़ लता मंगेशकर की है।

श्रोताओं सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है इज्जत। साहिर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और अपने मधुर स्वर से इस गीत को सजाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी। ये गीत सुनने की फरमाइश करते हैं हमारे श्रोता साथी मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाज़ार रेडियो बाज़ार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरू निशा सबिश्ता मोहम्मद नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी संदलपुर आंतरी से कालीचरण यादव उर्मिला देवी दीपक और चांदनी यादव ग्वालियर से ही सलामत खान सोनाबाई सौदागर संतर मुरार से गिरीश मिश्रा गुड्डू मिश्रा और निशा मिश्रा हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकलम नफीसा प्रवीण। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में फिल्म इज्जत से।

श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमारे श्रोता साथी सुनना चाहते हैं। गुंज डुंडवारा से शमसूल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैज़ान खान, अन्नू खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी। जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातिमा नाज। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी और शबनम बानो। चंद्रनगर सहारनपुर से महेंद्र यादव, सुरेश यादव और आशा यादव, नरेंद्र यादव। खंडवा से दुर्गा कुमारी, सपना और राकेश ताई। जेल रोड रायगढ़ से निशा डोमिन, उमा डोमिन और जानवी डोमिन। रायगढ़ बिहार से उमाराज, पवन उमा, संजय उमा, दीपक उमा और कमल उमा। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म नया दौर से। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है ओपी नैयर ने, आवाज़ आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की।

श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से, बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जिक्रा डावर, बेबी आयशा खत्री। घूंघट रेडियो श्रोता संघ जिलाधार धर्मपुरी से मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाकिर खत्री। इंदिरा विहार दिल्ली से वसीम अंसारी, बेबी अंसारी और यामिनी राज। जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र यादव, महेंद्र और जानवी यादव। जेल रोड बक्सर से राज अंसारी, शिल्पी राज और उमा राज। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह बेगम, शबनम अस्मा नाज और बेगम प्रमीला जाटव। बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवान परवीन अब्दुल्ला आज़ाद। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, राजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म किस्मत से।

0: श्रोताओं सुनते हैं अगला गीत। हमारे श्रोता साथी लिखते हैं हम मैसेज, गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोत्रा गुरशबद। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। पटियाला रोड गुंज डांडवारा से, उत्तर प्रदेश से ये लिखते हैं हमें, एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी, आकिल कुरैशी और बेबी अरीबा हबीबा। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। हयात कॉलोनी अररिया से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, नफीसा प्रवीण। चरडोगरी पिपरिया, जिला कबीरा धाम, छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी माया साहू, जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़, हिंगड़ी आलोटा जिला रतलाम एमपी मध्य प्रदेश से। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फिल्म का नाम है 20 साल बाद। शकील बदायूनी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है हेमंत कुमार ने, आवाज़ भी हेमंत कुमार की। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर गीत।
1: हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आए।

सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता साथी रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता, यशराज, ऋषि, कृष्णा और समस्त शिंदे और घोड़के परिवार। यही गीत सुनना चाहते हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरुशब्द सिंह राहुल, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से। पप्पू श्रोता क्लब, मेन रोड, फारबीसगंज, बिहार से। प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक पीहू कुमार बिमल और नवतरण हाता, बाड़ी हाट, पूर्णिया, बिहार से। ममता रानी, छवि अनोखी, अर्पिता लाडो, दीक्षा देव, देवांशु और डब्लू जी, शाहजी नगर, देगलू, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र से। संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या, सविता भाकरे और समस्त भाकरे परिवार। हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे, प्रिया सरोदे, विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े, वैभव शिंदे, मित्रनगर, बीड़ शहर, महाराष्ट्र से। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म काला पानी से। आनंद लीजिए आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की युगल स्वरों में ये गीत का।

0: छोड़ो
1: छोड़ दिया था हाथ मलोगे समझे
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के।

श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, फिल्म पतिता से। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने, आवाज़ें हैं हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की। इस गीत को सुनना चाहते हैं नेत्राम गोड़िया, सरोज गोड़िया, शशि कुमार गोड़िया, भावना गोड़िया, नीरज गोड़िया, अर्चना गोड़िया, आद्या श्रेया देवांशु, न्यू बजरंग कॉलोनी, राजा गैस गोदाम, गोलपहाड़िया लश्कर ग्वालियर से, ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, डंगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफा की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म पपीता से।

श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत। फिल्म का नाम है हम दोनों। साहिर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है जयदेव ने और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की। इस गीत को सुनना चाहते हैं सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोड़ाना, संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत फिल्म हम दोनों से।

इस गीत के साथ ही फरमाइशी गीतों का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह घोषणा की। अमरीका ईरान समझौते से भारतीय शेयर बाजारों में उछाल रहा। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत दूसरे चरण के अंतिम दिन 13 जून तक प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में 182,473 विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त कर लिया है। NCTE पाठ्यक्रमों के प्रथम चरण में आवंटित विद्यार्थियों के लिए प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आज है। राज्य आनंद संस्थान द्वारा आज से 19 जून तक 5 दिवसीय ऑनलाइन अल्पविराम प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक आवेदक राज्य आनंद संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट anandsansthanmp.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। आज विश्व वायु दिवस मनाया जा रहा है। पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 15 जून को यह दिवस मनाया जाता है। भारत आज गोवा में विश्व वायु दिवस 2026 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है, जबकि फिल्मों का प्रदर्शन कल सुबह से शुरू किया जाएगा और तुर्की के अंताल्या में 2026 तीरंदाजी विश्व कप के तीरंदाज धीरज बोमा देवरा ने अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। वहीं रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में भी उनको स्वर्ण पदक हासिल हुआ है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुनें।

0: कहीं चिलचिलाती गर्मी तो कहीं बेसब्री से आसमान की ओर ताकती हुई निगाहें, कहीं खूबसूरत सौंधी खुशबू से लबरेज ठंडी ठंडी बयारें। यही तो है मौसम, यही तो है ज़िंदगी। चलिए, मौसम को तो ना हम बदल सकते हैं ना आप, बस हम प्रतीक्षा कर सकते हैं कि आपके यहाँ भी बादलों की ये जमावट बसे, बादलों की ये जमावट बरसे। फ़िलहाल हम आपकी खूबसूरत बातों और खूबसूरत गीतों के साथ इस माहौल को खुशनुमा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए सुनते हैं फ़ोन इन कार्यक्रम, फ़ोन करें, गीत सुनें। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, मध्य प्रदेश प्रसारण ना?
0: जी हाँ, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं। आपका परिचय हम जानना चाहते हैं।
1: हाँ, मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
0: आज हम आपसे बातें करें उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इन दिनों पुणे का मौसम कैसा है?
1: यहाँ तो सर बिल्कुल भी बारिश नहीं है।
0: अच्छा,
1: सूखा पड़ा हुआ है यहाँ पे।
0: ओह,
1: एक बूंद भी पानी नहीं गिरा है अभी। आज तो 14 तारीख हो गई, फिर भी कोई बारिश का पता नहीं है अभी।
0: लगभग हमारे देश के अनेक हिस्सों में धीरे धीरे मानसून दस्तक दे रहा है, कहीं कहीं प्री मानसून के हालात बने हुए हैं, थोड़ी बहुत बारिश हुई है, लेकिन पुणे में पानी नहीं पहुंचा है।
1: नहीं
0: जी,
1: जरा भी नहीं है।
0: हाँ, तो गर्मी भीषण होगी।
1: हाँ जी, गर्मी तो बहुत है, पसीना आते रहता है। गीली गर्मी पड़ रही है, अभी जून का महीना है। और
0: जी जी जी, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द एक दो दिन के भीतर ही आपके यहाँ पर भी उम्मीदों की बरसात हो।
1: हाँ जी
0: जी जी, बताइए श्रीपाद जी, आज कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
1: हाँ जी, हमें सुनना है फिल्म हमारी याद आएगी मैं का गाना सुनना है, लता मंगेशकर और मुकेश ने गाया हुआ है। पूछता हूँ ये क्या किया मैंने।

0: दर्द ले लिया मैंने।
1: हेलो,
2: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते सर, राधिका बात कर रही हूँ नीमच से।
2: कैसे हैं राधिका जी?
1: पर हम नीमच ही बोलते हैं, के गांव में से बोले आवाज, गांव में रहते हैं।
2: अच्छा जी, क्या हाल है इन दिनों नीमच के?
1: सर बढ़िया है, गर्मी पड़ रही है भयंकर की, पानी का नामो निशान नहीं अभी तक, छीटे छाटे आते हैं, मौसम बनता लेकिन उमस होती है बहुत।
2: चलिए, देर सवेर आपके यहाँ पे भी मानसून पहुँच ही जाएगा। उम्मीद हम ये करते हैं कि जल्द से जल्द पहुँचे, आपको राहत मिले। फिलहाल कोई ऐसा गीत बताइए जिससे मौसम आपके यहाँ का बदल जाए।
1: सर गाने मेरे को ना वो सुनना है, गाने का तो मेरे को मूवी का नाम याद नहीं है और गाने की भी बीच की लाइन याद है ना, भीगी
2: हाँ, बताइए।
1: भीगी रात में दिल का थामन दाम ले, ये गाने की लाइन है सर। मेरे को ना गाने के बोल भी याद नहीं, मेरे एकदम से फोन लग गया ना मेरा।
2: अच्छा जी,
1: आ जा सनम मधुर चांदनी में हम,
2: अच्छा, आ जा सनम मधुर चांदनी में हम।
1: गाने के बोल याद है सर, बस मूवी का नाम नहीं।
2: आपने फ़ोन किया राधिका जी, इसके लिए हम आपको देते हैं बहुत
1: थैंक यू।
2: बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: अरे श्रीमान जी को नमस्कारम।
1: नमस्कारम जी।
0: अरे कमाल हो गए सर जी, ये मान के चलिए सदियों गुजर गए तब कहीं जाके फोन लगा है, और अभी भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि सर जी श्रीमान जी से भगवान से कि कल फोन लग जाए, नहीं तो समझ लो कि मैं दुबला पड़ जाता हूँ, खाना भी नहीं खाता सर।
1: अच्छा जी।
0: कहते हैं सर जी, अजीज होता है ना हबीब होता है,
1: हाँ।
0: दूर होता है ना करीब होता है, और अमीर होता है ना गरीब होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। और अच्छा दोस्त जो वक्त में साथ दे दे वही सबसे अच्छा दोस्त होता है श्रीमान जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी आपके इस वक्त को बहुत हसीन बनाना चाहते हैं। आप अपना तारुफ दीजिए।
0: अरे सर जी, अब तो मैं पता भी बता दूंगा, गाने भी सुन लूंगा, तभी तो मजा आएगा। और चूंकि जब फोन लग जाता है बातें मायने रखती हैं, गाना तो एक बहाना होता है। सर जी मैं पता बता दूं अपना।
1: जी।
0: ग्राम कल्पा जिला सतना से हिंदुस्तानी कलाकार चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना ईडन गार्डन अशोक वाटिका से बोल रहा हूँ सर जी।
1: खान साहब, हमने आपको जान लिया था, लेकिन हमारे बाकी के श्रोताओं के लिए हम आपका परिचय जानना चाहते थे।
0: अरे सर जी क्यों नहीं जानेंगे, आप हमारे दिल में बसे हैं और हम आपके दिल में बसे हैं, भाभी जान भी तड़प रही हैं बेचैन।
2: नमस्कार भाई साहब,
1: नमस्कार जी। नमस्कार जी।
2: आप कैसे हैं?
1: हम तो बहुत खैरियत से हैं और चाहते हैं कि आप भी बहुत सुकून से हों।
2: जी भाई साहब,
0: अब ये मान के चलिए सर जी, हम दोनों लोग मिलजुल करके अभी अचार रख रहे थे, मैं आम काट रहा था और ये मसाला गूंज रही थी।
1: बहुत
0: दोनों
1: बढ़िया।
0: लोग जी जी श्रीमान जी, दोनों लोग मिल के काम कर लेते हैं और साथ में आपको फोन लगाते रहे, तो फोन तो इन्हीं ने लगाया है, मैं तो हार गया आपकी भाभी जान ने।
1: तो ये कितने दिनों बाद फोन लगा है ये भी बता दें।
0: अरे सर जी मुझे तो लगता है, अब मैंने गिनती तो नहीं गिना लेकिन महीनों तो होते होंगे मेरे
1: चलिए,
0: श्रीमान
1: आपकी बेसब्री आपकी आवाज़ से झलक रही है।
0: जी। हाँ सर जी, और गाना सर जी बता दूं, गंगा की सौगंध का ही सुनवा देना सर जी, क्योंकि गाने हमारे कुछ अलग हटके होते हैं,
1: हाँ
0: धुआंधार होते हैं और धांसू होते हैं, जिसमें आप लोगों को नाचने के लिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल को ऑल वर्ल्ड के श्रोताओं को मजबूर कर दे सर जी। हाँ तो गाना वो है सर जी, हम दोनों लोग गुनगुना ले फिर बता दूंगा, लता और किशोर जी की आवाज में है वो गाना। आंख लड़ी हमसे जो आंख लड़ी रे, तो धनो रानी तेरी नानी मर जाएगी,
2: लंबू तेरी लाली उतर जाएगी, लंबू तेरी लाली उतर जाएगी। नमस्कार भाई साहब।
1: नमस्कार जी। नमस्कार जी। हम कोशिश करेंगे ये गीत आपको जरूर सुनवाएं।
0: जी सर जी, है आपके पास श्रीमान जी, और आप भी नाम बता देंगे, दिनेश भैया बोल रहे हैं।
1: नहीं नहीं जी, आज इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ, आपका दोस्त शिवम।
0: अरे कमाल हो गए सर जी, आप तो कहते सत्य ही शिव है शिवम ही सुंदरम है, आप तो बहुत अति सुंदर है, आपकी आवाज में वो जादू है कि जाना होता है कहीं और खींचे आपकी ओर चले जाते हैं सर जी, और ना जाने आपने बातों ही बातों में अपना बनाना और ये हुनर आपने सीखा कहाँ से श्रीमान जी।
1: बस जी, ये सब कुछ आपकी इनायत है। हम तो सिर्फ अपने सभी श्रोताओं के लिए कोशिश करते हैं कि उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्यक्रम बना सकें, पेश कर
0: सर जी
1: सकें।
0: एक रिक्वेस्ट और, अच्छा ये गाना मैं प्रेमदास बाबा जी के साथ में सुनूंगा, उनका नाम ले लूं, बुजुर्ग हैं भैया वो, क्योंकि अगर उनका नाम ले लूं तो थोड़ा उनको खुशी मिलती है, और हमारे बहुत ही बुजुर्ग श्रोता ये आ कहना चाहता हूँ सजीत जी
1: बिल्कुल
0: का।
1: बिल्कुल। खान साहब, आपका गीत हम पेश किए देते हैं, आपने
0: जी
1: कॉल
0: जी
1: किया इसके लिए आपको देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद,
0: जी
1: शुक्रिया।
0: धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम सर जी।
3: अरे आंख लड़ी।

0: बंदर ओ बोरी बंदर
1: नहीं
0: और बंदर घोड़ बंदर बोरी बंदर बाड़ी बंदर
1: ना ना ना ना नहीं
0: ओ तो फिर आजा मेरे दिल के अंदर आजा आजा आजा आजा।
2: हेलो नमस्कार मैम
3: जी नमस्कार
2: सर नमस्कार सर नमस्कार बिल्कुल थैंक यू सर
3: इंतजार पूरा हुआ
2: इंतजार की घड़ी खत्म हुई सर
3: जी इंतजार के लिए जैसे आंखें पथराती है वैसे हमारे कान भी पथरा जाते हैं हमारे श्रोताओं की आवाज सुनने के लिए बताइए किन से हमारी बातें हो रही
2: हैं मधुर आवाज सच्ची सीधी आवाजों के जादूगर अगर है तो विविध भारती भोपाल के सारी स्टाफ
3: ये आपका प्यार है मोहब्बत है किन से हमारी बात हो रही है
2: मैं कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी मनमोजी बोल रहा हूँ सर
3: अच्छा जी नियाज भाई
2: जी जी इंदौर कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से बोल रहा हूँ सर नियमित श्रोता हूँ आपका दर्पण का और बहुत अच्छा लिखते थे और आप पहले पत्र भी आप बहुत अच्छे पढ़ते थे
3: मतलब आप बड़े दिलोजान से कार्यक्रम सुनते हैं
2: हाँ बिल्कुल बढ़िया सुनते हैं फरमाइशी भी कार्यक्रम आपका अच्छा लगता है सर आपका बिल्कुल बारह से मिल वाला
3: तो नियाज भाई आज कौन सा गीत आपके लिए पेश किया जाए
2: आपकी पसंद का गाना सुन रहा हूँ सर मैं तो अभी आज मैम तो सुनाती है मुझे वो है ना गाना वो सुनना है अपना कर्ज का
3: कर्ज फिल्म का
2: दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने
3: बहुत बढ़िया बहुत ही खूबसूरत गीत है रफी साहब का गाया हुआ है
2: जी जी बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है उसकी कड़ी बहुत प्यारी लगी और ये इस गाने में बिल्कुल ऐसी सादगी और जीवन का सच्चा सच्चा प्यार की मोहब्बत को एजाम देता सर वो
3: बिल्कुल बिल्कुल आपने उस गीत की रूह को पकड़ लिया हो ऐसा लगता है चलिए तो नियाज भाई बिना देर किए हुए ये गीत आपकी खिदमत में पेश करते हैं
2: बिल्कुल शुक्रिया सर बहुत
3: शुक्रिया धन्यवाद

0: हाँ जी नमस्कार।
1: हेलो। हाँ नमस्कार सर जी, मैं ग्राम कन्या दमोह तहसील बिरसा जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से परशुराम साहू बोल रहा हूँ सर जी।
0: परशुराम साहू जी
1: जी सर।
0: दमोह से बोल रहे हैं आप?
1: हाँ सर, ग्राम कन्या दमोह के पास स्थित है सर गांव।
0: अच्छा, आपके
1: जी
0: गांव
1: सर।
0: की खासियत क्या है, क्या देखने लायक है आपके गांव में?
1: सर हमारे गांव से पास स्थित है सर कान्हा किसली है, बलाचखंड माइंस है सर, जो एशिया की सबसे बड़ी तांबा की खदान है। हाँ
0: हमने
1: सर
0: देखा है और
1: जी
0: कान्हा
1: सर। चलो
0: किसली भी हम घूम आए हैं।
1: अच्छा है सर।
0: आप भी घूमे हुए हैं?
1: बिल्कुल सर जी बिल्कुल।
0: एक अलग रोमांच होता है जब कुदरत के इतने करीब हम जाते हैं।
1: बिल्कुल सर जी, प्रकृति से निकटता वास्तव में जो जीव जंतु है सर, जंगली जीव जंतु करीब से देखना एक अलग ही खुशी होती है सर। चाहे सर एक चिड़ियाघर का शेर और कान्हा किसली का जो जीव जंतु है, उनमें देखने में जमीन और आसमान का अंतर होता है सर,
0: बिल्कुल,
1: ऐसा मैं
0: आपने
1: महसूस किया हूँ सर जी।
0: बिल्कुल सही बात आपने कही कि जो रोमांच है, जो एक दिलचस्पी जागती है, जो एक थोड़ा सा एक डर
1: जी
0: भी
1: सर जी
0: लगता है, एक
1: बिल्कुल
0: उत्सुकता भी रहती है।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल
0: जी,
1: बिल्कुल।
0: उसका एक अलग ही कहना
1: हाँ सर, और कभी कभी सर जो कान्हा किसली जो जीव जंतु है सर, हमारे गांव स्थित जंगल के आसपास भी दृश्य देखने को मिलता है सर उनका। जैसे खास तौर में सर गर्मी के दिनों में तेंदुआ अक्सर नजर आता था सर हमारे गांव के जंगल के आसपास।
0: जी, क्योंकि पानी
1: और
0: की
1: सर
0: तलाश में ये जानवर जो हैं, क्योंकि वहाँ कोई परिधि तो बनी नहीं है, कोई बाउंड्री बनी नहीं है,
1: हाँ
0: खुला
1: सर,
0: जंगल है, तो जानवर
1: और
0: जो हैं पानी की तलाश में भटकते हुए कभी
1: जी
0: गांवों में,
1: सर
0: कभी कस्बों में पहुँच ही जाया करते हैं।
1: बिल्कुल सर जी बिल्कुल। और साथ ही शिकार का पीछा करते करते सर बारहसिंगा हो गया, हिरण हो गया। हाँ ये कारण जिम्मेदार है सर
0: और
1: जी।
0: कान्हा किसली की सबसे बड़ी खासियत है कि पूरी दुनिया में अगर जो 12 सिंगे होते हैं वो केवल वहीं पाए जाते हैं,
1: जी सर
0: ऐसा
1: बिल्कुल
0: हमने सुना
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल सर जी बिल्कुल।
0: जी, और 12 सिंगों से एक बहुत ही खूबसूरत एक द्वार भी बनाया गया है कान्हा किसली के उद्यान
1: जी
0: में।
1: सर जी सर जी, मुक्की गेट के नाम से
0: जी
1: भी
0: हाँ जी
1: शुरुआत
0: हाँ जी हाँ
1: है सर जी।
0: जी जी जी जी
1: जी
0: तो चलिए, आपसे बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं, लेकिन चूंकि आज का जो कार्यक्रम है, फ़ोन करें गीत सुने हैं, तो आपकी
1: यस
0: पसंद का
1: सर।
0: गीत भी हम आपको सुनवाना चाहेंगे। बताइए क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: सर गीत सुनने से पहले मैं अपने भाई का नाम बताना चाहता हूँ सर। सर मेरा बड़ा भाई है श्रीमान ध्रुवाराम साहू जी, वो भी आकाशवाणी भोपाल के नियमित श्रोता है सर जी। जी सर, आज मैं प्रकृति से जुड़ी हुई बातें हुई है सर, तो हाथी मेरा साथी फिल्म का गीत है सर, नफरत की दुनिया को छोड़कर वाला। जी
0: अरे वाह,
1: सर, अब प्रकृति की
0: बहुत
1: बात
0: ही
1: हुई है सर, मैं
0: खूबसूरत
1: कहना
0: गीत है,
1: चाहूँ।
0: रफ़ी साहब का गाया हुआ है।
1: हाँ सर, मैं सभी श्रोताओं से भी कहना चाहूंगा सर कि अभी क्या है सर, कुछ समय कुछ दिनों बाद हमें वर्षा का देखने मिलेगा सर, तो मैं चाहता हूँ सर हर एक श्रोता कम से कम सर 10 पेड़ लगाए, ना सिर्फ पेड़ लगाए सर बल्कि उनके एक बच्चे की तरह देखभाल करे आगामी 5 साल तक। अगर वो सफलता मिल गई सर, तो वो जो है जिस तरह से अग्नि पुराण में भी कहा गया है सर कि एक जो पेड़ होता है वो 10 पुत्रों के समान होता है सर, एक समय पुत्र बाद में परेशान करता है लेकिन जो पेड़ है वो हमेशा आपको उपकार करता है सर।
0: बहुत बड़ी बात आपने कही है। इस बात को हम सब अपने जीवन में उतारें तो ये धरती जो इस तरह तप रही है, इसका माहौल ऐसा नहीं होगा।
1: जी सर जी बिल्कुल
0: इस धरती को हम
1: निश्चित
0: अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत खूबसूरत बनाकर, बहुत सुंदर बनाकर, जिस तरह हमें मिली थी उसी तरह हम उन्हें सौंप कर जा सकते हैं। आपने एक अच्छी बात कही है, इस बात का परिणाम भी अच्छा निकले, इसी कामना के साथ आपको हम ये गीत सुनवाते हैं।

0: हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते
0: नमस्ते सर।
1: जी।
0: कैसे हैं आप?
1: हम तो बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: जी, हम भी अच्छे हैं। आप कौन बोल रहे सर?
1: आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हुआ हूँ मैं, शिवम।
0: अच्छा जी, नमस्कार सर। डबल से
1: नमस्कार जी, नमस्कार। किन से हमारी बात हो रही है?
0: मैं हसीना भी मंसूरी बोल रही हूँ सर, पालदाना का, इंदौर से
1: अच्छा जी, हसीना बी, कैसे
0: जी।
1: हैं आप?
0: अच्छे सर
1: इंदौर से बोल रहे हैं आप?
0: जी, आपके लिए शायरी बोल दूँ सर। इस गर्मी में
1: हाँ
0: थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ, जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ।
1: हसीना भी आप बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हैं आकाशवाणी से।
0: जी, बहुत लंबे समय से जुड़े सर। वो पहले जो चुटकुले आते थे ना सर, उसमें भी भेजते थे हम। और पहले फोन इन कार्यक्रम 1 बजे आता था सर, सवा 1 बजे, जो अरविंद सोनी जी प्रस्तुत करते थे उसको। SMS का भी आता था 12 बजे सर।
1: अच्छा जी, आपको पूरी जानकारियां हैं।
0: बहुत सब दूर की जानकारी है सर हमें, मुंबई की भी, यहाँ की भी, आपके यहाँ के भोपाल की भी, हम सब एक ही तो है, आसपास ही तो है सर।
1: चलिए, ये बहुत अच्छा है कि आप सारे केंद्रों से जो प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हैं
0: जी, और आपके
1: उनमें।
0: यहाँ सर हमारे लेटर भी 2 महीने से डाले हुए, एक भी लेटर शामिल नहीं हुआ, तो थोड़ा आप छटनी भी कर लिया करो। जैसे इनके आते हैं ना, जिनके रोज सलंग दो दो बार आ जाते हैं, 2:30 बजे भी आ जाएगा, 12 बजे भी आ जाएंगे, तो थोड़ा हमारे भी देख लेना सर।
1: चलिए, कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश का जो पत्र आपने भेजा है उस पत्र को हम शामिल कर सकें।
0: जी
1: आज फ़ोन करें, गीत सुने, कार्यक्रम के लिए कौन सा गीत आपको हम सुनवाएं?
0: सर, फिल्म का नाम है रोटी, और गाने के बोले किशोर कुमार की आवाज में या

0: हाँ जी नमस्कार
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश,
0: जी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं।
1: मैं मुन्ना सोनी गुरु नानक स्कूल के पास दमो मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ, गुरु नानक स्कूल के पास दमो मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: तो बताइए मुन्ना जी,

0: क्या हाल है इन दिनों आपके शहर के? अच्छा
1: सर बढ़िया है। थोड़ी गर्मी से भी राहत मिल गई है।
0: अच्छा हाँ
1: अभी 2-3 दिन से हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। हाँ
0: चलिए, मौसम खुशनुमा हो रहा है धीरे धीरे।
1: जी सर, आकाशवाणी मध्य प्रदेश के माध्यम से दो शब्द बशीर बद्र साहब के लिए कहना चाहता हूँ सर।
0: जी,
1: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
0: क्या
1: अठारह
0: बात।
1: हजार से ज्यादा शेरो शायरी लिखने वाले, 60 साल मुशायरों का हिस्सा रहे शहनशाह पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र साहब हमारे बीच नहीं रहे। मैं और मेरा पूरा परिवार अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता है। यूं तो सदा रहने के लिए कोई यहाँ आता नहीं, जिस तरह आप गए उस तरह कोई जाता नहीं।
0: आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं बशीर बद्र जी के लिए। उनका ये
1: जी
0: शेर
1: सर
0: जो आपने पढ़ा वो तो
1: जी सर
0: कालजयी शेर है, रहती दुनिया तक ये
1: जी
0: शेर रहने वाला है। और ऐसा लगता है आप शेरो शायरी में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं,
1: जी सर
0: साहित्य में
1: और
0: काफ़ी।
1: पुराने गाना का भी शौक है सर सुनने
0: हाँ,
1: का।
0: चलिए, तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। यही कलाएं जो हैं इंसान को इंसान बनाती हैं, इंसानियत के पाठ पढ़ाती हैं।
1: जी सर
0: बताइए कौन सा गीत इस वक्त आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म में पुष्पांजलि का गीत डॉक्टर बशीर बद्र साहब के लिए समर्पित है। जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान।

0: जी नमस्कार।
1: मैं ऋषिक बोल रहा हूँ सर, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव महू जिला इंदौर से।
0: इंदौर से कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है विवेक व्यास
0: विवेक व्यास जी।
1: जी, और मेरा इस निवास स्थान है डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव महू जिला इंदौर।
0: जी
1: तो सर मैं, जी सर मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
0: जी इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ शिवम।
1: अच्छा जी,
0: जी
1: तो सर मुझे देखिए कल के आगे महू में बड़ी अच्छी बारिश हुई है, तो इसी मतलब खुशी में मुझे एक गीत सुनना है। फिल्म का नाम है स्वर्ण सुंदरी और रफी साहब और लता जी की आवाज है और गाने के बोल हैं कुहू कुहू बोले कोई।
0: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश करी है आपने।
1: और सर एक खासियत इस गाने की मैं बताऊं कि ये जो गाना है, इस गाने का 4 बार स्केल चेंज होता है। इसका मुख्य राग है सोहनी, है ना, और बाद में जो अंतरा है उसमें एक बार ये राग यमन आता है और एक बार बाहर भी आता
0: बताइए।
1: है ना जी। और आप कहें तो मैं थोड़ा गुनगुना कर आपको बताऊं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: बोले कोयलिया। और सर इस गीत के संगीतकार है आरती नारायण जी, ये साउथ के थे और इन्होंने एक ही हिंदी फिल्म में संगीत दिया है।
1: बताइए, एक गीत से भी कोई अपने लिए कितना बड़ा स्थान बना सकता है, उसकी मिसाल ये गीत है।
0: और सर एक निवेदन ये था कि यदि आप इसको लाइव करते सजीव प्रसारण तो ज्यादा मजा आता, क्योंकि मैं आपको बताऊं सजीव प्रसारण की शुरुआत सबसे पहले आकाशवाणी भोपाल ने ही की थी और मैं रहने वाला भी भोपाल का ही हूँ, है ना। तो ये उस समय की बात है जब अब्दुल मन्नान खान साहब थे, राजू चर्जी थे, अनिल मुंशी जी थे, है ना। तो ये पहले लाइव हुआ करता था और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भोपाल ने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन अब थोड़ा सा ये लगता है कि आपने इसको रिकॉर्डेड क्यों कर।
1: चलिए, आपकी ये बातें जो हैं हमारे अधिकारियों तक हम पहुंचाएंगे और देखते हैं भविष्य में आपकी इस कामना को भी हो सकता है पूरा किया जाए। फिलहाल
0: सजीव में मजा आएगा और आपका धन्यवाद, आपने मेरा कॉल शामिल किया, इसके लिए धन्यवाद, नमस्ते।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको।

0: और इसी गीत के साथ संपन्न होता है फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुने, अभी इस कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। आप सभी को हमारा नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से मुलाकात का कार्यक्रम है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। अमेरिका ईरान समझौते के बाद आज घरेलू शेयर बाजार में जोरदार तेजी के साथ शुरुआत हुई। सेंसेक्स ने लगभग 1200 अंक की बढ़त के साथ 76725 पर सत्र की शुरुआत की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो से बारिश में कमी के बावजूद अनाज की कोई कमी नहीं होगी। जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का परिणाम है। आज विश्व वायु दिवस मनाया जा रहा है। पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 15 जून को यह दिवस मनाया जाता है। भारत आज गोवा में विश्व वायु दिवस 2026 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और ज्येष्ठ अधिक मास के अंतिम दिन आज सोमवती अमावस्या, सूर्य संक्रांति और अमृत सिद्धि योग के दुर्लभ महासंयोग के अवसर पर उज्जैन की पावन शिप्रा से लेकर नर्मदा तट, चित्रकूट की मंदाकिनी और बांदकपुर के जागेश्वर धाम में लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान, दान, तर्पण और पूजा अर्चना की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 12 बजे का ये समय है, समय आपकी फरमाइश का। इस कार्यक्रम में आज आपके बहुत सारे खत और आपके पसंदीदा गीत लेकर हाजिर हूं मैं, सुनीता सिंह। नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। श्रोताओं, इन दिनों मौसम अधूरे वादे सा नजर आ रहा है। निगाहें बादलों की राह तकती हैं, कुछ बूंदें आकर मन को छू जाती हैं, ठंडक दे जाती हैं और फिर धूप अपना साम्राज्य फैला देती है। कुल मिलाकर ये मौसम इंतजार का मौसम है, जिसमें छोटी छोटी खुशियों की आशा है, रिमझिम बूंदों की आशा है, जो ठंडक बनकर जीवन पर छा जाए। तो ये इंतजार रखिए बरकरार। इस बीच आपका इंतजार हम खत्म करते हैं। कुछ मधुर गीतों की फुहार आप तक भेजते हैं आपकी ही फरमाइश पर। आइए सिलसिला शुरू करते हैं आपके पसंदीदा फिल्मी गीतों का। श्रोताओं के नाम पहले बताते हैं, उसके बाद गाने की डिटेल्स। कमर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। सोनुआ झारखंड से नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, बंदिनी, संतोषी, दीपक, संतोष, राहुल, अनु, तनु और नंदू महतो। ये चिट्ठी आई हुई है ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से। लिखने वाले श्रोता हैं प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, संगीता, सरिता, नेतराम और भूपेंद्र साहू। पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। और लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। आप सब की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ ये गीत। शब्द रचना इंदिवर की है, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने और फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र। खतो किताबत की सदा रस्म को जारी रखना, भूल जाना न हमें याद हमारी रखना।

और अब आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं। आशा भोसले की आवाज़ है। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीतबद्ध किया है एन दत्ता ने और फिल्म का नाम है धर्मपुत्र। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल, पार्वती मोटवानी, राजेश, रेशम, मुकेश, भावना, सोमेश और यशराज। निम्भोरा से अशोक देशमुख, शरद, बबन जोशी, शिवाजी चौक, बुराला खुर्द से आदिनाथ बाघ और अमोघ बाघ। गोला बाजार बक्सर से इसी गीत को पसंद करते हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। ये चिट्ठी आई हुई है राजकोट से। लिखने वाले श्रोता हैं मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत। गमों की ओस जब भी दिल पर पड़ी है, तुम्हारी याद सूरज बन गई है।

0: आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। गीतों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल एक छोटा सा अंतराल।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है,

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: Cena.
1: अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी फरमाइश कार्यक्रम में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक। डोंगरगांव राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी, अनिष्का और तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल देवांगन। डोंडी लोहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय, रोशनी, बेबी पूजा, तुषार और प्रभा देवी तामुरिया। इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। गौरीनगर इंदौर से इसी गीत को पसंद करते हैं आनंद कुमार कामले, रेखा, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। और महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। आप सबकी फरमाइश पर पारसमणि फिल्म का गीत सुनते हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। असद भोपाली का लिखा ये गीत है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तुमने किया न याद कभी भूल कर हमें, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया।

दिल तेरा दीवाना कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने इस फिल्म से लिया है। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं, बोल शैलेंद्र के, धुन शंकर जयकिशन की। अनुरोध आप सबका है, सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, प्रमिलागंज आलोट, रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति और अतुल, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप और राशि, गौतमनगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद, किशोर, दीपक और झावेंद्र कुमार वर्मा। एक हुजूम में दिखा जो तेरा अचानक चेहरा तेरा, एक हुजूम में जो दिखा अचानक चेहरा तेरा, दिल ने कहा मेरा ख्वाब यही है, यही हकीकत, यही जिंदगी।

श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपकी फरमाइशों का सिलसिला अब यहीं थमता है। इजाज़त दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज सुनिए धारावाहिक जंग लगी तलवार की 10वीं कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, रामू और बामू ठाकुर साहब से मिलते हैं और शास्त्री, यशवंत और बलबीर स्वामी के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा देते हैं। पुलिस कुछ मजदूरों को गिरफ्तार कर लेती है। इस बात को लेकर बलबीर स्वामी और यशवंत के बीच बातचीत होती है। बलबीर स्वामी कंपनी के दफ्तर के सामने बेमियादी धरना देने का सुझाव देता है। बलबीर स्वामी यूनियन के सचिव कालूराम के साथ खलासी लंगर में यूनियन के फंड से नशा करते हैं। बसुमती काकी उनकी बातें सुन लेती है और आकर नारायणी को बताती है। इस बात के लिए नारायणी यशवंत से मिलती है और उसे आड़े हाथों लेती है। रामू और बामू चोरी छिपे कंपनी के कलपुर्जे बेचने शुरू कर देते हैं। कंपनी के दफ्तर के सामने बेमियादी धरना दिया जाता है। ठाकुर साहब यूनियन के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाते हैं और 2000 दिहाड़ी मजदूरों में से सिर्फ 60 मजदूरों को परमानेंट करने का प्रस्ताव रखते हैं। बातचीत टूट जाती है। रामू और बामू को पता चलता है कि रात को ठाकुर साहब के घर कोई औरत चोरी छिपे आती है। उनका शक भृगु की बहन पार्वती पर जाता है। दोनों रात के समय ठाकुर के घर की निगरानी करते हैं और औरत को पकड़ लेते हैं। तभी यशवंत वहां आता है और नारायणी को देखकर चौंक जाता है। अब आगे।

0: देखो
1: रामू और बामू सुनो, तुम दोनों ने नारायणी से जो भी लिया है उसे वापस करो और इसे बैरक तक छोड़ कर आओ।
2: अरे हमें क्या कर दिया उसे बैरक तक छोड़ कर आएगी?
1: जुबान संभाल कर बात कर रामू।
3: अरे ठहरो
1: बलवीर स्वामी तुम?
3: हाँ मैं। पहले इस बात का फैसला हो जाए कि नारायणी ठाकुर साहब के पास क्यों आई थी। आओ मेरे पीछे आओ। जहां से तुम आ रही हो, ठाकुर साहब के घर।
1: हाँ ठीक है, चलो तुम भी आओ रामू बाबू।
0: चल भाई चल।
3: ठाकुर साहब, अरे ओ ठाकुर साहब।
4: अरे कौन है जो इतनी रात गया आया है?
3: दरवाजा खोलिए ठाकुर साहब, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा।
4: अरे ठहरो भाई, खोलता हूँ दरवाजा।
5: अरे तुम लोग तो यूनियन के आदमी हो
3: जी? हाँ हम यूनियन के आदमी हैं। और ठीक तरह से जवाब दीजिए, क्या नारायणी खुद आपके पास आई थी या आपने बुलाया था उसे?
5: बोलिए क्या मतलब?
3: मतलब आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, बस हमें ठीक ठाक जवाब दीजिए, वरना मैं घर को आग लगा दूंगा।
6: ठाकुर साहब जवाब दीजिए, नारायणी यहाँ क्यों आई थी बताइए इनको।
5: ये औरत आधी रात को मेरे पास पैसे मांगने आई थी। अरे इन सब लोगों के बारे में बिना सोचे विचारे कैसे हड़ताल कर रहे हो तुम लोग? अगले 4 दिन के बाद ये भूख से मर जाएंगे।
3: चुप, हम यहाँ तुमसे सलाह लेने नहीं आए हैं। तुम बताओ नारायणी, क्या साहब सच कह रहे हैं? जवाब दो।
1: जवाब दो नारायणी, चुप क्यों हो?
3: मौना स्वीकृति ही लक्षणम। मारो इसे, मार मार कर इसकी हड्डियां तोड़ दो, ताकि फिर ये कभी ऐसा काम करने का साहस न करे।
0: मारो मारो।
1: ठहरो ठहरो, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। अब सुनो, इसकी ओर से

0: इसका मतलब क्या हुआ?
1: इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी किसी भी तरह हमारी हड़ताल को तोड़ना चाहती है। कंपनी को पूरा विश्वास है कि मजदूरों का हड़ताल पर से विश्वास डगमगा जाएगा और वो काम पर वापस लौट आएंगे।
0: ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा बलवीर स्वामी, हमारी हड़ताल तो विफल हो जाएगी।
1: नहीं यशवंत, नहीं, हमारी हड़ताल विफल नहीं होगी, हम कामयाब होंगे, मुझ पर भरोसा रखो।
0: अच्छा, ये नए मजदूर परमानेंट हैं या दिहाड़ी पर हैं?
1: वैसे यशवंत, क्यों ना हम इन मजदूरों को भी यूनियन का सदस्य बना लें और इन्हें भी हड़ताल में शामिल कर लें। लेकिन यशवंत, ये संभव नहीं है।
0: अब क्यों, क्या नए मजदूर हमारा साथ नहीं देंगे बलबीर?
1: यशवंत, इन मजदूरों को इसी शर्त पर काम पर रखा गया है कि न तो ये यूनियन के सदस्य बनेंगे और न ही कभी हड़ताल करेंगे। बाकायदा इन मजदूरों से कंपनी की शर्तों पर दस्तखत करवा लिए गए हैं। इन मजदूरों को पीस वर्कर का नाम दिया गया है।
0: देखो बलबीर स्वामी, मजदूरों की हड़ताल को आज पूरे 15 दिन हो गए हैं। अरे मजदूरों के घरों में कई दिनों से चूल्हा तक नहीं जला, बच्चे बूढ़े जवान सभी भूख की आग में जल रहे हैं। ऐसे में हड़ताल को और कितने दिनों तक खींचा जा सकता है?
1: यशवंत, जब तुम ही हिम्मत हार जाओगे तो मजदूरों को हिम्मत कौन बंधाएगा? हौसला रखो, हौसला ही हम सब लोगों की सबसे बड़ी ताकत है।
0: लेकिन भूखे पेट कोई हौसला रखे भी तो कब तक? कब तक बलबीर स्वामी, कब तक?
1: मजदूरों की पीड़ा समझने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें उनकी पीड़ा दूर भी करनी होगी। हाँ, मजदूरों की पीड़ा दूर होगी तभी उनमें नए उत्साह का संचार होगा। और तो और, दुख की बात तो यह है कि हमने यूनियन का जो प्रतिनिधिमंडल दिल्ली मुख्यालय भेजा था वो अभी तक लौट कर नहीं आया है।
0: अब
1: फिर भी तुम चिंता मत करो, हम शास्त्री जी से इस विषय में बात करेंगे।
0: ठीक है। अरे बलबीर,
1: हाँ,
0: ये कौन आ रहा है?
1: अरे अरे कालू राम, तुम इस वक्त यहाँ?
2: अरे हाँ बलवीर भाई, वो क्या है कि शास्त्री जी के यहाँ से खबर आई है कि दिल्ली गया हुआ हमारा प्रतिनिधि मंडल वापिस लौट रहा है।
1: अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है तुमने।
0: हाँ,
1: अब चिंता की कोई बात नहीं यशवंत, मुख्यालय से आने वाले आदमी कंपनी के अधिकारियों से मिलकर बातचीत करेंगे, हमारी मांगे जरूर पूरी होंगी, सारे मजदूर परमानेंट होंगे और कोई भी दिहाड़ी मजदूर नहीं रहेगा।
0: अब हम लोग शास्त्री जी से मिलने कब चल रहे हैं बलबीर?
1: परसों सुबह। हाँ, एक बात और।
0: अरे अब कौन सी बात रह गई?
1: देखो, शाम के वक्त जब नए मजदूरों को पगार मिलती है उस समय तुम अपने मजदूर साथियों के साथ जुलूस निकालोगे, नारे लगवाओगे तुम।
0: लेकिन बलबीर, इससे तो हमारा पीस वर्करों के साथ संघर्ष हो सकता है, खून खराबा भी हो सकता है।
2: अरे तो कोई परवाह नहीं। देखो यशवंत भाई, अगर कुछ मजदूरों का खून बहता है तो बह जाने दो।
0: क्या?
3: दादी माँ, दादी माँ।
4: हाँ बेटी।
3: कुछ खाने को दो ना, बहुत जोर से भूख लगी है, 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया। कुछ खाने को दो।
4: घर में एक दाना नहीं है बेटी, एक भी दाना नहीं है, हम भी कई दिन से भूखे हैं।
3: दादी,
4: भला तुझे कहाँ से खाने को दें?
3: दादी माँ, अगर मुझे खाने को नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी।
4: मैं मरना नहीं चाहती
3: दादी, मैं मरना नहीं चाहती।
4: पार्वती,
3: मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो दादी।
4: अब तू क्यों रो रहा है भृगु?
5: कितना लाचार हूँ मैं, कितना लाचार। अपनी बेटी और बूढ़ी माँ का पेट तक नहीं भर सकता मैं।
4: अरे आग लगे यूनियन बाजी को।

0: हमारे बच्चों के पेट से रोटी छीन ली। अरे क्या फायदा हुआ इस हड़ताल से, क्या फायदा हुआ?
1: बापू मत रो, बापू मत रो, दादी मुझे भूख नहीं लगी, मुझे भूख नहीं लगी, अगर भूख लगेगी तो पानी पी लूंगी, मगर आप लोग मत रो, मत रो बापू, मत रो दादी।
2: Mm-hmm.

0: शास्त्री जी, धीरे धीरे स्थिति खराब होती जा रही है। अरे सफाई कर्मचारियों की हालत और भी खराब हो गई है। मुंशीगंज के किसान गेहूं देने से मना कर रहे हैं। पीस वर्कर और हमारे मजदूरों के बीच देखिए कभी भी झगड़ा हो सकता है, खून खराबा हो सकता है, खून की नदियां बह सकती हैं शास्त्री जी, खून की नदियां।
1: अच्छा देखो भाई, मुख्यालय से प्रतिनिधियों को आने दो, फिर हम सब मिलकर कंपनी के अधिकारियों से बात करेंगे। अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
0: हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है शास्त्री जी। पिछली सरकार ने सन 1976 का बोनस नहीं दिया, नई सरकार ने यह बिल पास किया है, लेकिन कंपनी 1977 में यह बोनस देने का वादा करके भी मुकर रही है। फिर हमारी तीसरी मांग यानी मजदूरों की छटनी बंद करने का फैसला पहली बैठक में नहीं लिया जा सका था, दूसरी बैठक में ही इसका कोई फैसला हो सकता है शास्त्री जी।
1: ओफो, अरे तुम लोगों के पास आत्मबल नहीं है, बिना किसी ज्ञान के नेता बनने वालों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है।
0: अब
1: मुझे सलाह देने आए हो तो सुनो, ये हड़ताल चलती रहेगी समझो तुम।
0: शास्त्री जी, सुनने में आया है कि दिल्ली मुख्यालय से प्रतिनिधि मंडल यहाँ आ रहा है।
1: आ तो रहा है, तो फिर
0: हमारी यूनियन चाहती है कि यूनियन के स्थानीय नेता यानी हम लोग उनसे मिले, कंपनी अधिकारियों के साथ होने वाली बातचीत में शामिल हों।
1: सुनो मेरी बात, मुख्यालय से आने वाले प्रतिनिधियों के साथ तुम लोगों की बैठक नहीं हो सकती, समझे?
0: लेकिन शास्त्री जी।
1: लेकिन कुछ नहीं, मिठाई मत दिखाओ। अरे तुम लोगों में कितना जोश है भाई, मुख्यालय वाले को भी जानने दो। अरे मैं लीगल फाइट करवा दूंगा, लीगल फाइट। आसपास के दूसरे कारखानों में भी टोकन स्ट्राइक शुरू हो जाएगी।
0: हमारे फंड में बिल्कुल पैसा नहीं है शास्त्री जी, बाहर से कोई सहायता भी नहीं आई है, ऐसी स्थिति में और दूर तक सोचना भी असंभव है, बिल्कुल नामुमकिन। आपको पता है हड़ताली मजदूरों में भुखमरी फैल गई है। अरे कुछ दिन बाद मजदूरों की लाशें बिछनी शुरू हो जाएंगी, तब क्या होगा शास्त्री जी, तब क्या होगा?
1: ये सब उस लेबर इंस्पेक्टर का किया धरा है, वही मुंशीगंज के किसानों को तुम मजदूरों के खिलाफ भड़का रहा है।
0: क्या वो मोटा लेबर इंस्पेक्टर लोगों को भड़का रहा है?
1: हाँ, मुझे पक्की खबर मिली है। अरे कुछ दिन पहले वो किसानों से कहता फिर रहा था कि
2: सुनो मुंशीगंज के किसानों, मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई भी किसान हड़ताली मजदूरों की मदद नहीं करेगा, उन्हें गेहूं चावल उधार नहीं देगा।
3: हाँ बिल्कुल नहीं देगा, ये हड़ताल गैर कानूनी है। अरे भूखा रहने पर जब मजदूरों का पेट उनकी पीठ से चिपक जाएगा तो हड़ताल का नशा भी उतर जाएगा।
2: लेकिन कुछ नहीं, ये कंपनी अपने मजदूरों को दूसरी कंपनियों से 30% अधिक देती है। द वेजेस ऑफ वर्कर्स आर लिंक्ड विद द प्राइस अंडर।
4: अरे इंस्पेक्टर साहब, ये अंग्रेजी में क्या इंटरप्रेट कर रहे हो?
3: अरे होगा कोई कानून। सुनो, अगर अब हम मजदूरों की मदद करेंगे तो हमें भी जेल हो जाएगी।
2: गुड, वेरी गुड। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे।
3: हाँ।
5: ये क्या है?
1: दुश्मन का सामना करना सीखो। अरे फंड खत्म हो गया है तो दिमाग से काम लो, दिमाग से। सुनो, सुना है एक ट्रक में भरकर कंपनी की सीमेंट रायबरेली पहुंच रही है, समझ से काम लो, समझ से।
0: लेकिन इससे भयानक कांड हो सकता है शास्त्री जी।
6: पुलिस चारों तरफ गश्त लगा रही है, गोलीबारी भी हो सकती है।
1: धिक्कार है तुम लोगों पर, धिक्कार है तुम लोगों पर। ओ, तुम लोग ऐसे काम के लायक हो ही नहीं। जाओ, अरे जाओ यहां से, चलो जाओ यहां से।
6: चलो
7: चलो। अरे यशवंत, आज ये कंपनी के दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर नया नोटिस ही है ना?
0: अरे हाँ, ये तो नया नोटिस है। आज की तारीख है इस पर।
7: जरा पढ़कर तो सुनाओ, मैं अपना चश्मा भूल आया हूँ।
0: हाँ पढ़ता हूँ। लिखा है, यूनियन के नेताओं, तुम लोगों ने मजदूरों को गलत रास्ता दिखाया है। तुम लोगों ने अपनी बेबुनियाद मांग रखकर कंपनी को धमकी दी है।
7: अच्छा,
0: काम खत्म होने के बाद धीरे धीरे दिहाड़ी मजदूरों की छटाई होगी, ये कंपनी का कानून सम्मत काम है, उच्चतम न्यायालय भी इसे मानेगा।
7: ओह, तो अब कंपनी यूनियन को कमजोर करने के लिए इस तरह की ओछी हरकतों पर उतर आई है, नए नए हथकंडे अपना रही है।
0: लेकिन बलबीर, अगर उच्चतम न्यायालय ने सचमुच कंपनी के इस नोटिस को मान्यता दे दी तो क्या होगा? अरे बेचारे दिहाड़ी मजदूर तो कहीं के नहीं रहेंगे।
7: चिंता मत कर यशवंत, अंत में जीत हमारी ही होगी, मजदूरों को उनका हक मिलकर रहेगा। आखिर जिन मजदूरों ने अपनी जिंदगी के 20-20 साल दिए हैं, क्या उनका कंपनी पर कोई हक नहीं बनता?
0: अरे बिना मजदूरों के कंपनी का क्या अस्तित्व, उन मजदूरों का कंपनी पर पूरा हक है।
7: हाँ।
0: अपने खून पसीने से सींचा है मजदूरों ने इस कंपनी को।
7: जरूरत पड़ी तो हम हाई कोर्ट में भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन मजदूरों को उनके हक से वंचित नहीं होने देंगे, और इसके लिए भले ही हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी।
0: ठीक कहते हो बलबीर।

कितने दिन हो गए खाना खाए, ठीक से याद भी नहीं, सूख कर कांटा हो गई हूं। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा भी भूख से किस तरह बिलबिला रहा है, और मेरा बीमार पति वो तो कंकाल बनकर रह गया है। हे भगवान, कब तक जिंदा रह पाएंगे हम लोग इस तरह?

0: क्या हड़ताल हम लोगों की जिंदगी अब लील जाएगी? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। कमजोरी के कारण मेरा सिर चकराने लगा है। एक कदम आगे चलने की हिम्मत नहीं रही। क्या करूं मैं, क्या करूं, कहां जाऊं। भूख भी तो लगी है ना। याद आया, परसों कच्चे तरबूज को सूखे कांटों से ढककर आई थी मैं, ताकि किसी की निगाह उस पर ना पड़े। हाँ, चलकर तरबूज खाती हूँ। हाँ, कुछ तो भूख मिटेगी। जल्दी चलो, कहीं कोई दूसरा या कोई जानवर ही ना खा गया हो। हाँ, मुझे जल्दी चलना चाहिए। अरे ये क्या, तरबूज तो कोई खा गया। यहाँ तो तरबूज के छिलकों के खाली टुकड़े पड़े हुए हैं। किस तरह ढक छिपा कर गई थी मैं उसे, पता नहीं किसकी निगाह पड़ गई। क्या करूं, पता नहीं किसने खाया होगा मेरे इस तरबूज को। किसने खाया होगा? अरे अरे, यहाँ तो बसुमती काकी बैठी हुई है। जरूर इसी ने मेरा तरबूज चबा चबा कर खा डाला है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मैं बसुमती काकी।
1: अरे कौन, नारायणी? आजा, यहाँ बैठ। देख, एक तरबूज लगा हुआ था। अरे बंदरों की नजर तो नहीं पड़ी, हमारी पड़ गई। हाय हाय, बहुत दिन के बाद पेट में गया। हाँ, दो चार दिन और जी लेंगे हम। क्या बात है नारायणी? अरे तो मुंह लटकाए क्यों खड़ी है?
0: राक्षसनी बुढ़िया, कितना छिपा कर रखा मैंने इसे, फिर भी तेरी कित निगाह पड़ गई इस पर। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरे बाल रोज लूंगी।
1: कैसी बात कर रही है नारायणी तू?
0: मेरे तरबूज
1: नारायणी? अरे हम तेरा दुख समझते हैं। हाय हाय हाय,
2: देख तो तेरा शरीर कीड़े लगे पपीते जैसा ढीला पड़ गया है।
0: काकी,
2: नारायणी,
0: वो तरबूज मैंने अपने लिए छिपाया था, क्यों खा लिया तुमने? क्यों?
1: अरे ये जमीन क्या तेरे बाप की है, है? जो उस तरबूज को अपना बता रही है? क्या तू नहीं जानती, दो दिन पहले जंगली जलेबी को लेकर भयंकर मारपीट हो गई थी। चल छोड़ ये सब, छोड़, यहाँ बैठ मेरे पास, आजा। ये तो गुमसुम कैसे बैठ गई? नारायणी, पेट में बच्चा है क्या?
0: काकी,
1: अरे सुन, हम छठवे महीना में भी पेट से बच्चा निकाल सकते हैं।
2: हाँ, जैसे जंगली डूमर का फल काटकर उसका बीज निकाला जाता है।
1: अरे सुन तो, जंगली जलेबी के रस से हम दवाई बना सकते हैं।
2: अरे कंवर बेद में जब हम रहते थे ना, तो ऊंट के मुंह से निकलने वाली झाग से दवाई बनानी सीखी थी। बहुत बढ़िया दवाई होती है ये, सांप के जहर से भी तीखी। हाँ, तू कहे तो तेरे लिए दवा बना दूं, हैं?
1: अरे कंवर बेद में हमने एक औरत से खास दवाई बनानी सीखी थी। मुंह काला करके आई औरत को मरघट ले जाकर।
0: चुप रह बुढ़िया, वरना तेरा गला घोट दूंगी मैं।
1: अरे नारायणी,
3: अरे रे रे, हम जानते हैं तुझे बच्चा गिराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हमको तो पता है ठाकुर साहब को ध्वजपात की बीमारी है।
0: क्या?
3: तू चिंता न करना रायनी, हमको सब याद है। अरे तूने भी सुना होगा, बेकी नदी पर बने पुल पर हमारा काम लगा हुआ था। बाप रे, भयानक बारिश, बिजली की चमक और गर्जन, 5 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश। और जब बारिश कम होती तभी काम शुरू होता। तब हम साहब के कपड़े धोते थे, उस समय लकड़ी के फट्टे पर से कई मजदूरन का पैर फिसल गया। अरे बहुत से तो मजदूर धड़ाम से गिरे और एक मजदूर के सीने में तो सरिया आर पार हो गया था। हाय हाय, वो तो तुरंत ही मर गया था। और 2 मजदूरों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
0: ए बुढ़िया, क्या बकबक कर रही है तू?
3: ये बकबक नहीं है रानी। अरे बहुत कम लोगों को पता है कि मजदूरों के साथ ठाकुर साहब भी गिर गए थे। हाँ, और ये तो बाद में पता लगा कि बच्चा पैदा करने की ताकत खत्म हो गई उनकी। हाँ,
0: काकी, तुम सच कह रही हो ना?
3: और नहीं तो क्या। अरे हम ऐसे ही रामायण गाते हैं। अरे हमारी बात बिल्कुल सच है नारायणी।
0: इसका मतलब आप मानती हैं कि मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, मेरा ठाकुर साहब से कोई गलत रिश्ता नहीं है।
3: कोई माने या ना माने, हम तो मानते हैं।
0: ओ काकी, आप कितनी अच्छी हैं, कितनी अच्छी हैं। मैंने आपको कितना भला बुरा कहा। काकी मुझे माफ कर दो।
3: अरे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है नारायणी, ये भूख जो करवाए सो कम है। अरे भूख तो एक माँ को बेटे का मांस खिला देती है, एक बेटे का मांस माँ को।
0: काकी एक तुम ही हो जिसने मेरे चरित्र पर विश्वास किया, वरना वरना सब के सब मुझे

0: गलत समझते हैं, गलत समझते हैं काकी, गलत समझते हैं।
1: नारायणी, ये नारा सुन रही है तू? होशियार रह, ये नारा किसी का नहीं है। अरे रुपए की झंझनाहट सारे नाश को कब्र में ले जाएगी। ये नारा तो मुझे भी कब्र में ले जाने के लिए ही बना है। अरे इससे किसी की भलाई नहीं होगी। ये देख, ये मेरी कुबड़ी पीठ देख, अरे हमारे बालक देख, अरे अपने लड़के की हालत देख, ये सब हालत हड़ताल और नारों की देन है।
0: हाँ काकी,
1: आज हम पर कुत्ते भौंकते, बालक पत्थर मारते हैं, अब तो हमारे मरने के दिन दूर नहीं है। ये नारा हम बहुत सुन चुके, बहुत सुन लिया ये नारा। ये जो नेता मजदूरी करने वाले मजदूरों को भूखा रख के हड़ताल करते हैं ना, उनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हाँ, हमारा अभिशाप है ये, सारे के सारे मजदूरन का अभिशाप।

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में जंग लगी तलवार, इस धारावाहिक की 10वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओमकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभयारण्य जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात का कार्यक्रम है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वे रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में आयोजित मास्टरमाइंड सम्मेलन में कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो से बारिश में कमी के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। आज शाम मुंबई के रविन्द्र नाट्य मंदिर में महोत्सव की औपचारिक शुरुआत होगी, जबकि फिल्मों का प्रदर्शन कल सुबह से शुरू होगा। ज्येष्ठ अधिक मास के अंतिम दिन आज सोमवती अमावस्या, सूर्य संक्रांति और अमृत सिद्धि योग के दुर्लभ महासंयोग के अवसर पर उज्जैन की पावन शिप्रा से लेकर नर्मदा तट, चित्रकूट के मंदाकिनी और माधकपुर के जागेश्वर धाम में लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान, दान, तर्पण और पूजा अर्चना की। और प्रदेश में सक्रिय टर्फ लाइन और अन्य मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश और गरज चमक का दौर बना रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान है।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं महक गुप्ता और स्वास्थ्य दर्पण में एक बार फिर हम हाजिर हैं स्वास्थ्य से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये कार्यक्रम हमेशा आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और खुशहाली को समर्पित रहता है। श्रोताओं, अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि रात बिरात घर में किसी की तबीयत अचानक बिगड़ जाए या फिर सेहत को लेकर अगर कोई सवाल मन में आ जाए जिसका जवाब तुरंत चाहिए हो, तो हमें सोचना पड़ता है कि डॉक्टर के पास कैसे जाएं, कब जाएं। हर कोई बार बार छोटी मोटी बीमारियों के लिए तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, या फिर सुदूर इलाकों में रहने के कारण उनके लिए अस्पताल तुरंत पहुंचना संभव नहीं होता। ऐसे असमंजस में हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, किससे सलाह लें। इसी गंभीर समस्या का स्थायी और सरल समाधान करने के लिए भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवाओं को शुरू किया। ये नंबर्स केवल अंकों का एक समूह नहीं है, बल्कि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या सामान्य स्वास्थ्य परामर्श के समय एक मजबूत ढाल की तरह काम करते हैं। तो जल्दी से कागज कलम उठाइए, क्योंकि अब जो जानकारी हम आपसे आपके साथ साझा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी सेवाओं में सबसे प्रमुख और उपयोगी नंबर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर 104। यदि आप किसी भी साधारण बीमारी जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, मामूली बुखार, उल्टी या पेट दर्द से परेशान हैं, तो तुरंत अस्पताल जाने की स्थिति में नहीं है, तो आप सीधे अपने मोबाइल से 104 यानी 104 नंबर डायल कर सकते हैं। इस नंबर पर 24 घंटे योग्य चिकित्सा सलाहकार, नर्स, डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, जो आपकी समस्या का समाधान करके आपको उचित प्राथमिक उपचार तथा दवाइयों का परामर्श दे सकते हैं। इसके साथ ही इस हेल्पलाइन के माध्यम से आपको सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य जानकारियों के बारे में, स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना और अपने नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों तथा अस्पतालों के बारे में भी पूरी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा आपातकालीन और संकट की स्थिति के लिए देश भर में 112 और 108 जैसी बेहतरीन एम्बुलेंस और राहत सेवाएँ भी पूरी जोश शोर से काम कर रही हैं। जहां 108 नंबर मुख्य रूप से मुफ्त अस्पतालीन एम्बुलेंस सेवा के लिए जाना जाता है, जो गंभीर मरीजों या दुर्घटना में जूझ रहे लोगों को तुरंत नज़दीकी अस्पताल पहुंचाती है, वहीं 112 ऐसी एकीकृत अस्पतालीन नंबर है जो देश के किसी भी कोने में आपको तुरंत चिकित्सा, पुलिस या फायर ब्रिगेड की मदद एक साथ पहुंचाने में सक्षम है। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में ये सुविधा किसी वरदान से कम नहीं है। यही नहीं, आजकल शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी समाज में जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। मानसिक तनाव, चिंता या डिप्रेशन की समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर, टेली मानस हेल्पलाइन नंबर सेवा शुरू की है। ये नंबर है 14416। अगर कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से असहज महसूस कर रहा है, लगातार तनाव में है या किसी को अपने मन की बात साझा करनी हो, तो वो इस नंबर पर कॉल करके अनुभवी मनोवैज्ञानिकों से और विशेषज्ञों से मुफ्त और पूरी तरह गोपनीय परामर्श ले सकते हैं। इसी के साथ ही डिजिटल इंडिया के इस दौर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की हेल्पलाइन नंबर है 14477। मैं नंबर एक बार फिर से बताती हूँ, 14477। ये भी लोगों को बहुत काम आ रही है, जहाँ आप अपनी डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, डिजिटल आईडी

ये सभी एक जगह पर प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी सेवाओं की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये पूरी तरह निःशुल्क हैं और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं, ताकि देश भर के नागरिक अपनी भाषा में खुलकर अपनी बात कह सकें और मदद प्राप्त कर सकें, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। ये हेल्पलाइन नंबर्स हमें बताते हैं कि एक साधारण सा फ़ोन नंबर इस लायक है कि वो हर स्वास्थ्य सेवा को आपके दरवाजे तक ला सके। उम्मीद है कि आपने ये सभी नंबर्स ज़रूर नोट किए होंगे, ताकि मुश्किल समय में ये आपके काम आ सकें। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज का ये पहला प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य दर्पण में अब वक्त हो गया है आज की भेंट वार्ता का। आज की भेंट वार्ता का विषय है योग, स्वस्थ जीवन की आधारशिला। वार्ताकार हैं गोविंद सिंह चौहान।
1: स्वस्थ भारत का विचार केवल अस्पतालों दवाओं तक सीमित नहीं है, यह एक ऐसी आधारशिला है जिस पर देश का आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय प्रगति टिकी है। यदि नागरिक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो वे अधिक उत्पादक बनते हैं, शिक्षा बेहतर ग्रहण करते हैं और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वस्थ भारत का अर्थ है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की पूर्ण स्थिति। स्वस्थ भारत की असली आधारशिला यौगिक जीवन शैली में है। महर्षि पाताल जी ने कहा, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्थ सिद्धा प्राणायामः, अर्थात आसन सिद्ध होने पर श्वास प्रश्वास की गति को रोकना, नियंत्रित करना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के मुख्य प्रकार नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाएं नाक से श्वास लें, बाएं नाक से छोड़े, बाएं से ले, दाएं से श्वास छोड़े, अनुपात इसका रहेगा 1:2 या फिर 1:4:2। लाभ इसके क्या क्या हैं? नाड़ी शुद्धि, मन शांत, रक्तचाप संतुलित, तनाव अनिद्रा में लाभ मिलता है। दूसरा, नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम की कुछ सीमाएं होती है। बहुत धीरे अभ्यास करें, हृदय से संबंधित रोगी कुंभक ना लगाए। दूसरा है प्राणायाम में कपालभाति, नाक से श्वास को बाहर करें, पेट को अंदर करें, श्वास लेना सहज रूप से। लाभ इसके हैं, पेट की चर्बी घटती है कपालभाति प्राणायाम से, पाचन तेज, फेफड़े शुद्ध होते हैं, मस्तिष्क सक्रिय तथा कफ दोषों का नाश होता है। इसकी सीमाएं होती है, हाई बीपी, हार्ट पेशेंट तथा गर्भवती महिलाएं ना करें, अल्सर हर्निया वाले भी ना करें, गर्मी के दिनों में कम करें। तीसरा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, लोहार की धोकनी जैसे तेज श्वास लेना छोड़ना, 20 बार करके कुंभक लगाएं। भ्रामरी प्राणायाम ये है चौथा, आंख कान बंद करके भंवरे जैसी मधुर गुंजन करें। इसके लाभ तुरंत तनाव अवसाद खत्म, माइग्रेशन में राहत, क्रोध चिंता शांत तथा उच्च रक्तचाप में लाभ तथा नींद अच्छी आती है। पांचवा प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम, गले को हल्का सिकुड़कर खराटे जैसी आवाज के साथ श्वास लेना और छोड़ना, थायराइड में लाभ प्राप्त होता है, गला फेफड़ा मजबूत तथा मन एकाग्र, शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। इसकी सीमाएं हैं, बीपी वाले सावधानी से करें तथा कुंभक न लगाएं। छठा प्राणायाम है शीतली प्राणायाम अथवा शीतकारी प्राणायाम, जीभ को नलीदार बनाकर या दांतों से श्वास अंदर खींचे तथा नाक से छोड़े। इस प्राणायाम के जो लाभ है, शरीर को ठंडक देता है, एसिडिटी जलन शांत, बीपी सामान्य होता है तथा भूख प्यास में नियंत्रण स्थापित होता है। सूर्यवेदन प्राणायाम, केवल दाएं नाक से श्वास लेना तथा बाएं से छोड़ना। इस सूर्यवेदन प्राणायाम के लाभ है कि शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, सुस्ती कफ दूर होता है, पाचन तेज होता है तथा लो बीपी में फायदा होता है। इसकी कुछ सीमाएं हैं, हाई बीपी, हृदय रोगी, पित्त प्रकृति वाले इस अभ्यास को ना करें। आठवां प्राणायाम है चंद्रभेदन प्राणायाम, इसमें केवल बाएं नाक से श्वास ले तथा दाएं से श्वास को छोड़ना है। इसके लाभ है शरीर को शीतलता, हाई बीपी में लाभ, पित्त शांत तथा अनिद्रा में लाभ प्राप्त होता है। चंद्रभेदन प्राणायाम कुछ सीमाएं होती है, लो बीपी, सर्दी जुकाम, अस्थमा वाले इस अभ्यास को ना करें। प्राणायाम के जो यौगिक लाभ बताए हैं उसमें फेफड़ों की क्षमता 3 से 5 गुना बढ़ती है तथा ऑक्सीजन लेवल बेहतर होता है, हृदय मजबूत, रक्तचाप नियंत्रित तथा कोलेस्ट्रॉल घटता है, पाचन तंत्र, लीवर, किडनी सक्रिय, डायबिटीज, मोटापा, कब्ज में लाभ होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, 80% रोग श्वास दोष से होते हैं, हार्मोन संतुलन, थायराइड, PCOD तथा अनिद्रा में लाभ प्राप्त होता है। प्राणायाम के मानसिक लाभ, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, भ्रामरी 5 मिनट में असर देता है, एकाग्रता, स्मृति निर्माण लेने की शक्ति बढ़ती है, नकारात्मक विचार रुकते हैं, मन प्रसन्न रहता है, क्रोध चिड़चिड़ापन ठीक होता है। आध्यात्मिक लाभ इसके बताएं, नाड़ी शुद्धि से कुंडलिनी जागरण की तैयारी, चित्त शांत होकर ध्यान में प्रवेश आसान होता है, प्रत्याहार सिद्ध होता है तथा इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। प्राणायाम करने की पूर्व सावधानियां हमें कुछ बरतनी होती है, खाली पेट जरूरी होना चाहिए, भोजन के 4 घंटे पहले ही करें।

सुबह का समय प्राणायाम के लिए अति उत्तम माना गया है। प्राणायाम गुरु के सानिध्य में सीखे कुंभक वाले प्राणायाम गलत करने से हानि की संभावना रहती है। और रोग के अनुसार चुनाव, हाई बीपी वाले भस्त्रिका, कपालभाति, सूर्यभेदन प्राणायाम ना करें। लो बीपी वाले शीतली चंद्रभेदन प्राणायाम ना करें। शुरू में 5-5 मिनट करें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं, जबरदस्ती श्वास ना रोकें। वर्जित स्थितियां, बुखार, चक्कर, ऑपरेशन के बाद गर्भावस्था, मासिक धर्म में कुंभक ना करें, प्राणायाम ना करें। शांत जगह हो, पंखे तथा एसी की सीधी हवा में ना करें। क्रम इसका रहेगा, पहले षटकर्म हो, उसके बाद आसन करें, आसन के बाद प्राणायाम करें, प्राणायाम के बाद ध्यान करें और फिर सीधे प्राणायाम ना करें। निष्कर्ष ये है कि प्राणायाम स्वस्थ भारत की सांस है, यह दवा नहीं, दवा की जरूरत को खत्म करने का विज्ञान है। महर्षि पातालिनी ने आसनों को स्थिर सुखम आसनम कहा है, जिसमें शरीर स्थिर और मन सुखी हो। बाद में हठयोग में 84 लाख योनिया के प्रतीक 84 प्रमुख आसन बताए गए हैं। आसनों को मोटे तौर पर 7 भागों में बांट सकते हैं, जैसे खड़े होकर किए जाने वाला आसन, उदाहरण के तौर पर ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, वीरभद्रासन, कटिचक्रासन, गरुड़ासन, नटराजासन। घुटने, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, संतुलन और एकाग्रता बढ़ती है, फेफड़े खुलते हैं, श्वास गहरी होती है, आलस दूर होता है, स्फूर्ति आती है। इन खड़े होकर आसनों में कुछ सीमाएं भी होती है। घुटने में तेज वर्टिगो की, हाई बीपी, त्रिकोण आसन में सावधानी करें। गर्भावस्था के अंतिम महीनों में संतुलन वाले आसन ना करें। बैठकर किए जाने वाला आसन, उदाहरण के तौर पर पद्मासन, वज्रासन, गोमुखासन, अर्धमत्स्येंद्रासन। ध्यान के लिए उत्तम आसन, रीढ़ सीधी रहती है, पाचन तंत्र मजबूत। वज्रासन भोजन के बाद भी कर सकते हैं, रीढ़ में लचीलापन, साइटिका में आराम मिलता है, मन शांत होता है। बैठकर किए जाने वाले आसनों में कुछ सीमाएं हैं, जैसे घुटने, टखने की चोट में पद्मासन ना करें, पाइल्स फिशर में वज्रासन देर तक ना करें, स्लिप डिस्क में तीव्र मरोड़ वाले आसन वर्जित है। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, उदाहरण के तौर पर है भुजंगासन, शल्वासन, धनुरासन, मकर आसन। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के यौगिक लाभ, जैसे रीढ़ की हड्डी लचीली, कमर दर्द में राहत मिलती है, पेट के अंगों की मालिश होती है, कब्ज अपच दूर, फेफड़े हृदय सक्रिय होते, थायराइड ग्रंथि संतुलित होती है। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में कुछ सीमाएं होती है, जैसे हार्निया, अल्सर, पेट का ऑपरेशन हुआ हो तो ना करें, गर्भावस्था में पूरी तरह वर्जित है। हाई बीपी, हृदय के रोग में भुजंगासन धीरे धीरे करें। चौथा जो भाग है, पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, उदाहरण के तौर पर सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, सेतुबंधासन, पवन मुक्तासन, नौकासन, उत्तानपादासन, चक्रपादासन। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के यौगिक लाभ, जैसे थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि में संतुलन होता है, हार्मोन बैलेंस होते हैं, रक्त संचार सिर की तरफ बढ़ता है, चेहरे पर चमक आती है, रीढ़ और गर्दन का तनाव दूर होता है, गैस, कब्ज, मोटापे में बहुत लाभ होता है। इनकी सीमाएं, सर्वांगासन, हलासन, हाई बीपी, सर्वाइकल, चक्कर, हृदय रोग, गर्भावस्था में ना करें। ग्लूकोमा, रेटिना समस्या में उल्टे आसन वर्जित है, गर्दन में दर्द हो तो तकिया लगाकर करें। पांचवा भाग है आगे झुकने वाले आसन, उदाहरण के तौर पर पश्चिमोत्तासन, पद्मासन, जानुशीर्षासन, बलासन, उग्रासन। इन आसनों के यौगिक लाभ, पैर की पीछे की खुलती हुई लचीलापन, पाचन अंगों पर दबाव, लीवर, किडनी सक्रिय, डायबिटीज में लाभकारी। इन आसनों की कुछ सीमाएं होती है, जैसे स्लिप डिस्क, साइटिका में झटके से आगे ना झुके, अस्थमा अटैक के समय ना करें, अल्सर दस्त में पेट दबाने वाले आसन ना करें। छठा है पीछे झुकने वाले आसन, उदाहरण के तौर पर जैसे चक्रासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, मत्स्यासन। पीछे झुकने वाले आसनों के यौगिक लाभ, छाती खुलती है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, अस्थमा में लाभ होता है, रीढ़ को उल्टी दिशा में खिंचाव, कमर दर्द ठीक, एड्रिनल ग्रंथि सक्रिय तथा सुस्ती दूर होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इनकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कमर दर्द तीव्र हो तो ना करें, हार्निया, हाई बीपी, हृदय के रोग, वर्डिगो में वर्जित है, गर्भावस्था में ना करें। सातवां और अंतिम भाग जो है वो संतुलन और विपरीतकरणी आसन, जैसे उदाहरण के

0: तौर पर शीर्षासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, बकासन, पादांगुष्ट आसन, तोलांगुल आसन। इन आसनों के योगिक लाभ, हाथ कंधे बहुत मजबूत होते हैं, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह एकाग्रता, स्मृति तेज होती है, हार्मोन संतुलन, पिट्यूटरी ग्रंथि सक्रिय होती है, पाचन तेज, टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। इन आसनों की कुछ सीमाएं, जैसे शीर्षासन सबसे जोखिम वाला है, बिना गुरु के बिल्कुल नहीं करें। हाई बीपी, हृदय रोग, गर्दन दर्द, चक्कर, आँख की बीमारी में वर्जित है, महावारी गर्भावस्था में ना करें। अंत में हम यही कह सकते हैं कि स्वस्थ भारत की आधारशिला योग है और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर एक स्वस्थ भारत की आधारशिला रखेंगे। धन्यवाद
1: श्रोता, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का योग पर आधारित ये भेंटवार्ता पसंद आई होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आज का अगला ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, विज्ञान की प्रगति अब चिकित्सा जगत को इतना क्रांतिकारी मोड़ पर ले आई है जहां तकनीक हमारी रोजमर्रा की आदतों से हमारी सेहत का हाल जान सकती है। जी हाँ, स्वास्थ्य और तकनीक में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अद्भुत तकनीक की जो आने वाले समय में बीमारियों की पहचान और उसके निदान का तरीका पूरी तरह से बदलने वाली है। हम बात कर रहे हैं वॉइस हेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी आवाज आधारित स्वास्थ्य तकनीक। श्रोताओं, हम सभी का ये सामान्य अनुभव है कि जब भी हम बीमार होते हैं अक्सर हमारी आवाज़ भारी हो जाती है, बैठ जाती है या उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। हमारी माँ या घर के बुजुर्ग अक्सर सिर्फ हमारी आवाज़ सुनकर ही तुरंत पहचान लेते हैं कि आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बस इसी प्राकृतिक और जैविक सिद्धांत के आधार पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को जोड़कर तकनीक बनाई गई है। वॉइस हेल्थ टेक्नोलॉजी एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जो किसी भी व्यक्ति के बोलने के तरीके, उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, पिच, बोलने का तरीका, तीव्रता और शब्दों के बीच के सूक्ष्म ठहराव को बिल्कुल बारीकी से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए विश्लेषण करके ये बता

सकती है कि कौन सी बीमारी होने की संभावना है। विज्ञान की भाषा में इसे वोकल बायोमार्कर्स या आवाज के जैविक लक्षण भी कहा जाता है। ये लक्षण इतने महीन और सूक्ष्म होते हैं कि सामान्य इंसानी कान से शायद इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो, लेकिन कंप्यूटर के एल्गोरिदम इन्हें कुछ ही सेकंड में पहचान लेते हैं। साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स का मानना है कि हमारी आवाज़ का सीधा संबंध हमारे श्वसन तंत्र, हमारे मस्तिष्क और हमारी तंत्रिकाओं से होता है। इसलिए जब भी शरीर के अंदर कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती है या गड़बड़ होती है तो उसका सीधा असर हमारी आवाज़ के पैटर्न पर पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये तकनीक एक अद्भुत क्रांति लेकर आई है। कुछ ही सेकंड की रिकॉर्डिंग से 70 से 90 प्रतिशत तक की सटीकता के साथ ये बता सकती है कि व्यक्ति को डिप्रेशन या तनाव तो नहीं है। केवल मानसिक स्वास्थ्य ही

मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये तकनीक एक अद्भुत क्रांति लेकर आई है। कुछ ही सेकंड की रिकॉर्डिंग से 70-90% तक की सटीकता के साथ ये बता सकती है कि व्यक्ति को डिप्रेशन या तनाव तो नहीं है। केवल मानसिक स्वास्थ्य ही

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। पहले सुनिए राजेश श्रीवास्तव के स्वर में गजल।

इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये गीत था फिल्म सत्ते पे सत्ता से, और जिसके लिए आवाज थी आशा भोसले, दिलराज कौर की, गीतकार थे गोशन बावरा, संगीत था डबर बन का।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। हमारी इसी सभा में आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, आपकी पसंदीदा गीतों पर आधारित, दोपहर 2:30 पर। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एनडीए सरकार को उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम करने का सौभाग्य प्राप्त है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अवसरों की सुगम पहुंच, बेहतर बुनियादी ढांचा, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहर और सार्वजनिक सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे शुभारंभ किया। कार्यशाला का उद्देश्य राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में साइबर सुरक्षा से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों, उभरते साइबर खतरों, डेटा संरक्षण की आवश्यकताओं और डिजिटल शासन प्रणालियों की सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श करना है। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी, तकनीक विशेषज्ञ, नीति निर्माता, कानून और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा,
1: मुझे इस बात का गर्व है कि आज दिन भर की कार्यशाला में आप सब वो मार्ग खोजने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा संकेत में है लेकिन ये बता भी दिया कि लापरवाही करोगे तो वसूली भी आपके विभाग से होगी। इसलिए केवल कहने सुनने की कथा कहानी की जगह नहीं है, ये जवाबदारी की जगह भी जो भविष्य में हमको अपने उस व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध कर रही जिसके हकदार हम हैं।
0: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राज्य योग आयोग और अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में राजधानी राष्ट्रीय स्तर के महोत्सव में देश भर से आए योग साधकों, योगाचार्यों, शिक्षाविदों, प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। इस अवसर पर योग आयोग अध्यक्ष मध्य प्रदेश और अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ की ओर से योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले योगाचार्यों, प्रशिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए लोगों से प्रतिदिन योग करने की अपील की है। सोमवती अमावस्या, सूर्य संक्रांति और अमृत सिद्धि योग के दुर्लभ संयोग ने आज पूरे प्रदेश को आस्था और श्रद्धा के रंग में रंग दिया। उज्जैन की शिप्रा से लेकर नर्मदा तट, चित्रकूट की मंदाकिनी और बांदकपुर के जागेश्वर धाम तक लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान, दान, तर्पण और पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित किया। प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ रही है। उज्जैन में आज तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं नर्मदापुरम में नर्मदा तट पर 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में भी श्रद्धालुजन नदी सरोवरों में स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। वहीं महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर पीपल के वृक्ष की पूजा भी की जा रही है। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां लगातार जोर पकड़ रही हैं। राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मौसम विभाग ने भोपाल ग्वालियर संभाग में अगले दो दिनों तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। वहीं आगरमालवा, राजगढ़ और सीहोर जिलों में तेज आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश के ऊपर सक्रिय टर्फ लाइन और प्री मॉनसूनी सिस्टम के प्रभाव से अगले चार दिनों तक प्रदेश में कहीं बारिश तो कहीं तेज आंधी का दौर बना रहेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी सामान्य गति से थोड़ा पीछे चल रहा है लेकिन आगामी 3 से 4 दिनों में इसकी रफ्तार बढ़ सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत संवाद करने ई स्कूटर से भोपाल के भीमनगर पहुंचे। यहां उन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाली मेधावी छात्रा चांदनी विश्वकर्मा के घर जाकर उनसे मुलाकात की। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का एक माह का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो गया है। आज से जबलपुर मुख्यपीठ सहित इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में नियमित न्यायिक कार्य शुरू हो गए हैं। विश्व रक्तदाता दिवस पर नर्मदापुरम जिले की पचमढ़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जहाँ करीब 100 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13 भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन, फ्रांस।
1: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्व भर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों

0: में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 153,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 253,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
3: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
1: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
4: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
1: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
5: उड़ीसा में तीन दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा अरिसा पिठा मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयान

0: हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में पांचवा गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये पहली फरमाइश है हमारे इन साथियों की। महादेव घाट अमलेश्वर छत्तीसगढ़ से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारणी, सूरज, सुजला, ज्योति, रियांश ठाकुर। राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मीन, प्रयागराज भट्ट। बड़वास

आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश है। बलिया उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना, प्राची नेमा, कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, सुनील सिंह, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, शेख जमील मंसूरी, इन सभी श्रोता साथियों ने पसंद किया है गुड्डी फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसके लिए आवाज़ है वाणी जयराम की, गीतकार है गुलजार और संगीत

समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश है हमारे इन सभी श्रोता साथियों की। ये साथी हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र, सन्मति पंचोलिया, औरंगाबाद से राजेश सामले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, पटेल नगर मलोट से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप आरजू जाजोरिया। इन सभी श्रोता साथियों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म साहेब बीबी और गुलाम का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है आशा भोसले की, गीतकार हैं शकील बदायनी और संगीत है हेमंत कुमार का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और अगली फरमाइश है फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई। इस फिल्म से जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीतकार है शैलेंद्र, संगीत है शंकर जयकिशन का। और इसको सुनना चाहते हैं हमारे ये साथी बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित, भाटापारा दतरंगी, छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार वर्मा, महाराष्ट्र जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, इन सभी श्रोता ने साथियों ने सुनना चाहा है फिल्म दिल अपना प्रीत पराई का ये प्यारा सा गीत।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे नंदा बोड़खे हनुमान सारिका सुरेखा सोनम बोड़खे इंदौर से लाल फतेह चंदानी लीला फतेह चंदानी संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन तान्या सागर से तिलक राणा मीना राणा मोनिका नुपुर ऋषिका रॉबिन राणा इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है मेरे सनम इस फिल्म का गीत जिसके लिए आवाज़ है आशा भोसले की गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीत है ओपी नैयर का।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है उज्जैन से विनोद मूणत नेहा जैन दीपक मयंक मूणत चेतन नाहटा दिलीप सिंह परिवार दीक्षा कुश मूणत पवार और इंदौर से हैं अनिल बामनिया प्रमीला बामनिया नंदनी मुस्कान नीलम सावन कृष्ण कुमार रितक कुणाल केतन बामनिया और ये हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जैतंग बिरक मीका बिरक। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है सुनिधि चौहान की आवाज़ में फिल्म चमेली का गीत जिसके लिए आवाज़ है सुनिधि चौहान की है और गीतकार हैं इरशाद कामिल संगीत है संदेश शांडिल का।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: बावनवां जी सेवन शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो गया है। ये सम्मेलन ऐसे समय में शुरू हुआ है जब अमेरिका और ईरान ने 107 दिनों से जारी संघर्ष की समाप्ति के लिए समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अवसरों की सुगम पहुंच, बेहतर बुनियादी ढांचा और सस्ती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्ता शिक्षा, अच्छे शहर और सार्वजनिक सेवाओं पर आधारित ध्यान केंद्रित किया है। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। आज शाम मुंबई के रविन्द्र नाट्य मंदिर में महोत्सव की औपचारिक शुरुआत होगी, जबकि फिल्मों का प्रदर्शन कल सुबह से शुरू होगा। ज्येष्ठ अधिक मास के अंतिम दिन आज सोमवती अमावस्या, सूर्य संक्रांति और अमृत सिद्धि योग के दुर्लभ महासंयोग के अवसर पर उज्जैन की पावन शिप्रा से लेकर नर्मदा तट, चित्रकूट की मंदाकिनी और बांधकपुर के जागेश्वर धाम में लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान, दान, तर्पण और पूजा अर्चना की। और श्रीलंका ए के खिलाफ भारत ने पहले खेलते हुए 50 ओवर और 2 गेंद में 265 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी 21 रन बनाकर आउट हुए। भोपाल की तरफ भारत की तरफ से सूर्यांश शिडगे ने 72 रन की पारी खेली। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आपको बता दें आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान होगा। 5:33 और शाम 6:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। शाम 6 बजे सुनिए एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। 6:40 पर सुनेंगे कार्यक्रम आजकल। 6:45 पर होगा प्रादेशिक समाचार दर्शन।

रात 8 बजे आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष विदेश नीति ये कार्यक्रम। रात 9:30 पर आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 10:30 पर होगा कार्यक्रम राग रजनी। ये कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत पर आधारित होगा। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रुचिरा काले का राग केदार में ख्याल गायन।

और आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे 7:21 पर। तो ये थी जानकारी आज की शाम के सभा के कार्यक्रमों की। मीडिया वे 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी भोपाल है। 3:03 होने को है। हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, पर इस बीच DTH पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा। DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। पहले सुनिए अमित गंगेले के स्वर में बुंदेली लोक गीत।

इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का आकाशवाणी भोपाल है। डीजे आप सुनिए चित्रपट संगीत।

यारा दिलदारा इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी उदित नारायण की। उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति की, गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत था जतिन ललित का।

आजा ना चले इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज थी राहत फतेह अली खान की, गीतकार थे जयदीप साहनी और संगीत था संदीप सुलेमान का।

ये गीत था फिल्म रंग से, जिसके लिए आवाज़ थी अलका याग्निक, कुमार सानू की, गीतकार थे समीर और संगीत था नदीम श्रवण का।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अवसरों की सुगम पहुंच, बेहतर बुनियादी ढांचा

ढांचा, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहर और सार्वजनिक सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। 21 जून को मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभयारण्य जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने विषय पर विभागीय परामर्श कार्यशाला का शुभारंभ किया। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। और 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। आज शाम मुंबई के रवींद्र नाट्य मंदिर में महोत्सव की औपचारिक शुरुआत होगी, जबकि फिल्मों का प्रदर्शन कल सुबह से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

औकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। ये अशार आज के दौर की एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसी शोर गुल में एक दुनिया ऐसी भी है जो खामोशी से इनकलाब बरपा करती रही है, वो इनकलाब जो कागज की महक और लफ्जों की रोशनी से जन्म लेता है। इंसानी तारीख गवाह है कि किताब महज कागज के चंद सफहात का मजमुआ नहीं, बल्कि ये इंसानी जज्बात, अखलाकियात और सियासी तजर्बात का एक अजीम जखीरा है। ये एक ऐसी खामोश मुअल्लिम है जो इंसान की फिक्री काया पलट देती है। मौजूदा दौर में जहाँ टेक्नोलॉजी और मस्नूई जहानत ने हर तरफ शोर मचा रखा है, वहाँ किताब से रिश्ता उस्तवार करना एक खामोश इनकलाब की सूरत इख्तियार कर चुका है। ये इनकलाब किसी जाहिरी हंगामे का मोहताज नहीं, बल्कि ये कारी की रूह के अंदर शऊर की नई

0: अभी आप जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में खूबसूरत गजल समाप्त फरमा रहे थे। इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम एक बार फिर तख्लीक की दुनिया का रुख करते हैं, जहां हम सुनेंगे विजय तिवारी साहब को।
1: गजल का मतलब पेश खिदमत है। इसीलिए तो जमाने को हम दीवाने लगे, इसीलिए तो जमाने को हम दीवाने लगे, किसी ने पूछा नहीं और हम बताने लगे। शेर ये कि वो बेवफा है जमाने से सुन रहे थे मगर, वो बेवफा है जमाने से सुन रहे थे मगर, हमें ये बात समझने में क्यों जमाने लगे, हमें ये बात समझने में क्यों जमाने लगे। ये शेर भी देखिए कि हर एक बाप की ख्वाहिश है आखिरी ख्वाहिश, हर एक बाप की ख्वाहिश है आखिरी ख्वाहिश, मेरी हयात में बेटा कमाने खाने लगे, मेरी हयात में बेटा कमाने खाने लगे। और शेर ये कि गली में उनकी इजाज़त हम ही को थी पहले, गली में उनकी इजाज़त हम ही को थी पहले, सुना है अब तो कई लोग आने जाने लगे, सुना है अब तो कई लोग आने जाने लगे। एक गज़ल का मतलब मुलाहिज़ा कीजिए कि इस कदर भी ना आजमाएं उसे, इस कदर भी ना आजमाएं उसे, बोझ लगने लगे वफाएं उसे, बोझ लगने लगे वफाएं उसे, मोल मिलता नहीं सुकून वरना, मोल मिलता नहीं सुकून वरना, आज जाएं खरीद लाएं उसे, आज जाएं खरीद लाएं उसे, दिल मकासा पड़ा है मुद्दत से, दिल मकासा पड़ा है मुद्दत से, कोई आए तो घर बनाए उसे, कोई आए तो घर बनाए उसे। और शेर ये कि कल तलक दाएं बाएं थे उसके, कल तलक दाएं बाएं थे उसके, कर रहे हैं जो दाएं बाएं उसे, कर रहे हैं जो दाएं बाएं उसे। शेर आखिर ये कि इश्क मजहब है मरने वाले का, इश्क मजहब है मरने वाले का, कहिए दफनाएं या जलाएं उसे, कहिए दफनाएं या जलाएं उसे। और एक गज़ल का मतलब आपकी समातों के नाम, वक्त के नाम से क्यों आदमी घबराता है, वक्त के नाम से क्यों आदमी घबराता है, वक्त आता है गुजरता है गुजर जाता है, वक्त आता है गुजरता है गुजर जाता है, शायरी क्या है खुदा जाने मगर लगता है, शायरी क्या है खुदा जाने मगर लगता है, दर्द बढ़ता है तो कागज़ पे बिखर जाता है, दर्द बढ़ता है तो कागज़ पे बिखर जाता है। और शेर ये बराजा फरमाए कि ऐसा लगता है कि दो लाश हों एक मैयत में, ऐसा लगता है कि दो लाश हों एक मैयत में, बाप के कांधे पे जब लगते जिगर जाता है, बाप के कांधे पे जब लगते जिगर जाता है। और गज़ल पेशे खिदमत है, मतलब यूँ कहा है कि इब्तिदा है लाजमी है लड़खड़ा जाना मुझे, इब्तिदा है लाजमी है लड़खड़ा जाना मुझे, आते आते आएंगे आदाबे मैखाना मुझे, आते आते आएंगे आदाबे मैखाना मुझे। शेर ये कि खो गया था मुख्तलिफ किरदार में मेरा वजूद, खो गया था मुख्तलिफ किरदार में मेरा वजूद, वो तो एक दिन मौत आई उसने पहचाना मुझे, वो तो एक दिन मौत आई उसने पहचाना मुझे। और शेर ये कि शाह की दावत को ठुकराते हुए बोला फ़कीर, शाह की दावत को ठुकराते हुए बोला फ़कीर, रिस्क का वादा है जिसका देगा वो खाना मुझे, रिस्क का वादा है जिसका देगा वो खाना मुझे। और मकता ये कि वक्त रुख्सत लाजमी है ये ख्याल आना विजय, वक्त रुख्सत लाजमी है ये ख्याल आना विजय, इस कफस के बाद जाने किस कफस जाना मुझे, इस कफस के बाद जाने किस कफस जाना मुझे। और एक गज़ल का मतलब दोस्तों कि कल तेरे गुजरे दिनों का आईना हो जाऊंगा, कल तेरे गुजरे दिनों का आईना हो जाऊंगा, जख्म दिल हूँ जब कुरेदोगे हरा हो जाऊंगा, जख्म दिल हूँ जब कुरेदोगे हरा हो जाऊंगा, आज बिगड़ा है मुकद्दर इसलिए ठोकर पे हूँ, آج بگڑا ہے مقدر اس لیے ٹھوکر پہ ہوں، کل تراشا جاؤں گا اور دیوتا ہو جاؤں، کل تراشا جاؤں گا اور دیوتا ہو جاؤں گا۔ شعر بطور خاص یہ کہ تھک گیا ہوں امتحان با وفا دے دے کے میں، تھک گیا ہوں امتحان با وفا دے دے کے میں، اب تو لگتا ہے کسی دن بے وفا ہو جاؤں گا، اب تو لگتا ہے کسی دن بے وفا ہو جاؤں گا۔ شعر آخر یہ کہ آج چہرہ ہوں تو مجھ میں خامیاں گنتے ہو تم، آج چہرہ ہوں تو مجھ میں خامیاں گنتے ہو تم، کیا کرو گے کل اگر میں آئینہ ہو جاؤں گا، کیا کرو گے کل اگر میں آئینہ ہو جاؤں گا۔ مکتا یہ کہ خواب میں بولے پتا جی میں نہ کہتا تھا وجے، خواب میں بولے پتا جی میں نہ کہتا تھا وجے، آج ہوں میں ساتھ تیرے کل جدا ہو جاؤں گا، آج ہوں میں ساتھ تیرے کل جدا ہو جاؤں گا۔ اور دوستو ترنم میں کچھ اشعار پڑھنا چاہتے ہیں، مطلب سماعت کریں۔ سنو نوجوان جب جوانی میں ہم تھے،

थे, सुनो नौजवान जब जवानी में हम थे। और बतौर खास ये शेर भी सुनिए कि वही

0: थे। बहुत शुक्रिया।
1: सामईन इकराम, अभी आप विजय तिवारी साहब के कलाम से महसूस हो रहे थे। इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अपने गिरा कद्र तासुरात और तजावीज हमें मकातीब के जरिए जरूर रसाल करें। हमारा पता नोट फरमाइए। उर्दू प्रोग्राम आईना, मार्फत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी, शामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462002। उर्दू प्रोग्राम आईना को हर सोमवार सुबह 9:30 बजे सुनना ना भूलें। अब अपनी दोस्त शीरीन खान को दीजिए इजाजत। आदाब।
2: ये था उर्दू कार्यक्रम आईना, डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है।
3: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है संग्रहालय से इस कार्यक्रम में जंग लगी तलवार, इस धारावाहिक की 10वीं कड़ी।

सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना रामू और बामू ठाकुर साहब से मिलते हैं और शास्त्री यशवंत और बलबीर स्वामी के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा देते हैं। पुलिस कुछ मजदूरों को गिरफ्तार कर लेती है। इस बात को लेकर बलबीर स्वामी और यशवंत के बीच बातचीत होती है। बलबीर स्वामी कंपनी के दफ्तर के सामने बेमियादी धरना देने का सुझाव देता है। बलबीर स्वामी यूनियन के सचिव कालूराम के साथ खलासी लंगर में यूनियन के फंड से नशा करते हैं। बसुमती काकी उनकी बातें सुन लेती है और आकर नारायणी को बताती है। इस बात के लिए नारायणी यशवंत से मिलती है और उसे आड़े हाथों लेती है।

0: तुम दोनों ने नारायणी से जो भी लिया है उसे वापस करो और इसे बैरक तक छोड़कर आओ।
1: अरे हमें क्या कर दिया उसे बैरक तक छोड़कर आओ?
0: जबान संभाल कर बात कर रामू।
2: अरे ठहरो
0: पलवीर स्वामी तुम?
2: हाँ मैं। पहले इस बात का फैसला हो जाए कि नारायणी ठाकुर साहब के पास क्यों आई थी। आओ मेरे पीछे आओ। जहां से तुम आ रही हो ठाकुर साहब के घर।
0: हाँ ठीक है चलो तुम भी आओ रामू बाबू।
3: चल भाई चल।
2: ठाकुर साहब। अरे ओ ठाकुर साहब।
4: अरे कौन है जो इतनी रात गया है?
2: दरवाजा खोलिए ठाकुर साहब नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा।
4: अरे ठहरो भाई खोलता हूँ दरवाजा।
5: अरे तुम लोग तो यूनियन के आदमी हो
2: जी। हाँ हम यूनियन के आदमी हैं और ठीक तरह से जवाब दीजिए क्या नारायणी खुद आपके पास आई थी या आपने बुलाया था उसे?
0: बोलिए
5: क्या मतलब?
2: मतलब आप अच्छी तरह समझ रहे हैं बस हमें ठीक ठाक जवाब दीजिए वरना मैं घर को आग लगा दूंगा।
6: ठाकुर साहब जवाब दीजिए नारायणी यहाँ क्यों आई थी बताइए इनको।
5: ये औरत आधी रात को मेरे पास पैसे मांगने आई थी। अरे इन सब लोगों के बारे में बिना सोचे विचारे कैसे हड़ताल कर रहे हो तुम लोग? अगले चार दिन के बाद ये भूख से मर जाएंगे।
2: चुप। हम यहाँ तुमसे सलाह लेने नहीं आए हैं। तुम बताओ नारायणी क्या साहब सच कह रहे हैं? जवाब दो।
0: जवाब दो नारायणी चुप क्यों हो?
2: मौना स्वीकृति ही लक्षणम। मारो इसे। मार मार कर इसकी हड्डियां तोड़ दो ताकि फिर ये कभी ऐसा काम करने का साहस न करे।
6: मारो मारो।
0: ठहरो ठहरो रुक जाओ मैं कहता हूँ रुक जाओ। अब सुनो इसकी ओर से मैं माफी मांगता हूँ।
3: यशवंत बाबू
0: तुम चुप रहो नारायणी तुम चुप रहो। देखो बलबीर स्वामी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि नारायणी से फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी।
2: अच्छा ठीक है पहली गलती है इसलिए माफ कर देते हैं लेकिन इसे अच्छी तरह से समझा देना कि फिर कभी ऐसी गलती ना करे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा।
0: अब तुम चिंता ना करो बलबीर स्वामी मैं इसे सब समझा दूंगा। अब चलो नारायणी मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ। आओ।

0: इसका मतलब क्या हुआ?
1: इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी किसी भी तरह हमारी हड़ताल को तोड़ना चाहती है। कंपनी को पूरा विश्वास है कि मजदूरों का हड़ताल पर से विश्वास डगमगा जाएगा और वो काम पर वापस लौट आएंगे।
0: ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा बलवीर स्वामी, हमारी हड़ताल तो विफल हो जाएगी।
1: नहीं यशवंत, नहीं, हमारी हड़ताल विफल नहीं होगी, हम कामयाब होंगे, मुझ पर भरोसा रखो।
0: अच्छा, ये नए मजदूर परमानेंट हैं या दिहाड़ी पर हैं?
1: वैसे यशवंत, क्यों ना हम इन मजदूरों को भी यूनियन का सदस्य बना लें और इन्हें भी हड़ताल में शामिल कर लें। लेकिन यशवंत, ये संभव नहीं है।
0: अब क्यों, क्या नए मजदूर हमारा साथ नहीं देंगे बलबीर?
1: यशवंत, इन मजदूरों को इसी शर्त पर काम पर रखा गया है कि न तो ये यूनियन के सदस्य बनेंगे और न ही कभी हड़ताल करेंगे। बाकायदा इन मजदूरों से कंपनी की शर्तों पर दस्तखत करवा लिए गए हैं। इन मजदूरों को पीस वर्कर का नाम दिया गया है।
0: देखो बलबीर स्वामी, मजदूरों की हड़ताल को आज पूरे 15 दिन हो गए हैं। अरे मजदूरों के घरों में कई दिनों से चूल्हा तक नहीं जला, बच्चे बूढ़े जवान सभी भूख की आग में जल रहे हैं। ऐसे में हड़ताल को और कितने दिनों तक खींचा जा सकता है?
1: यशवंत, जब तुम ही हिम्मत हार जाओगे तो मजदूरों को हिम्मत कौन बंधाएगा? हौसला रखो, हौसला ही हम सब लोगों की सबसे बड़ी ताकत है।
0: लेकिन भूखे पेट कोई हौसला रखे भी तो कब तक? कब तक बलबीर स्वामी, कब तक?
1: मजदूरों की पीड़ा समझने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें उनकी पीड़ा दूर भी करनी होगी। हाँ, मजदूरों की पीड़ा दूर होगी तभी उनमें नए उत्साह का संचार होगा। और तो और, दुख की बात तो यह है कि हमने यूनियन का जो प्रतिनिधिमंडल दिल्ली मुख्यालय भेजा था वो अभी तक

0: लौट कर नहीं आया है।
1: अब
0: फिर भी तुम चिंता मत करो, हम शास्त्री जी से इस विषय में बात करेंगे।
1: ठीक है। अरे बलबीर,
0: हाँ
1: ये कौन आ रहा है?
0: अरे अरे कालू राम, तुम इस वक्त यहाँ?
2: अरे हाँ बलबीर भाई, वो क्या है कि शास्त्री जी के यहाँ से खबर आई है कि दिल्ली गया हुआ हमारा प्रतिनिधि मंडल वापिस लौट रहा है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है तुमने।
1: हाँ।
0: अब चिंता की कोई बात नहीं यशवंत, मुख्यालय से आने वाले आदमी कंपनी के अधिकारियों से मिलकर बातचीत करेंगे, हमारी मांगे जरूर पूरी होंगी, सारे मजदूर परमानेंट होंगे और कोई भी दिहाड़ी मजदूर नहीं रहेगा।
1: अब हम लोग शास्त्री जी से मिलने कब चल रहे हैं बलबीर?
0: परसों सुबह। हाँ एक बात और।
1: अरे अब कौन सी बात रह गई?
0: देखो, शाम के वक्त जब नए मजदूरों को पगार मिलती है उस समय तुम अपने मजदूर साथियों के साथ जुलूस निकालोगे, नारे लगवाओगे तुम।
1: लेकिन बलबीर, इससे तो हमारा पीस वर्करों के साथ संघर्ष हो सकता है, खून खराबा भी हो सकता है।
2: अरे तो कोई परवाह नहीं। देखो यशवंत भाई, अगर कुछ मजदूरों का खून बहता है तो बह जाने दो।
1: क्या?
3: दादी माँ
4: बेटी,
3: कुछ खाने को दो ना, बहुत जोर से भूख लगी है, 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया। कुछ खाने को दो।
4: घर में एक दाना नहीं है बेटी, एक भी दाना नहीं है, हम भी कई दिन से भूखे हैं।
3: दादी
4: भला तुझे कहाँ से खाने को दें?
3: दादी माँ, अगर मुझे खाने को नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। मैं मरना नहीं चाहती दादी।
4: पार्वती,
3: मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो दादी।
4: तू क्यों रो रहा है भृगु?
5: कितना लाचार हूँ मैं, कितना लाचार, अपनी बेटी और बूढ़ी माँ का पेट तक नहीं भर सकता मैं।
4: अरे आग लगे यूनियन बाजी को, जिसने हमारे बच्चों के पेट से रोटी छीन ली। अरे क्या फायदा हुआ इस हड़ताल से, क्या फायदा हुआ?
3: बापू मत रो, बापू मत रो दादी, मुझे भूख नहीं लगी, मुझे भूख नहीं लगी, अगर भूख लगेगी तो पानी पी लूंगी, मगर आप लोग मत रो बापू, मत रो दादी।

0: शास्त्री जी, धीरे धीरे स्थिति खराब होती जा रही है। अरे सफाई कर्मचारियों की हालत और भी खराब हो गई है। मुंशीगंज के किसान गेहूं देने से मना कर रहे हैं। पीस वर्कर और हमारे मजदूरों के बीच देखिए कभी भी झगड़ा हो सकता है, खून खराबा हो सकता है, खून की नदियां बह सकती हैं शास्त्री जी, खून की नदियां।
1: अच्छा देखो भाई, मुख्यालय से प्रतिनिधियों को आने दो, फिर हम सब मिलकर कंपनी के अधिकारियों से बात करेंगे। हैं? अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
0: हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है शास्त्री जी। पिछली सरकार ने सन 1976 का बोनस नहीं दिया, नई सरकार ने यह बिल पास किया है, लेकिन कंपनी 1977 में यह बोनस देने का वादा करके भी मुकर रही है। फिर हमारी तीसरी मांग यानी मजदूरों की छटनी बंद करने का फैसला पहली बैठक में नहीं लिया जा सका था, दूसरी बैठक में ही इसका कोई फैसला हो सकता है शास्त्री जी।
1: ओफो, अरे तुम लोगों के पास आत्मबल नहीं है, बिना किसी ज्ञान के नेता बनने वालों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है।
0: अब
1: मुझे सलाह देने आए हो तो सुनो, ये हड़ताल चलती रहेगी समझो तुम।
0: शास्त्री जी, सुनने में आया है कि दिल्ली मुख्यालय से प्रतिनिधि मंडल यहाँ आ रहा है।
1: आ तो रहा है, तो फिर
0: हमारी यूनियन चाहती है कि यूनियन के स्थानीय नेता यानी हम लोग उनसे मिले, कंपनी अधिकारियों के साथ होने वाली बातचीत में शामिल हों।
1: सुनो मेरी बात, मुख्यालय से आने वाले प्रतिनिधियों के साथ तुम लोगों की बैठक नहीं हो सकती, समझे?
0: लेकिन शास्त्री जी,
1: लेकिन कुछ नहीं, दिखाई मत दिखाओ। अरे तुम लोगों में कितना जोश है भाई, मुख्यालय वालों को भी जानने दो। अरे मैं लीगल फाइट करवा दूंगा, लीगल फाइट। आसपास के दूसरे कारखानों में भी टोकन स्ट्राइक शुरू हो जाएगी।
0: हमारे फंड में बिल्कुल पैसा नहीं है शास्त्री जी, बाहर से कोई सहायता भी नहीं आई है, ऐसी स्थिति में और दूर तक सोचना भी असंभव है, बिल्कुल नामुमकिन। आपको पता है हड़ताली मजदूरों में भुखमरी फैल गई है। अरे कुछ दिन बाद मजदूरों की लाशें बिछनी शुरू हो जाएंगी, तब क्या होगा शास्त्री जी, तब क्या होगा?
1: ये सब उस लेबर इंस्पेक्टर का किया धरा है, वही मुंशीगंज के किसानों को तुम मजदूरों के खिलाफ भड़का रहा है।
0: क्या वो मोटा लेबर इंस्पेक्टर लोगों को भड़का रहा है?
1: हाँ, मुझे पक्की खबर मिली है। अरे कुछ दिन पहले वो किसानों से कहता फिर रहा था कि
2: सुनो मुंशीगंज के किसानों, मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई भी किसान हड़ताली मजदूरों की मदद नहीं करेगा, उन्हें गेहूं चावल उधार नहीं देगा।
3: हाँ बिल्कुल नहीं देगा, ये हड़ताल गैर कानूनी है। अरे भूखा रहने पर जब मजदूरों का पेट उनकी पीठ से चिपक जाएगा तो हड़ताल का नशा भी उतर जाएगा।
2: लेकिन कुछ नहीं, ये कंपनी अपने मजदूरों को दूसरी कंपनियों से 30% अधिक देती है। द वेजेस ऑफ वर्कर्स आर लिंक्ड विद द प्राइस अंडर।
4: अरे इंस्पेक्टर साहब, ये अंग्रेजी में क्या गिटर-पिटर कर रहे हो?
3: अरे होगा कोई कानून? सुनो, अगर अब हम मजदूरों की मदद करेंगे तो हमें भी जेल हो जाएगी।
2: गुड, वेरी गुड। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे।
3: हाँ।
5: ये क्या है?
1: दुश्मन का सामना करना सीखो। अरे फंड खत्म हो गया है तो दिमाग से काम लो, दिमाग से। सुनो, सुना है एक ट्रक में भरकर कंपनी की सीमेंट रायबरेली पहुंच रही है, समझ से काम लो, समझ से।
0: लेकिन इससे भयानक कांड हो सकता है शास्त्री जी।
6: पुलिस चारों तरफ गश्त लगा रही है, गोलीबारी भी हो सकती है।
1: धिक्कार है तुम लोगों पर, धिक्कार है तुम लोगों पर। ओ तुम लोग ऐसे काम के लायक हो ही नहीं। जाओ, अरे जाओ यहां से, चलो जाओ यहां से।
6: चलो
7: चलो। अरे यशवंत, आज ये कंपनी के दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर नया नोटिस ही है ना?
0: अरे हाँ, ये तो नया नोटिस है। आज की तारीख है इस पर।
7: जरा पढ़कर तो सुनाओ, मैं अपना चश्मा भूल आया हूँ।
0: हाँ पढ़ता हूँ। लिखा है, यूनियन के नेताओं, तुम लोगों ने मजदूरों को गलत रास्ता दिखाया है। तुम लोगों ने अपनी बेबुनियाद मांग रखकर कंपनी को धमकी दी है।
7: अच्छा,
0: काम खत्म होने के बाद धीरे धीरे दिहाड़ी मजदूरों की छटाई होगी, ये कंपनी का कानून सम्मत काम है, उच्चतम न्यायालय भी इसे मानेगा।
7: ओह, तो अब कंपनी यूनियन को कमजोर करने के लिए इस तरह की ओछी हरकतों पर उतर आई है, नए नए हथकंडे अपना रही है।
0: लेकिन बलबीर, अगर उच्चतम न्यायालय ने सचमुच कंपनी के इस नोटिस को मान्यता दे दी तो क्या होगा? अरे बेचारे दिहाड़ी मजदूर तो कहीं के नहीं रहेंगे।
7: चिंता मत कर यशवंत, अंत में जीत हमारी ही होगी, मजदूरों को उनका हक मिलकर रहेगा। आखिर जिन मजदूरों ने अपनी जिंदगी के 20-20 साल दिए हैं, क्या उनका कंपनी पर कोई हक नहीं बनता?
0: अरे बिना मजदूरों के कंपनी का क्या अस्तित्व, उन मजदूरों का कंपनी पर पूरा हक है।
7: हाँ।
0: अपने खून पसीने से सींचा है मजदूरों ने इस कंपनी को।
7: जरूरत पड़ी तो हम हाई कोर्ट में भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन मजदूरों को उनके हक से वंचित नहीं होने देंगे, और इसके लिए भले ही हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी।
0: ठीक कहते हो बलवीर।

कितने दिन हो गए खाना खाए, ठीक से याद भी नहीं, सूख कर कांटा हो गई हूं। मेरा बच्चा भी भूख से किस तरह बिलबिला रहा है, और मेरा बीमार पति वो तो कंकाल बनकर रह गया है। हे भगवान, कब तक जिंदा रह पाएंगे हम लोग इस तरह।

0: क्या हड़ताल हम लोगों की जिंदगी अब ली जाएगी? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। कमजोरी के कारण मेरा सिर चकराने लगा है। एक कदम आगे चलने की हिम्मत नहीं रही। क्या करूं मैं, क्या करूं, कहां जाऊं? भूख भी तो लगी है ना। याद आया, परसों कच्चे तरबूज को सूखे कांटों से ढककर आई थी मैं, ताकि किसी की निगाह उस पर ना पड़े। हाँ, चलकर तरबूज खाती हूँ। हाँ, कुछ तो भूख मिटेगी। जल्दी चलो, कहीं कोई दूसरा या कोई जानवर ही ना खा गया हो। हाँ, मुझे जल्दी चलना चाहिए। अरे, ये क्या तरबूज तो कोई खा गया। यहाँ तो तरबूज के छिलकों के खाली टुकड़े पड़े हुए हैं। किस तरह ढक छिपा कर गई थी मैं उसे, पता नहीं किसकी निगाह पड़ गई। क्या करूं, पता नहीं किसने खाया होगा मेरे इस तरबूज को। किसने खाया होगा? अरे अरे, यहाँ तो बसुमती काकी बैठी हुई है। जरूर इसी ने मेरा तरबूज चबा चबा कर खा डाला है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मैं बसुमती काकी।
1: अरे कौन, नारायणी? आजा, यहाँ बैठ। देख, एक तरबूज लगा हुआ था। अरे बंदरों की नजर तो नहीं पड़ी, हमारी पड़ गई। हाय हाय, बहुत दिन के बाद पेट में गया। हाँ, दो चार दिन और जी लेंगे हम। हैं? क्या बात है नारायणी? अरे तो मुंह लटकाए क्यों खड़ी है?
0: राक्षसनी बुढ़िया, कितना छिपा कर रखा मैंने इसे, फिर भी तेरी कित निगाह पड़ गई इस पर। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरे बाल रोज लूंगी।
1: कैसी बात कर रही है नारायणी तू?
0: मेरे तरबूज
1: नारायणी। अरे हम तेरा दुख समझते हैं। हाय हाय हाय हाय,
2: देख तो तेरा शरीर कीड़े लगे पपीते जैसा ढीला पड़ गया है।
0: काकी,
2: नारायणी,
0: वो तरबूज मैंने अपने लिए छिपाया था, क्यों खा लिया तुमने? क्यों?
1: अरे ये जमीन क्या तेरे बाप की है, है? जो उस तरबूज को अपना बता रही है। क्या तू नहीं जानती, दो दिन पहले जंगली जलेबी को लेकर भयंकर मारपीट हो गई थी। चल छोड़ ये सब, छोड़, यहाँ बैठ मेरे पास, आजा। ये तो गुमसुम कैसे बैठ गई? नारायणी, पेट में बच्चा है क्या?
0: काकी,
1: अरे सुन, हम छठवे महीना में भी पेट से बच्चा निकाल सकते हैं।
2: हाँ, जैसे जंगली डूमर का फल काटकर उसका बीज निकाला जाता है।
1: अरे सुन तो, जंगली जलेबी के रस से हम दवाई बना सकते हैं।
2: अरे कंवर बेद में जब हम रहते थे ना, तो ऊंट के मुंह से निकलने वाली झाग से दवाई बनानी सीखी थी। बहुत बढ़िया दवाई होती है ये, सांप के जहर से भी तीखी। हाँ, तू कहे तो तेरे लिए दवा बना दूं, हैं?
1: अरे कंवर बेद में हमने एक औरत से खास दवाई बनानी सीखी थी। मुंह काला करके आई औरत को मरघट ले जाकर।
0: चुप रह बुढ़िया, वरना तेरा गला घोंट दूंगी मैं।
1: अरे नारायणी,
3: अरे रे रे, हम जानते हैं तुझे बच्चा गिराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हमको तो पता है ठाकुर साहब को ध्वजपात की बीमारी है।
0: क्या?
3: तू चिंता न करना रायनी, हमको सब याद है।
1: अरे तूने भी सुना होगा, बेकी नदी पर बने पुल पर हमारा काम लगा हुआ था।
4: बाप रे, भयानक बारिश, बिजली की चमक और गर्जन, 5 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश।
1: और जब बारिश कम होती तभी काम शुरू होता।
3: तब हम साहब के कपड़े धोते थे,
1: उस समय लकड़ी के फट्टे पर से कई मजदूरन का पैर फिसल गया। अरे बहुत से तो मजदूर धड़ाम से गिरे और एक मजदूर के सीने में तो सरिया आर पार हो गया था।
3: हाय हाय, वो तो तुरंत ही मर गया था। और 2 मजदूरों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
0: ए बुढ़िया, क्या बकबक कर रही है तू?
3: ये बकबक नहीं है रानी। अरे बहुत कम लोगों को पता है कि मजदूरों के साथ ठाकुर साहब भी गिर गए थे।
4: हाँ,
3: और ये तो बाद में पता लगा कि बच्चा पैदा करने की ताकत खत्म हो गई उनकी।
4: हाँ
0: काकी, तुम सच कह रही हो ना?
3: और नहीं तो क्या। अरे हम ऐसे ही रामायण गाते हैं। अरे हमारी बात बिल्कुल सच है नारायणी।
0: इसका मतलब आप मानती हैं कि मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, मेरा ठाकुर साहब से कोई गलत रिश्ता नहीं है।
3: कोई माने या ना माने, हम तो मानते हैं।
0: ओ काकी, आप कितनी अच्छी हैं, कितनी अच्छी हैं। मैंने आपको कितना भला बुरा कहा। काकी मुझे माफ कर दो।
3: अरे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है नारायणी, ये भूख जो करवाए सो कम है।
2: अरे भूख तो एक माँ को बेटे का मांस खिला देती है, एक बेटे का मांस माँ को।
0: काकी एक तुम ही हो जिसने मेरे चरित्र पर विश्वास किया, वरना सब के सब मुझे गलत समझते हैं काकी, गलत समझते हैं।
1: नारायणी, ये नारा सुन रही है तू? होशियार रहे, ये नारा किसी का नहीं है।
3: अरे रुपए की झंझनाहट सारे नाश को कब्र में ले जाएगी।
2: ये नारा तो मुझे भी कब्र में ले जाने के लिए ही बना है। अरे इससे किसी की भलाई नहीं होगी। ये देख, ये मेरी कुबड़ी पीठ देख, अरे हमारे बालक देख, अरे अपने लड़के की हालत देख, ये सब हालत हड़ताल और नारों की देन है।
0: हाँ काकी,
2: आज हम पर कुत्ते भौंकते हैं, बालक पत्थर मारते हैं, अब तो हमारे मरने के दिन दूर नहीं है। ये नारा हम बहुत सुन चुके, बहुत सुन लिया ये नारा। ये जो नेता मजदूरी करने वाले मजदूरों को भूखा रख के हड़ताल करते हैं ना, उनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हाँ, हमारा अभिशाप है ये, सारे के सारे मजदूरन का अभिशाप है ये। अरे की

अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करती हुई एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
0: यह आकाशवाणी भोपाल है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

नमस्कार, मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलो हर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। सांध्यकालीन सभा में आप सभी का स्वागत है। 5 बजने वाले हैं। मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। 21 जून को मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2026 के पूर्व में जारी कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब प्रारूप मतदाता सूची में दावे आपत्ति 25 जून तक लिए जाएंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 2 जुलाई तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने विषय पर विभागीय परामर्श कार्यशाला का शुभारंभ किया और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां लगातार जोर पकड़ रही हैं। राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मौसम विभाग ने भोपाल ग्वालियर संभाग में अगले 2 दिनों तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है, लीजिए अब सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

साथियों, आप सुन रहे थे गीत फिल्म बदलापुर से, जिसमें स्वर थे आतिफ असलम के, गीतकार हैं दिनेश विजन और संगीतकार सचिन जिगर। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे घरों में जो सबसे मजबूत दीवार होती है ना, वो ईंट पत्थर की नहीं होती, वो हमारे घर के बुजुर्गों के तजुर्बे और उनके आशीर्वाद की होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी आशीर्वाद को संजोने के लिए एक पूरा दिन डेडिकेट करना पड़ा? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की, इतिहास की। ये खास दिन हर साल आज ही यानी 15 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। दरअसल

थी। दोस्तों दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून को संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को कैलेंडर में शामिल कर लिया, जिसने इस अभियान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉ एनफोर्समेंट और मॉरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड की। संयुक्त राष्ट्र की इस मुहर का ही परिणाम था कि भारत के साथ दुनिया भर की सरकारों ने वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए कड़े कानून बनाए, मेंटेनेंस टर्बुलेंस एस्टेब्लिश करने और डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर शुरू करने जैसे सख्त कदम उठाए। दोस्तों हर साल यूनाइटेड नेशंस एक थीम डिसाइड करता है, जिससे दुनिया को ये बताया जाता है कि इस पूरे साल हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बात करें इस साल की, तो साल 2026 की ऑफिशियल थीम यूनाइटेड नेशंस द्वारा बियॉन्ड अवेयरनेस मेकिंग एल्डर अब्यूज प्रिवेंशन वर्क, यानी जागरूकता से आगे बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम को प्रभावी बनाना तय की गई है। ये थीम इस बात का स्पष्ट संकेत है कि समाज अब सिर्फ प्रॉब्लम को पहचानने या उसके बारे में बात करने के दौर से बहुत आगे निकल चुका है। अब ज़मीन पर ठोस कानून, नियम और सुरक्षा प्रणाली लागू करने का वक्त है। पिछले 20 सालों में दुनिया भर में इस बात को लेकर काफ़ी अवेयरनेस फैली है कि बुज़ुर्गों के साथ दुर्व्यवहार होता है, लेकिन सिर्फ ये जान लेना काफ़ी नहीं है। साल 2026 की थीम इस बात पर जोर देती है कि अब हमें आगे बढ़कर ऐसे सिस्टम्स तैयार करने होंगे जो रियलिटी में उनकी रक्षा करें और अपराध होने से पहले ही उसे रोक सकें। साथियों आगे जानेंगे हम कि इस दिन को कैसे मना सकते हैं, लेकिन आइए पहले सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

साथियों, आप सुन रहे थे गीत फिल्म पीके से, जिसमें स्वर थे शान और श्रेया घोषाल के, गीतकार सुवंद किरकिरे और संगीतकार शांतनु मोइत्रा। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस दिन को यादगार बनाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, ये दिन को यादगार बनाने की शुरुआत हम अपने खुद के घर से कर सकते हैं, जहां हम अपने दादा दादी या माता पिता के साथ बैठकर बातें करनी चाहिए और उन्हें ये एहसास दिलाना चाहिए कि वह हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। हम उन्हें किसी पास के ही पार्क या मंदिर घुमाने ले जा सकते हैं। वैसे तो ये रूटीन बेसिस पे करवाना ही चाहिए, लेकिन आज के दिन को और स्पेशल बनाते हुए हमें उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए इस दिन उनका एक मेडिकल चेकअप भी ज़रूर करवाना चाहिए। दोस्तों, बात करें भारत में तो इस दिन को बहुत ही सीधे और आसान तरीके से मनाया जाता है, ताकि लोग बुज़ुर्गों के दुख दर्द को समझ सकें। इस दिन स्कूल और कॉलेज के बच्चे पास के वृद्धाश्रम में रहते हैं और उन्हें अकेलापन महसूस ना हो, इसीलिए उनके साथ बातचीत करते हैं। कई जगहों पर डॉक्टरों की मदद से बुज़ुर्गों के लिए मुफ्त हेल्थ चेकअप लगाए जाते हैं, जहाँ सेहत की जाँच मुफ्त में की जाती है। दोस्तों, कुल मिलाकर भारत में इस दिन को मनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे देश का हर बुज़ुर्ग खुश रहे, सुरक्षित रहे और उन्हें अपने ही घर में पूरा सम्मान मिले। साथियों, अब समय हो गया है रोज़गार सूचना का। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अप्रेंटिस के 4,500 पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से ग्रेजुएशन का होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है और अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला मज़ेदार गीत।

0: दोस्तों, आप सुन रहे थे गीत फिल्म बार बार देखो से, जिसमें स्वर, संगीत और गीत तीनों ही है अर्को प्रावो मुखर्जी का। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है? कोई लोग कहेगा अंधेरा या कुछ लोग कहेंगे ऊंचाई, लेकिन रिसर्च कहती हैं कि लोगों का सबसे ज़्यादा डर चार इंसानों के सामने खड़े होकर बोलने से लगता है, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग से लगता है। ऐसे में ग्रुप डिस्कशन आपके उस डर को भगाने में मदद करता है। आइए जानते हैं ग्रुप डिस्कशन होता क्या है। दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन का सीधा मतलब होता है किसी एक टॉपिक पर लोगों के ग्रुप यानी कि समूह द्वारा आपस में की जाने वाली चर्चा। जब 8 से 12 लोगों को एक साथ एक ग्रुप में बांट दिया जाता है और उन्हें बातचीत करने के लिए कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है तो उसको ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। इसमें सभी लोग बारी बारी से उस टॉपिक पर अपने अपने विचार, ज्ञान और राय सामने रखते हैं। इसका मोटिव किसी मुद्दे या फिर विषय को अच्छे से समझने और एक सही नतीजे पर पहुंचने है। कंपनियां और कॉलेजेस इसका यूज़ ये देखने के लिए करते हैं कि आप लोगों के बीच बैठकर कैसे बात करते हैं और आपका बिहेवियर कैसा होता है। दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन हमारे अंदर से पब्लिक स्पीकिंग और स्टेज फियर को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकता है। जब हम किसी बड़े स्टेज पर हज़ारों अनजान लोगों के सामने खड़े होते हैं तो घबराहट होना बेहद लाजमी है, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में हम सिर्फ 8 से 10 लोगों की एक छोटे और सुरक्षित समूह के बीच में ही बैठते हैं। यहाँ हमें खड़े होकर लंबे भाषण देने का कोई प्रेशर नहीं होता, बल्कि अपनी बात को छोटे छोटे पॉइंट्स में कहना होता है। लोगों से आमने सामने बात करने से हमारे अंदर की सोशल एंग्जाइटी और हाथ पैर का कांपना अपने आप कम हो जाता है। सामने बैठे लोगों से आई कॉन्टैक्ट करना भी एक बड़े हॉल के कंपैरिजन में काफ़ी आसान होता है। डिस्कशन के दौरान अगर हम कहीं थोड़ा बहुत अटकते भी हैं तो ग्रुप के दूसरे मेंबर बोलना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे ऊपर से मेंटल प्रेशर हट जाता है। जब बाकी लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उस पर सहमति जताते हैं तो हमारा खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाता है। ये बार बार होने वाला प्रैक्टिस हमारे मन से दूसरों के सामने बोलने की झिझक को हमेशा के लिए मिटा देता है। धीरे धीरे हमारा यही कॉन्फिडेंस हमें एक बेहतरीन और निडर पब्लिक स्पीकर बना देता है। साथियों, कार्यक्रम में आगे जानेंगे कैसे ग्रुप डिस्कशन हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, लेकिन आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।
1: जवान पीछे से गाना गाएगा।

दोस्तों आप सुन रहे थे गीत फिल्म केसरी से, जिसमें स्वर थे रूमी के और ब्रजेश शांडिल्य के। गीतकार हैं कुमार और संगीतकार तनिष बागची। आइए बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन से होने वाले हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट की। इसमें सबसे पहला है इमोशनल इंटेलिजेंस। ग्रुप डिस्कशन से हमारे यूजुअल बिहेवियर को बहुत शांति और मैच्योर हो जाते हैं हम। अक्सर जब कोई आम जिंदगी में हमारी बात को काटता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में जब 10 लोग हमारे विचारों का विरोध करते हैं तब भी हमें शांत रहकर अपनी बात को लॉजिक के साथ रखना होता है। ये प्रैक्टिस हमें सिखाता है कि गुस्से या इमोशंस में बहे बिना ही किस प्रकार बहस को शांति से संभाला जा सकता है। साथ ही इसमें दूसरा पॉइंट है ओपन माइंडनेस एंड सोशल अवेयरनेस। GD यानी ग्रुप डिस्कशन के ज़रिए हमारे सोचने का नज़रिया बहुत बड़ा और खुला हो जाता है। जब हम किसी एक टॉपिक पर अलग अलग बैकग्राउंड और सोच वाले लोगों के विचार सुनते हैं तब हमें समझ आता है कि दुनिया में कई अलग माइंडसेट्स होते हैं। इसमें हमारे अंदर का संकुचित दायरा ख़त्म होता है और हम दूसरों के पर्सपेक्टिव यानी कि दृष्टिकोण को भी जगह देना शुरू करते हैं। हमारा ये व्यवहार हमें समाज में एक समझदार, दयालु और फ्लेक्सिबल इंसान बनाता है, जो किसी भी नए माहौल या फिर नए लोगों के बीच में बहुत आसानी से घुल मिल जाता है। साथियों तीसरा लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज। ये प्रोसेस हमारी बाहरी पर्सनालिटी यानी उठने बैठने और बात करने के तरीके को पूरी तरह सुधार देती है। ग्रुप डिस्कशन में बैठकर बात करते समय हमें सिखाया जाता है कि हमारी पीठ सीधी होनी चाहिए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए और बात करते समय सामने वाले की आँखों में देखना यानी कि सबसे आई कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए। ये लगातार होने वाले प्रैक्टिसेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। साथियों ये तीनों चीज़ें जब एक इंसान के बिहेवियर और एक्शंस में दिखने लगते हैं तब उसे एक अलग ही एनर्जी, एंथुसियाज्म और कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो उसके ओवरऑल पर्सनालिटी को बाकियों के मुकाबले एक अलग जगह देता है। हर जगह, हर प्लेटफॉर्म, फिर चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो या फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स हो। साथियों हमने बात की ग्रुप डिस्कशन से होने वाले फ़ायदे और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

दोस्तों आप सुन रहे थे फिल्म गब्बर से गीत, जिसमें स्वर थे अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल के, गीतकार हैं मनोज यादव और संगीतकार चितरंजन भट्ट। दोस्तों उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं आपकी रेडियो दोस्त पूजा पांडे मिलूंगी आपसे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फसा।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं दिल धड़कने दो का बहुत ही प्यारा सा गीत, यशिता शर्मा, मनीष कुमार टीपू और साथियों की आवाज़ में। जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म आजा नचले से। आवाज़ राहत फतेह अली खान की है, संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और बोल हैं जयदीप साहनी के।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मीर ब्रॉस के संगीत से सजा गीत कुमार के बोल हैं, फिल्म का नाम पागी और आवाज़ें हैं मीर ब्रॉस और मोनाली ठाकुर की।

फिल्म बागी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

Tata. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है। जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस बॉलीवुड।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पिको ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाउ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने विषय पर विभागीय परामर्श कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा की तरह महत्वपूर्ण है डेटा की सुरक्षा। उन्होंने कहा कि आज डेटा सबसे मूल्यवान संपत्ति है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। 21 जून को मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2026 के पूर्व में जारी कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब प्रारूप मतदाता सूची में दावे आपत्ति 25 जून तक लिए जाएंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 2 जुलाई तक किया जाएगा। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच 3 वनडे मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला बुधवार को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत इस श्रृंखला का पहला वनडे जीतकर 1-0 से आगे है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम की 6 बजे हैं। लीजिए सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
3: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोहले जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडे और संजय मार्कंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
3: आदरणीय अजीत जी व बिमरेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
2: जी,
3: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
2: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
3: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
2: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
3: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
2: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
3: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
3: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
3: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
2: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
3: श्रोताओं, हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
2: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 से 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे। बड़े आंवले जैसे।
2: कितने खूबसूरत हैं, अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था। कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
3: लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
3: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
3: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
3: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे। ओह,
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
4: सात का पहला सुनो।
5: सात एकम सात,
6: सात एकम सात,
5: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
2: आ गया, जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी, उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
7: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
2: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
7: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
2: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
7: अप्पू,
0: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
7: अरे, तू उधर क्या कर रहा है?
0: उसका दम घुट रहा था।
7: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
7: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
2: मास्टर जी,
7: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
2: वो
0: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
7: हाँ हाँ, बता, डरना मत।
2: वो
0: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
7: हाँ हाँ,
0: वो कांपते हुए बोला,
2: वो कंचा।
7: कंचा?
0: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
7: स्टैंड अप।
0: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
2: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
0: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
2: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
0: तब शक हुआ,
2: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो?
7: किसी को शक हो तो पूछ लो।
0: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
7: क्या किसी को कोई शक नहीं?
2: नहीं मास्टर जी।
0: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
2: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
7: अप्पू, क्या सोच रहे हो?
2: वो मैं
7: पूछ लो ना, शंका क्या है?
2: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
7: क्या सोच रहे हो?
2: वो पैसे।
7: क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
2: हाँ।
7: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
0: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
2: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
0: चपरासी एक नोटिस लाया।
8: मास्टर जी, नोटिस है।
7: लाओ।
0: मास्टर जी ने कहा
7: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
0: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
2: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
0: वो बेंच से उतरा।
7: किधर?
0: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
2: फीस देनी है।
7: फीस मत देना,
0: मास्टर ने कहा। वो छिछकता रहा।
7: ऑन द बेंच।
0: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
7: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
2: ध्यान दूंगा।
0: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
3: बच्चों एक एक करके आओ,
0: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
8: पहले मैं आया हूँ, मेरे बाकी पैसे।
0: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
2: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
0: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
7: क्या सब फीस जमा कर चुके?
9: जी मास्टर जी।
0: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

0: शाम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर?
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया।
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
3: माँ,
4: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
2: क्या देखो माँ?
4: अरे ये क्या है?
2: मैं नहीं बताऊंगा।
4: मुझसे नहीं कहेगा?
2: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
2: खरीदे हैं।
4: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
2: दोपहर को दिए थे ना।
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
4: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
2: बुरे कंचे हैं, है ना?
4: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
2: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
4: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
3: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में मेरा साया फिल्म का गीत, राजा मेहंदी अली खान का शब्द है और संगीत मदन मोहन के।

पगला कहीं का। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम आजकल।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है रेडियो प्रसारण के 90 वर्ष। आलेख श्री अनिल माथुर, पूर्व संचालक जनसंपर्क विभाग और रेडियो प्रसारक भोपाल।

0: भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने 1927 में प्रसारण शुरू किया। कुछ साल बाद 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। हिंदी भाषा में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। उस दौर में रेडियो संचार का सबसे सशक्त और लोकप्रिय माध्यम था। वे लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे रेडियो से सूचनाएं लेते थे। रेडियो मनोरंजन का भी बड़ा साधन बन गया था। रेडियो सीलोन ने हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम शुरू किए जिन्हें भारत में बड़े चाव से सुना जाता था। तब आकाशवाणी ने अपनी अलग मनोरंजन सेवा की शुरुआत की जिसे विविध भारती का नाम दिया गया। धीरे धीरे अपने फिल्मी गीतों के कार्यक्रमों से विविध भारती इतनी लोकप्रिय हो गई कि रेडियो सीलोन के श्रोता नाम मात्र के रह गए। आधुनिक दौर में निजी रेडियो चैनलों से प्रसारण आरंभ हो गया। युवाओं को आकर्षित करने के लिए इन चैनलों ने नित नए प्रयोग किए और ये क्रम आज भी बदस्तूर जारी है। इनके प्रस्तुतिकरण में वो सब शामिल किया गया है जो आज के युवा वर्ग को आकर्षित करता है। निजी एफएम चैनल का प्रसारण 40 किलोमीटर तक सीमित है। इसके बाद इन चैनलों को सुनना मुश्किल होता है। इसके विपरीत आकाशवाणी की पहुंच देश की 98% आबादी तक है। इस कारण आकाशवाणी सूचनाओं के संप्रेषण के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली माध्यम है। अपनी 90 साल की यात्रा में आकाशवाणी ने नित नए आयाम स्थापित किए। अपनी पुरानी तकनीक को रेडियो ने धीरे धीरे पीछे छोड़ा और नई तकनीक को अपनाया। यही स्थिति कार्यक्रमों को लेकर है। आकाशवाणी के स्टूडियो में पहले टेप डिस्क और टर्न टेबल लगी हुई थी, लेकिन तकनीक बदली और टर्न टेबल और टेप डिस्क के स्थान पर कंप्यूटर स्थापित किए गए। इसके चलते प्रसारण काफी आसान हो गया। फिर एफएम तकनीक विकसित हो गई जिससे प्रसारण बहुत साफ सुनाई देने लगा। ध्वनि गुणवत्ता बेहतर हो गई और आवाज के साथ आने वाला शोर समाप्त हो गया। इस दौरान रेडियो के कार्यक्रमों में भी भारी बदलाव देखने को मिले। श्रोताओं से सीधे रूबरू होने के लिए फोन इन कार्यक्रम शुरू किए गए। आकाशवाणी भोपाल इसमें सबसे आगे रहा। यहाँ सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल शुरू किया गया जिसमें आकाशवाणी के प्रतिनिधि फील्ड पर मौजूद रहकर सीधे लोगों से संवाद करते थे जिनका फोन से सजीव प्रसारण होता था। फिल्मी गीतों के फोन इन कार्यक्रम में श्रोता सीधे फोन करके अपनी पसंद के गीत सुन सकते थे। इसी तरह समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं। खेती किसानी की जानकारी विशेषज्ञ फोन पर दे रहे हैं। आज डिजिटल इंटरनेट और सैटेलाइट रेडियो के युग में पुरानी तकनीक भले ही पीछे छूट गई हो लेकिन उसने आधुनिक प्रसारण की नींव रखी। 21वीं सदी में पॉडकास्ट वेब रेडियो और मोबाइल ऐप ने प्रसारण को नई पहचान दी। आधुनिक दौर में रेडियो मोबाइल में ही है जिसे कहीं भी सुन सकते हैं अगर आपके पास नेट की सुविधा उपलब्ध है। आकाशवाणी ने इस बीच कई नवाचार भी किए जो श्रोताओं को जोड़ने में कारगर साबित हुए। एक ओर आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल स्थानीय स्तर पर लोगों को आकर्षित करने में सफल हुए वहीं विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों में श्रोताओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। 12 साल पहले आकाशवाणी ने एक नए सॉफ्टवेयर नेतिया पर काम करना शुरू किया। इस सॉफ्टवेयर ने प्रसारण को बहुत सुगम बना दिया। सभी फिल्मी गानों को सॉफ्टवेयर में लोड कर दिया गया है। इस वजह से फरमाइशी गीतों के कार्यक्रमों विशेषकर फोन इन कार्यक्रमों में लाइब्रेरी से गीत का रिकॉर्ड ढूंढ कर लाने और फिर बजाने के झंझट से मुक्ति मिल गई। अब फोन पर श्रोता के द्वारा पसंद का गाना बताते ही उद्घोषक गीत कंप्यूटर पर सर्च कर बजा देता है। इस व्यवस्था से समय की बचत होने लगी और निर्धारित समय में ज्यादा श्रोताओं की पसंद के गीत बजाने का अवसर मिलने लगा। आकाशवाणी के कार्यक्रम युगवाणी, महिला जगत और ग्राम सभा आदि में इन वर्गों के लिए सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है। आकाशवाणी के समाचारों की बात करें तो उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। देश विदेश के आधिकारिक समाचार केवल आकाशवाणी पर ही प्रसारित होते हैं। आज के समय समाचारों का सबसे अच्छा माध्यम आकाशवाणी के बुलेटिन है, इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आकाशवाणी के लिए की जा रही पत्रकारिता का स्वरूप आज भी वही है जैसा वर्षों पहले हुआ करता था। अंतर केवल बस इतना है कि ऑडियो क्लिप भी बुलेटिन में ली जाती है, इसलिए अब पहले की तुलना में समाचार बुलेटिन ज्यादा समृद्ध है। 9 दशकों में आकाशवाणी ने हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति की है और आशा की जानी चाहिए कि क्रम कभी नहीं टूटेगा। कार्यक्रम आजकल में बस इतना ही। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल। विषय था रेडियो प्रसारण के 90 वर्ष। आलेख था अनिल माथुर, पूर्व संचालक जनसंपर्क विभाग एवं रेडियो प्रसारक भोपाल, वाचन दीपा सिंह का। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार दर्शन।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं नवनीत चौबे। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। इस सप्ताह हमारा प्रादेशिक समाचार दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 सालों के दौरान उनके द्वारा आम नागरिकों के लिए चलाई महत्वपूर्ण योजनाओं पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, लखपति दीदी योजना से लेकर स्वच्छता सर्वेक्षण तक महत्वपूर्ण पहलों से कैसे आम नागरिक के जीवन में बड़े बदलाव आए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन शुरू होने से पहले हम बात करते हैं उन हितग्राहियों की जिनके जीवन में केंद्र सरकार की योजनाओं ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में लाभान्वित शिव कुमार परमार कहते हैं कि
1: कुमार परमार है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से हमारे परिवार में नियमित रूप से निःशुल्क राशन मिल रहा है। इससे हमारे घर का खर्च कम हुआ है और परिवार में खाद्य सुरक्षा निश्चित हुई है। कठिन समय में यह योजना गरीब परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित हुई है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना के तहत घर पर ही पेयजल उपलब्ध होने पर पूनम सोनी ने बताया,
2: मेरा नाम पूनम सोनी है। पहले मैं हैंड पंप में पानी भरती थी, अब पानी मिल रहा है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं।
0: महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल लखपति दीदी बनकर पार्वती प्रजापति बताती हैं कि
3: मेरा नाम पार्वती प्रजापति है, मैं ग्राम दिल्लोद की हूँ। मेरा समूह का नाम अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह है। इसमें समूह से जुड़ के मैंने शुरू में आरएफ लिया, उससे मैंने ये छोटा सा मेरे घर में ही पानी पूरी का, मेरे गांव में तो नहीं थी, मैंने पानी पूरी का बिजनेस शुरू हुआ छोटे स्तर पे। फिर मैंने सीआईएफ राशि ली तो उससे मैंने एक ठेला भी खरीदा और घर में पानी पूरी बनाती। 2000 रुपए 2500 रुपए अभी तक मुझे गाँव में ही हो जाती है दिन की इनकम।
0: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित पुष्पेंद्र राजपूत बताते हैं कि
4: मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह राजपूत, मुझे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा जो एक कृषक सम्मान निधि दिया जाता है, ये समय समय पर आता है और जो रुपए आता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा, उससे मैं कृषि के सामग्री, खाद, बीज इत्यादि को समय समय पर खरीदता हूँ और उसका उपयोग करता हूँ। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ।
0: तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है ग्वालियर से, जहां प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत शासकीय भवनों की छतों पर रेस्को पद्धति अंतर्गत सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इस योजना से शून्य निवेश से बिजली की बचत का कार्य किया जा रहा है। पेश है ग्वालियर से हमारे संवाददाता नवीन श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत शासकीय भवनों की छतों पर रेस्को पद्धति अंतर्गत सोलर रूफ टॉप संयंत्र लगाकर बिजली

0: बचत के साथ साथ शून्य निवेश से बिजली की बचत का कार्य किया जा रहा है। योजना के तहत ग्वालियर के 30 शासकीय भवनों पर सोलर रूफ टॉप संयंत्र लगाने का अनुबंध हाल ही में प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला की उपस्थिति में संपन्न हुआ। प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा,
1: सरकारी छतों को एक साल के अंदर सोलराइज करने का मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश के हमारे विभाग ने ये निर्णय लिया है कि एक वर्ष के अंदर हम पूरे मध्य प्रदेश में सोलर के द्वारा पूरी सरकारी छतों को सोलराइज करेंगे।
0: प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक संयंत्र स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत ग्वालियर जिले में अधिक से अधिक शासकीय भवनों पर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की बचत के लिए सोलर संयंत्र लगे, इसके सार्थक प्रयास किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव।
2: हमारी दूसरी खबर है देवास जिले से, जहां आयुष्मान भारत योजना का व्यापक विस्तार हुआ है। यहां बड़ी संख्या में आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे देवास संवाददाता नितिन गुप्ता।
3: मध्य प्रदेश के देवास जिले में आयुष्मान भारत योजना का व्यापक विस्तार हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। देवास जिले में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय निकायों के समन्वय से योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष शिविरों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत जिले के शासकीय और संबद्ध निजी अस्पतालों में हृदय रोग, कैंसर, किडनी, न्यूरो सर्जरी सहित अनेक गंभीर बीमारियों का निशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। हाल के वर्षों में आयुष्मान कार्ड के हितग्राहियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सतत प्रयासों से यह योजना जिले के हजारों परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत आधार बन चुकी है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता।
2: हमारी अगली खबर है हरदा जिले से, जहां प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में बीते दिनों विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हरदा से हमारे संवाददाता लोमेश गौर।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में बीते दिनों विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एचपी सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है। सभी पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गई तथा उच्च जोखिम वाली महिलाओं की पहचान कर विशेष उपचार व नियमित फॉलो अप लिया जा रहा है। शिविर में हीमोग्लोबिन, यूरिन, सुगर, मलेरिया, BDRL, सिकल सेल, HIV, हेपेटाइटिस व ब्लड ग्रुपिंग सहित अन्य निशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान जिला अस्पताल सहित सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हरदा से लोमेश कुमार गौर।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हम चलते हैं धार जिले की तरफ, जहां जिले में लगभग 2.25 लाख से अधिक पात्र किसान हितग्राही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं धार से हमारे संवाददाता सुनील सचान।
5: देश के अन्नदाताओं की आर्थिक दशा में सुधार और उनके सम्मान की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 वर्ष पूर्व शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि से देश के करोड़ों पात्र किसान लाभान्वित हो रहे हैं। किसानों की जन कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले के पात्र किसान भी अछूते नहीं है। जिले के हर पात्र किसान को अब तक ₹44,000 का नगद लाभ प्राप्त हो चुका है। धार जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 2 लाख से अधिक पात्र किसान हितग्राही हैं। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान निधि की प्रथम किस्त किसानों के लिए जारी की गई थी। प्रतिवर्ष किसानों को 6,000 की सम्मान निधि दी जाती है, जिसे हर वर्ष 3 समान किस्तों में किसानों के खातों में भेजा जाता है। वित्तीय वर्ष मार्च 2026 तक पीएम किसान सम्मान निधि की 22 किस्तों का लाभ किसानों को मिल चुका है। धार जिले में निवासरत 2,24,523 पात्र किसानों को 22 किस्तों में अब तक 987.90 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान निधि से नवाजा जा चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना से गरीब किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्ति मिली है और वह अपनी किसान सम्मान निधि का उपयोग फसल बोने के समय खाद बीज दवा के लिए कर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान।
2: हमारी अगली खबर है डिंडोरी जिले से, जहां केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के

0: श्रमिकों के लिए वरदान साबित हो रही है। पेश है डिंडोरी से हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण अवधिया की रिपोर्ट।
1: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसी वरदान से कम नहीं है, जिसमें 15,000 या उससे कम आय वाले 18 से 40 वर्ष के कामगार 55 से 200 रुपए के अंशदान से 60 वर्ष की आयु उपरांत 3,000 की रुपए की मासिक पेंशन का लाभ ले सकते हैं। श्रम निरीक्षक नीरज टेकाम ने बताया कि डिंडोरी जिले में योजना को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय है और विभिन्न विभागों को निर्देशित किया गया है कि असंगठित क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों का पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। जिले को 1,15,054 पंजीयन का लक्ष्य दिया गया है। योजना को लेकर ग्राम पंचायत स्तर में भी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। फिलहाल जिले में 484 हितग्राही का योजना के तहत पंजीयन किया जा चुका है। आगामी दिनों में पंजीयन में तेजी आने की उम्मीद है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडोरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया।
0: अब हम रुख करते हैं नर्मदापुरम जिले की तरफ, जहां 7,000 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं डेयरी, मशरूम उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई कढ़ाई और छोटे व्यवसायों के जरिए अपनी आय बढ़ा रही हैं। अब तक हजारों महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता तनुज तिवारी।
2: जिले में 7,000 से अधिक महिला स्व सहायता समूह सक्रिय हैं। अब तक हजारों महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की वार्षिक आय 1,00,000 रुपए या उससे अधिक और मासिक आय कम से कम 10,000 रुपए तक पहुंचाना है। जिले की माखनगर ब्लॉक के सांगाखेड़ा खुर्द गांव की निवासी किरण मेहरा ने राधे स्वयं सहायता समूह से जुड़कर जहां बेकरी व्यवसाय शुरू किया, वहीं बानाखेड़ा ब्लॉक की निवासी सुनीता कुशवाहा शारदा आजीविका समूह के माध्यम से किराना दुकान संचालित कर रही हैं। दोनों महिलाएं आज हर माह हजारों रुपए की आय अर्जित कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और अपने क्षेत्र की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से तनुज तिवारी।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है गुना जिले से, जहां स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गुना से हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी।
3: स्वच्छता सर्वेक्षण अंतर्गत गुना जिले में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में 5 जून से 12 जून तक वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस संबंध में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने आकाशवाणी को जानकारी देते हुए बताया।
4: गुना शहर को पहले से ही ODF +++ प्रमाण पत्र और 1 स्टार का दर्जा प्राप्त है और इस बार हम लोग 3 स्टार प्लस वाटर प्लस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं। वर्तमान में निकाय के द्वारा जो सीरीजन फीडबैक किया जा रहा है, उसके साथ साथ विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में साप्ताहिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है।
3: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अंतिम खबर है दतिया जिले से, जहां प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना से लगभग 500 हितग्राही लाभान्वित हो चुके हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं दतिया से हमारे संवाददाता मनोज गोस्वामी।
5: दतिया में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्वनिधि योजना पथ विक्रेताओं को बिना गारंटी के 15,000, 25,000, 50,000 रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। दतिया नगर पालिका ने अपने ऑफिस से किला चौक मैदान पर और गरीब बस्तियों में शिविर लगाकर 800 के करीबन रजिस्ट्रेशन की है। अभी तक 500 हितग्राही इस योजना का लाभ ले चुके हैं। इस योजना में विशेष लाभ यह है, यदि डिजिटल माध्यम से ऋण को चुका दिया जाता है तो उसे 7% का ब्याज अनुदान भी मिलता है। इस योजना में रेड़ी पटरी विक्रेताओं को जोड़ने का विशेष कार्य किया जा रहा है। ऋण चुकाने वाले हितग्राहियों को 50,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दतिया से मनोज गोस्वामी।
0: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
6: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
7: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
8: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
7: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
8: आकाशवाणी है ना।
9: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
10: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
7: शाम सुहानी हो,
11: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
10: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
7: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
10: सफर में
7: आपके साथ
10: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम की 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के साथ उनकी मुलाकात भारत स्लोवाकिया की दोस्ती के लिए बेहद खास पल है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में ऑटोमोबाइल, रेलवे, उन्नत विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
2: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक LNG ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप

0: से पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले साल की तुलना में 46% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ और उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 पर दर्ज हुआ। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही पलों में 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। रात्रि 8 बजे सुनेगा समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष विदेश नीति। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम पब्लिक स्पीक हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10 बजे पेश करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे रुचिरा काले का ख्याल गायन राग होगा केदार। और अब बारी है हमारे कल के प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल से 7:20 पर प्रस्तुत करेंगे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुबह 8:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। 9:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेगा राजकुमार तिवारी के गाए चंद भजन। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम शब्द सागर में आप सुनिएगा शशिकांत मणि त्रिपाठी की वार्ता योग और मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन। साथ ही आप सुनेंगे प्रदीप श्रीवास्तव का काव्य पाठ। सुबह 10 बजे सुनेगा जिले की चिट्ठी और 10:05 पर पेश करेंगे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुबह 10:30 पर सुनेगा रूपाली पांडे का ध्रुपद गायन राग होगा भैरव। और इसी श्रृंखला में रात्रि 10:30 पर कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेगा ध्रुपद में राग जोग। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में 11 बजे प्रसारित करेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दिन में 12 बजे और 2:30 पर। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत आप सुनेंगे धारावाहिक जंग लगी तलवार का 11वां भाग। 1 बजे होगा महिला कार्यक्रम। 1:30 पर सुनेगा लोक संगीत का कार्यक्रम और 1:45 पर पेश करेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये तीनों कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति होंगे। सांध्यकालीन सभा में 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान होगा।

0: जिसमें आप सुनेंगे वार्ता सरकार की 12 वर्ष नई शिक्षा नीति में बदलता भारत का शैक्षणिक परिदृश्य। वार्ताकार होगी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए शाम 5:33 पर, रात्रि 8:35 पर और रात्रि 10:00। 6:00 होगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। 6:30 पर सुनेगा चित्र पर संगीत। 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुन सकते हैं, जिसमें होगी भेंटवार्ता, खरीफ फसलों की तैयारी और बीजोपचार। जानकारी देंगे डॉक्टर कुलदीप शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान होगा। रात्रि 8:00 समाचार सेवा प्रभाग द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष आतंकवाद आप सुनेगा और 9:30 पर पेश करेंगे उर्दू प्रोग्राम कहकशां। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
3: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
3: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
4: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। स्लोवाकिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। श्री मोदी ने कहा, एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीमाओं की सुरक्षा की तरह डेटा की सुरक्षा को बताया महत्वपूर्ण। कहा, प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर की होगी स्थापना। नगरीय निकाय और पंचायतों की मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम संशोधित। अंतिम सूची 27 जुलाई को होगी जारी। और मौसम विभाग का 30 से ज्यादा जिलों में हवा बारिश का अलर्ट। 18 जून तक प्रदेश में मानसून की दस्तक के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इसके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए काम करेंगे ताकि उनके उद्योगों, स्टार्टअप्स और व्यापारियों को लाभ मिल सके। श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मुक्त व्यापार समझौते का सफल समापन भारत यूरोपीय संघ के आर्थिक संबंधों महत्वपूर्ण साबित होगा और भारत तथा स्लोवाकिया के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के नए अवसर खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भागीदारी में प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग का एक प्रमुख स्तंभ होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और नवाचार आधारित सहयोग में नई संभावनाएं खोलेगा।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन

0: किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आज के सबसे मूल्यवान संपत्ति डेटा है। डिजिटल सुरक्षा समय की मांग है। उन्होंने कहा कि डेटा की सुरक्षा राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में न केवल देश अपितु पूरी दुनिया में साइबर तकनीक और उससे जुड़ी चुनौतियों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। मुख्यमंत्री राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने पर आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान डॉ. यादव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आधुनिक तकनीक और ड्रोन जैसे साधनों के उपयोग से सुरक्षा चुनौतियों का नया स्वरूप देखने को मिलेगा। श्री चौहान ने कहा,
2: आज हमारे सबके लिए सच में डेटा सुरक्षा ये महत्वपूर्ण इतना हो गया कि सीमा की सुरक्षा से भी बढ़कर है। सच में यूपीआई का लोहा दुनिया ने माना है और आज के अवसर पर जब डिजिटल माध्यम से लोगों को लाभ पहुंच रहा है तो सुरक्षा की जवाबदारी भी उतनी ज्यादा है और ये तभी नागरिकों का विश्वास इस व्यवस्था से बनेगा।
1: इस कार्यशाला का उद्देश्य राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में साइबर सुरक्षा से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों, उभरते साइबर खतरों, डेटा संरक्षण की आवश्यकताओं और डिजिटल शासन प्रणालियों की सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श करना था। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज इंदौर के सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान में महिला और बाल कल्याण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आंगनवाड़ी, पोषण अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित केंद्र सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। श्रीमती देवी ने यहां कहा कि इंदौर स्थित ये संस्थान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि संस्थान प्रशिक्षण के साथ साथ शोध और मूल्यांकन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2026 के पूर्व में जारी कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब प्रारूप मतदाता सूची में दावे आपत्ति 25 जून तक लिए जाएंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 2 जुलाई तक किया जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 27 जुलाई को किया जाएगा। पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 जुलाई को होना था। सोमवती अमावस्या, सूर्य संक्रांति और अमृत सिद्धि योग के दुर्लभ संयोग ने आज पूरे प्रदेश भर को आस्था और श्रद्धा के रंग में रंग दिया। उज्जैन की शिप्रा से लेकर नर्मदा तट, चित्रकूट की मंदाकिनी और बांदकपुर के जागेश्वर धाम तक लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान दान किया। प्रदेश के प्रमुख तीर्थस्थलों पर सुबह से ही भारी भीड़ देखी गई। उज्जैन में आज तड़के ब्रह्ममुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। नर्मदापुरम में नर्मदा तट पर 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। जबलपुर में ग्वारी घाट, तिलवारा घाट, भेड़ा घाट, लमीटा घाट और अन्य नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। वहीं दूसरी ओर महिलाओं ने माँ नर्मदा में स्नान कर वट वृक्ष का पूजन किया और पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में करीब 1,00,000 श्रद्धालुओं ने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां लगातार जोर पकड़ रही हैं। राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। राजधानी भोपाल में आज दोपहर बाद से तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने भोपाल और ग्वालियर संभाग में अगले 2 दिनों तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। शहडोल में मिनी ब्राजील के नाम से चर्चित विचारपुर स्थित जयपाल सिंह मुंडा फुटबॉल मैदान में मध्य प्रदेश फुटबॉल अकादमी का 3 दिवसीय मेगा चयन ट्रायल आज समाप्त हो गया। इस ट्रायल में 8 से 18 साल तक के 445 खिलाड़ी शामिल हुए। मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ के मुख्य कोच स्वप्न कुमार विश्वास ने विचारपुर के खिलाड़ियों के खेल और उनके जुनून को देखकर खुशी जाहिर की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में 17 जून से 26 जून तक नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। जबलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर भरकी थाना क्षेत्र में आज दोपहर हुए भीषण सड़क हादसे में एक बाइक सवार पिता और उसके 13 वर्षीय बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मंदसौर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा श्रवण और वाक बाधित व्यक्तियों के लिए विधिक

साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। नर्मदापुरम में सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले ऋण आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। शहडोल में 110 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का तबादला किया गया है। कटनी में ग्रामीण नागरिकों को नियमित पर्याप्त और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जनपद स्तरीय तकनीकी अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जिला जेल खंडवा में सप्ताह भर चलने वाले योग शिविर का शुभारंभ किया गया। शहडोल जिले के जयसिंह नगर में पदस्थ एक पटवारी ने तहसीलदार पर पैसे मांगने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अपना कार्ड दे। पिन दे।
1: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश,
3: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम चौपाल।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैयन को प्रेमचंद भैया की राम राम। और सुनाओ भैया, कैसे हो आप सभी? कुशल मंगल हो कि नहीं? भैया देखो, हम तो जो ही चाहते कि सबसे पहले तो आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें, क्योंकि खेती किसानी से जुड़े हैं और खेती किसानी को काम काज अपन को घर में बैठ के तो करने नहीं है, एक लाने घर से बाहर अपन को निकलना ही पड़ते हैं। और इस समय मौसम भी आप देख रहे हैं कि भैया गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, लेकिन गर्मी के संगे संगे भैया अपन को एक बात की और अपन को खुशी है कि भैया अपन को जो मानसून है वो भी अपन जल्द से जल्द आने वालों है। तो मानसून को देखा तो भाई अपन को भैया थोड़े बहुत जो काम काज हैं भी अपन को पहले से कर लेने हैं, क्योंकि अपन देखा था कि पानी के बिना ना तो अपने खेती किसानी के काम काज हो सकते हैं और ना ही अपने घर गृहस्थी के, एक लाने अपन को पानी की ज़रूरत पड़ती है। और अपन देखा था कि गर्मी के मौसम में एक एक बाल्टी पानी के लाने या एक एक मटका पानी के लाने अपन को कितनी दूर तक लोगों को चलने पड़ते हैं और कितनी दूर से वो लेके आते हैं। तो हम तो आपसे यही कहें कि बारिश के पानी को अपन को व्यर्थ में ऐसे बह के नहीं जान देने हैं, उकलन अपन को बारिश के पानी को रोकने का प्रयास करने हैं। अपने गांव के आसपास जो पोखर हैं, तालाब हैं, चेक डैम हैं या कुआं बावड़ी हैं, भैया वह वक्त भी है, समय भी है, अपन को अगर उनको गहरीकरण कर लें, उनको साफ़ सफाई कर लें, तो बारिश के पानी को अपन भैया बहुत ज़्यादा मात्रा में सहेज के भी रख पें और इसे अपने को साल भर पानी की उपलब्धता है वो आसानी से मिल जाए। और कहा था ना भैया कि बारिश के पानी को अगर अपन तालाब हुआ पोखर में अगर इकट्ठा कर लें तो जो अपने जल का स्तर है वह भी बढ़ जाए, जैसे अपने नलकूप हैं, हैंडपम्प हैं, उनको जो जल स्तर ऊपर आ जाता है और उनसे अपन को वर्ष भर पानी मिलत रहा है। लेकिन भैया इनमें अपन को विचार करने हैं और अपना जो श्रमदान है वो अपन को जरूर करने हैं और अपने गाँव के आसपास के लोगों को सब उनको भैया जो गहरीकरण को काम है साफ़ सफाई के हैं वो अगर कर लें तो भैया मानसून में अपन को बहुत राहत मिल जाए। तो अपन को व्यर्थ पानी बिल्कुल बह के नहीं जान देने हैं, उनको सहेज के रखने हैं और जल को जितना ज़्यादा हो सके उनको बचाने हैं। कहो जाता है ना कभी जल है तो कल है, जल के बिना तो भैया कल की अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी नदी थी पहले भैया अपन देखते थे वो अब छोटी छोटी सिमट लगी हैं, जो भैया आधुनिकता के कारण ही हो लगे हैं। अपन भैया ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपन जो जल पानी है उसको बिल्कुल ऐसा व्यर्थ में उपयोग भी कर रहे हैं। तो पानी को अपन जितना ज़्यादा

उसे के पंखों को बचाने हैं, उनको सहेजने हैं और उनको सही सदुपयोग करने हैं। तो भैया देखो, बतकाओ तो हम अपने श्रोता भैया से और भी करें, और आज भैया कछु विशेष भी है। आज है भैया सोमवार, और सोमवार को भैया हम आपके लाने लाते हैं लोकगीतन को फरमाइशी कार्यक्रम लोक माधुरी। तो भैया लोक माधुरी कार्यक्रम में हम पहला लोकगीत जो आपको सुनवा रहे हैं वो है भैया विनोद पुरोहित के स्वर में। तो सुन लेते भैया जो नौ सौ लोकगीत।

भैया देखो कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा देते हैं अर्चना जाटव के स्वर में जो उन्होंने लोकगीत और भैया जा लोकगीत की फरमाइश हमको करी है न्यू पैसिफिक अपार्टमेंट बावड़िया कला भोपाल मध्य प्रदेश से डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, अमर सिंह भारतीय, दुर्गा भारतीय, अमिता भारतीय, श्रीमती ललिता बाई भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय, लोकेंद्र प्रताप सिंह भारतीय, गोपाल भारतीय, कृष्णा भारतीय और उनके परिवार के सभी संघ सदस्य। तो भैया सुन लेते हैं हमारे श्रोता बहन की फरमाइश को जो उन्होंने लोकगीत।

भैया देखो, अभी आपने सुनो जो 900 योगा लोकगीत, और भैया देखो 21 जून को विश्व योगा दिवस भी है। अपन को आराम से जो भी मान लो कि अपन को जीवन को अपन अच्छे तरीके से जीना है, तो भैया अपन को योग को जरूर अपनाना है। सुबह शाम जो व्यायाम है, जो अनुलोम विलोम है, जो आसन है, वो अगर अपन करें तो भैया अपन के जो जीवन में बहुत अच्छी तरीके से तो अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहिए, और अपन जो खेती किसानी के काम काज हैं, घर गृहस्थी के काम काज हैं, इनमें भी भैया अपना मन लगे रहे। तो भैया हम तो यही कहें कि अपन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने हैं कि अगर अपन पास समय है तो अपन को योग जरूर करने हैं सुबह उठ के, और जल्दी उठने को अपन को प्रयास करने हैं।

तो भैया देखो, अभी आपने सुनो ज्ञान सिंह साकी के स्वर में जो उन्होंने सो निर्गुण भवन लोकगीत, भैया जा लोकगीत की फरमाइश हमको करी थी बस स्टैंड के पास बजरिया छतरपुर बुंदेलखंड से बहादुर चक्रवर्ती, उनके भांजे और शीला भाभी, जसोदा भाभी, भगवती भाभी, उमा देवी, ममता देवी और आरती, काजल, करण, बाबूलाल टोरिया और उनके परिवार के सभी सदस्य। तो भैया अब हम आपको सुनवाते हैं उर्मिला पांडे के स्वर में जो नौ सौ लोकगीत।

लगे मैं मर गई तुम खा खा महे। मायके में मर गई तुम खा खा महेरी, ब्यारी में महेरी दोपारी में डूबरी। अब डूबरी मंगन की बनत मगुआ, ताजी मंगन की। कि मायके में मर गई तुम खा खा महेरी, ब्यारी में महेरी दोपारी में डूबरी। एही से धना तुम हती भोत दुबरी, इते मन हूं

हमरे बाबुल के लगे नौ करो चाकर। अब भगवान कसम को नहीं लगो थे बता रहे आपका मायके में ये का करती रही, मायके में करती रही कंडा पथौगा।

भैया देखो, अब हम आपको सुनवाते हैं बाबूलाल कुशवाहा, उनके संगे साथी, इनके स्वर में जो नौ सौ लोकगीत। और जो लोकगीत की फरमाइश हमको करी है बालो छत्तीसगढ़ डोंडी लोहार से, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल अबीर। और संगे संगे भैया जो लोकगीत की फरमाइश हमको करी है ग्राम पोस्ट बाया तहसील रहटी जिला रायसेन मध्य प्रदेश से, अमर सिंह भारतीय, शेखावत सिंह भारतीय, सचिन भारतीय, कोसाबाई भारतीय, श्रीमती ललिताबाई भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय और उनके परिवार के सभी श्रोता भैया। तो भैया हम सुनवा देते हैं अपने श्रोता भैया की फरमाइश को, जो नौ सौ लोकगीत।

भैया देखो, अभी आप सुन रहे थे बाबूलाल कुशवाहा के स्वर में जो उन्होंने सो लोकगीत। और भैया देखो, स्टूडियो की घड़ी भी हमको इशारों करी कि हमें अपने सभी श्रोता भैया से लेने आए विदा। लेकिन चलत चलत भैया हम आपसे ये जरूर कहें कि मौसम को देखत भाई थोड़े अपने स्वास्थ्य को जरूर ध्यान रखें, और संगे संगे भैया जो अपना पशुधन है उनको भी ध्यान रखें।

रखें, क्या कि जैसे मौसम को असर अपने पे होता है भैया, ऐसे अपने जो दुधारू पशु हैं उनको भी मौसम से असर से प्रभावित हो सकते हैं। और कहा था ना कि जी अपने पशु जो हैं भैया वो अपनी आय का अतिरिक्त साधन भी हैं, तो उनको अपन को भैया मौसम की मार से अपन को बचा के रखने हैं और उनको समय समय पर पानी पिवात रहने हैं और संगे संगे नहात भी रहने हैं, क्योंकि उनको भैया गर्मी भी बहुत लगत है। तो भैया चलते हैं, सभी श्रोता भैया इनको प्रेमचंद भैया की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष विदेश नीति।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी। बहुत स्वागत है सर।
3: धन्यवाद।
2: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किस में गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
3: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज़्यादा देना, कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूँ और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपने अपने इंपॉर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूँ कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
2: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
3: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूँ तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए हम उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। PMAY प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले PMAY 1 था, PMAY 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1.13 करोड़ हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो ये देंगे। भी हमने यहाँ पर जो जे कॉलोनीज हैं, यहाँ ड्यूसिम के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो ड्यूसिम के माध्यम से उनको मकान दिए जाए, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो TOD बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके दिए जाए और उसमें कम से कम जो ट्रैवल करने का मोड है, उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रैवल कर सकेंगे, तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें TOD पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही हैं और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे महुआ डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है इसलिए सीधी योजना हम कर रहे हैं। बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप लोग अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। PMAY में 4 verticals हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत ना हो। हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करें।
2: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना है, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
3: बहुत चीज़ें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुँच गया है। इसी प्रकार पानी लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं पानी के कनेक्शन दिए हैं। तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में राशन हो, 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है। तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं। उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहाँ घरों में जगह नहीं है वहाँ कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं और सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, हर परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए ताकि उसका जीवन सुखी हो, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल, ये तभी ठीक हो सकता है जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
2: बिल्कुल ठीक बात है। और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहाँ तक पहुँचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुँच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीज़ें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपकी रीच में है?
3: ये अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहां चीज़ें खास करके ज़मीन बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है, ज़मीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर, तो ज़मीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार हैं, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है। तो 15 साल में दुगुने से भी ज़्यादा, लगभग 2.5 गुना यह आबादी हो गई है, और हमें अनुमान ये है कि 2047 तक यह आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, ज़मीन उतनी है, ये समस्या आएगी। उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है। तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज़्यादा हम बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नज़दीक महंगा मकान मिलता है, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता है, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया, RTSC बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है, आज 1,150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है। और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज़्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज़्यादा चाइना में, उसके बाद USA में, उसके बाद हम हैं, थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े, RTS यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफ़र लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुँच जाता। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीमराणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100-100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं NCR के एरिया में, इस समय वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप हैं, वहाँ लोगों को रहेंगे तो रोजाना आधे घंटे का ट्रैवलिंग करके दिल्ली में आएंगे। तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो 3 शहर है, अदरवाइज फिर चेन्नई कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती है मध्यम।
2: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की, और इतनी सारी चीज मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझें इसको?
3: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं, शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है, उस
2: जैसे अभी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि तीन गुना ढाई गुना बढ़ गए,
3: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा साथ कस्बा था, तो मुझे लगता हार्डली वहां की दो भी नहीं होगी, 1.5 लाख की आबादी थी। ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहाँ 40 लाख हो गई है। और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी जिसको गुड़गांव कहें, न्यू गुड़गांव कह लें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन जब विकास हो जाता तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, तो नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, यूएलवीज को भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत 1 अमृत 2 योजनाएं चलाई, इसीलिए चलाई, पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीज़ों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं।
2: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, टियर 2 टियर 3 शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
3: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1 लाख करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1 लाख करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास से लगाएंगी, 2 करोड़ रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी। तो 4 लाख करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपनी अपनी स्कीम भेज रहे हैं, प्रदेशों को मैंने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी है कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं।
2: जी,
3: 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
2: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
3: देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती हैं मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
2: जी।
3: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से लोगों से साहूकार से पैसा लाता है, तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा? तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे, और उसको कहेंगे 1 साल में इसको वापस करना है। यानी 10,000 रुपए लेता है तो महीने का अगर 1,000 रुपए भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में समाप्त हो जाएंगे, और उसके जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा, तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि 1 साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपए का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया, और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया, कि वो तीसरी बार में अगर 2 बार पैसा वापस करता है तो उसका ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 रुपए ले ले, उसी तरीके से वो वापस करें। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपए का UPI कार्ड भी देंगे जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट। 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1.5 करोड़ लोन्स यानी 75,000 तो ऐसा कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1.5 करोड़ लोन्स लिए जा चुके हैं। 75 लाख लोगों को लाभ हुआ है, जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है, और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं, और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में, और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए, और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ों रुपए तक कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं, जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
2: जी बिल्कुल। एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है, और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कंप्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझें?
3: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिलकर के कि हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए, टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था। और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन, 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए, तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहाँ ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है। जैसे हमारी महुआ की हुई है, 2 दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में। तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में, शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे, और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का, ये 2 दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है, और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है, जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता, लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है। रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते, एनवायरनमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए, जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर ये पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहाँ मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में ये मीटिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई, हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। तो आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारियों ने बनाया, और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई, और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं। लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है, अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारे सब डिपार्ट डिपार्टमेंट का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
2: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात, पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
3: बहुत बड़ा विषय है। कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
2: जी,
3: और जब बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है, घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की चोरी भी करने लग जाता है। अब जब ये सारी चीजें होती हैं तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता है, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
2: जी,
3: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री। तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए उस सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में दे करके उसमें से पैसे भी कमाए, तो ऊर्जा दाता बन सकता वो। तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिला के 78,000 भारत सरकार देती है। टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे, ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, तो वो उससे कराया। और आज जहां तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूं, हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्य घर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुंच चुके हैं, बाकी अंडर पाइपलाइन है। कुछ कठिनाइयां जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है, कठिनाइयां वहीं ज्यादा आ रही हैं जहाँ घोषणाएं हो गई कि हम जीरो बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो तो मेरा पहले ही जीरो आ रहा है, मुझे और एक नया ये पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी बोल लेनी। तो उनको कहा कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए ताकि अभी तो जीरो है, ये लगाएंगे तो उसको इनकम भी हो जाएगी,
2: इनकम होने लगेगी।
3: इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूं, किसानों की बिजली भी प्राय फ्री जाती है सब किसानों को, उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाए जाएं ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो, वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत, बहुत बड़ी मात्रा में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं
2: जी। पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं?
3: आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था और इंस्टीट्यूशन वो अपने आप को महत्व देती थी, राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूँ, अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है और इसी में से देश की एकता ये बनी है। ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया, मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं उनको बेचारा तो क्या कहूंगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेके चलते हैं। अब उनको यही लगता है कि मोदी जी को गालियां दे लो शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए, लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबकी एकता बनाने में मोदी जी हमारी सरकार ये कामयाब रही है और यही सबसे बड़ा रीलोड मैं समझता हूं कि देश पहले बाकी सब बाद में, इससे बड़ा और कोई रीलोड अभी तक मैं महसूस नहीं करता।
2: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान गढ़ने के सपने भी हैं, उसको बेहतर बनाने के और सपने भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 12 वर्षों में लोगों का भाव बदला है, लोगों का नजरिया बदला है देश के प्रति और देश के लिए काम करने का जो नजरिया बदला है वो शायद पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा टेक अवे है, ऐसा मानना है मनोहर लाल जी का। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे निखिल सिंह। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
4: This is Akashvani। इन द स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद मनीष सबरवाल co-founder of Team Lease Services. Interviewer is Anil Padmanabhan, senior journalist.
5: Over the last 12 years, India has strived to make a gradual transition towards a more rules-based, trust-enabled economy through labor reforms, digitization, decriminalization of laws under the Jan Vishwas framework. India strived to reduce friction, formalize the economy, and rebuild trust between the state, enterprise, and citizens. Yeah. Manish? You make a great point about the legacy of what India had and what has been undertaken in the last decade, particularly this pivot from reforms of conviction from earlier, the reforms of, you know, where you're forced to carry them out.
6: Compulsion.
5: So I just had a quick follow-up. One fallout of that legacy has been that the informality which you flagged, it has created a kind of low trust economy in India. The biggest example or metaphor for this is KYC. So these last decade and more, have we worked to chip away at this low trust economy? And another question, that another fallout of a low trust economy is that they treat somebody who's honest and dishonest the same way. There's no premium on being honest.
7: Well, that is because governance didn't shift from being rulers to being governors. There was a British mentality of subjects, which was carried forward in my mind in the Awadhi resolution and much of governance after independence, where we were placing our bets on control. The metaphor between entrepreneurs and government was tug of war. For one side to win, the other has to lose, rather than the dance between entrepreneurs, non-profits, and government. See, the government has an execution deficit, the private sector has a trust deficit, non-profits have a scale deficit. But this lack of teamwork, which really is the low trust that you are talking about, arose from a regulatory system which did not prize rules over deals. I think it's very dysfunctional for people to continuously think about corruption, which is the transmission losses between how the law is written, interpreted, practiced, and enforced. See, Stalin's head of secret police used to say, show me the person, I'll show you the crime. Bureaucrats in India say, show me the person, I'll show you the rule. Now, this will obviously create a low trust society, but more importantly, it will be economically inefficient and disastrous. While if we have clear rules, if we trust our people, you know, Jan Vishwas as a concept, which I think represents the next wave or the next building on what has happened in the last 10 years, the next 10 years or 12 years, is about recognizing that if you write the laws for the chore, drunk driving is not an argument against cars. If you have a drunk driver, you don't ban cars. You issue licenses, you put the drunk driver in jail. But in India, we always write the law for the chore. So I think that that mentality of has in the regulatory system of the license Raj, which by definition believed the world was shortage rather than abundance. Ambassador didn't have clients, it had hostages. But after that, we have released and we didn't get wiped out by foreigners. The fastest growing car companies are Tata's and Mahindra today. They are Indian companies. They are doing very well. So I think the notion that we should be scared of foreigners informed that debate, which is just a lack of low self-esteem. We don't have to be Western to be modern. We do have to be modern. So we have to create a high trust society. And that's why I think this agenda of formalization and moving to Jan Vishwas has been a very important shift in thinking about reforms rather than copying the West. I think China, Deng Xiaoping used to call Gorbachev stupid because he took all the Western reforms and blindly did them. And then he lost his job and Russia has never recovered. While China said, yes, we need to modernize, but we will modernize at our own pace. We will modernize at our own recipe and we won't blindly copy the West. So I think that it is important to recognize that 1991 was important, but it was incomplete. We left out education. We left out formalization. We left out corruption. We left out bank reform. We left out labor reform. We left out primary education reform. So I think obviously every country is a river rather than a pond, and you can never step in the same river twice because the river has changed and you have changed, as Heraclitus used to say. But my sense is that building on the last 12 years of formalization, moving to rules, lays a strong foundation or a neve for Jan Vishwas and Jan Vishwas Siddhant to become the basis of policy in the next 10 years.
5: So what you're saying is that we are now launching a new philosophy of governance, which will be heavily leaning towards rules-based rather than the exceptions-based that existed earlier.
7: This is not more cooks in the kitchen. It is a different recipe. See, there is a certain thought world that prior philosophy had of distrust. There is a certain thought world that it had of control. There is a certain lack of intellectual humility in Mahalanobis's spreadsheet model. An economy is not a spreadsheet. Biology is more important to understand than physics. You know, Mahalanobis was a mathematician, which is even more assumes a level of understanding. So I think the level of the license Raj created an administrative state which was built on distrust, which was built on control, and which was built on certainty. I think the last 10 years, 12 years, are more intellectually humble. We recognize that the world is a difficult place and we have to make up. It is trying to release some of the controls, whether it is removing the criminal provisions, whether it is removing other things. And it is not built on certainty that old system had.
5: In other words, once business is free from seeking permission, seeking clearances, their entrepreneurial spirits will be unleashed. So economic dynamism in the Indian economy should accelerate.
7: Well, it's not God's will that India should be fourth in total GDP, but 128th in per capita GDP. I mean, it is our choices. You know, Dumbledore tells Harry Potter in Chamber of Secrets, it is our choices more than our abilities that reveal what we really are. And I think we made some really bad economic choices after independence. And I know people will say that we needed to do that. I don't believe that is true. India and China had the same per capita GDP in 90. India and Korea had the same per capita GDP in 1960. I think the new system of thinking about, we don't live in an economy, we live in a society. But we do have to recognize that part of China's strength and part of America's strength in today's new world geopolitical order comes from their military strength, which really depends on their technology and economic strength. Now, where does economic strength come from? It is not about setting things on fire. It is creating the conditions for spontaneous combustion. I think Indians are very entrepreneurial. I find cultural explanations for economic growth very insulting. The Hindu rate of growth, which was this idiot economist that between 1820 and 1950, India grew at 0.1%. From 1950 to 1991, we grew at 2%, and he called it the Hindu rate of growth. Since then, we've grown at 7%, and we didn't shoot all the Hindus. So clearly, that was an incomplete explanation. I think we used Confucianism to explain why China was poor for 30 years. Now we use it to explain why China is rich. So I think there is no reason for mass prosperity to not be added to mass democracy if we have a naysoch or rethinking about our economic system, which is built on trust, which is built on governance rather than ruling.
5: In fact, I believe that NDA should be given credit for acknowledging business as a legitimate stakeholder. You know, if you look back at pop culture, particularly Bollywood, the bad person was inevitably the businessman. Today, largely because the state cast them, the support was covert, never overt.
7: Yes.
5: Today, they are legitimate stakeholder in the Indian economy. They are as much a factor of production. That should definitely provide a perfect foundation to launch this next phase, right?
7: There is no other way for India to create mass prosperity other than mass entrepreneurship. I know people think China's success is because of communism. It is because of how they have treated their entrepreneurs. I mean, we have had this innovation in China, whether it's EVs, whether it is this, not coming from government. It's coming from government support, but it is done by entrepreneurs. And we have classic examples of where good policy can create good industries in software and pharma. India exported more software than Saudi Arabia did oil because of the STPI policy in India and the H-1B policy in America. India made 60% of the world's medicines because of the 1970 Patents Act and the 1984 Hatch-Waxman Act. So I think policy can be a very powerful force for good. But finally, policy has to collide with ambitious, enchanting, and smart entrepreneurs. Fiscal and monetary policy may be overrated as a way to transform India. Government spending in India has gone up 108 times since 1990. per capita GDP has gone up 8 times. The government used to spend about 82,000 crores in 1990. Today it spends 1,20,000 crores. So I think government spending is very important because a modern state is a welfare state. But that's not what... It reduces extreme poverty. It doesn't create prosperity. And monetary policy, after a few years on the RBI board, I haven't decided whether it's a placebo or a painkiller or a steroid.

कश्मीर की कली, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। SH बिहारी के बोल हैं और तर्ज बनाई है OP नैयर ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।
2: हो हो हो हो हो हो हो हो दंभ का स्तंभ खंडम धम त्रिशूल गाड़ के प्रलयंकारी गति से बिन न

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथी M. पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
4: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवोटेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
1: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
5: एलएनजी कैरियर दिशा
6: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
1: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership. Ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. Friend city of Ovion gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H, clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
8: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
7: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
8: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है. डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी. रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है. इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया. इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी.
7: Prime Minister Modi said the two sides also signed the memorandum of understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility.
8: स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर एमओयू की घोषणा की है. हम शीघ्र ही सोशल सिक्योरिटी पर एमओयू को भी अंतिम स्वरूप देंगे.
7: Speaking on the occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors.
9: I congratulate you to the results in all areas which you have achieved. It's the field of digitalization and the use of artificial intelligence. You've come so far that you're ahead of many other advanced countries in different parts of the world. I would like to congratulate you to economic growth, which is amazing.
7: According to the joint statement, Prime Minister Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. We have a report.
10: During the delegation-level talks, 11 agreements were signed in the fields ranging from labor migration, defense, digital technologies, higher education, audiovisual production, establishment of an AI chair, quantum communication, cooperation in student exchange programs, and tourism development. Agreement was also signed on scientific cooperation between the Indian National Science Academy and the Slovak Academy of Science. Both the countries also agreed to set up joint working group for counter-terrorism and establishment of consular dialogue. With the report of Smriti M. Pulluruthi, Rupesh Rao, Akashwani News.
7: Later, Prime Minister Modi also met Slovakian President Peter Pellegrini in Bratislava. Mr. Modi reached Slovakian capital last night after concluding his visit to the French city of Nice. The French city of Avignon is all set to host the 52nd G7 summit beginning tonight. The meeting is getting underway as the US and Iran have finalized a deal to end the West Asia conflict. French President Emmanuel Macron will formally welcome leaders of the G7 countries, which include the United States, the United Kingdom, Canada, Germany, Italy and Japan, along with the presidents of the European Council and the European Commission later tonight. India, Brazil, South Korea, Kenya and Egypt have been invited to the summit as partner countries. Ukraine, Qatar and United Arab Emirates have also been invited for the summit. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Avignon tomorrow to participate in the summit. We now go over the line to our correspondent Ankit Kumar, who is now in Avignon tracking developments on the G7 summit. Ankit, how are the G7 leaders translating their recognition of India's strategic importance into practical cooperation on trade, technology, manufacturing and supply chain security? And what outcomes are expected from this summit?
11: Yes, Misit. India's strategic importance for the G7 is increasingly being reflected in the concrete economic and technology partnerships. This is evident from the recently concluded India-EU trade agreement, as well as initiatives such as Bharat Innovate in Nice, and India's role as the official AI partner country at the upcoming VivaTech in Paris. These developments underline how G7 countries are looking at India not only as a major market, but also as a trusted partner in technology, innovation, manufacturing, and resilient supply chains. Significantly, if you see, many of the priorities identified by the French G7 presidency, including balanced growth, international partnerships, and artificial intelligence, closely align with India's strength and interests. Therefore, beyond the broader geopolitical discussions, the key outcomes to watch will be deeper cooperation in trade, technology, critical minerals, innovation, and investments, as well as how India's perspective and the concerns of Global South are reflected in the summit's deliberation and outcomes. This is
7: Yeah, thank you, Ankit, for that update. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to the News at 9. Defence Research and Development Organisation, DRDO, today successfully conducted the flight test of the indigenously developed long-range land attack cruise missile from Dr. APJ Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, Defence Minister said that the missile achieved all mission objectives, demonstrating India's growing long-range precision strike capability. Raksha Mantri Rajnath Singh congratulated the DRDO team and the industry partners on the successful flight test of the cruise missile.

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग। श्रोताओं, आज के दौर में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और तनाव हम सबको घेर रही हैं। ऐसे में जरूरत है हम दवा से पहले परहेज और बचाव की ओर ध्यान दें, और यही काम करता है हमारा प्राचीन विज्ञान योग। ये कहा भी गया है कि योग भगाए रोग। योग केवल आसन नहीं है, यह संपूर्ण जीवन पद्धति है जो शरीर को निरोग, मन को शांत और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। पहला सुख निरोगी काया, इस कहावत को सच करने का सबसे सरल और सुलभ उपाय है योग। आज इस विषय की गहराई को समझाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। दोनों विशेषज्ञों का अनुभव लाखों लोगों के जीवन को स्वस्थ दिशा दे रहा है। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे योग को अपनाकर हम अपनी बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं और स्वस्थ तथा सुखी जीवन जी सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में योग और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइन खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो कार्यक्रम के शुरू में सबसे पहले कमल जी, आपसे जानते हैं, बदलते मौसम में सर्दी खांसी से बचने के लिए कौन सी योगासन और प्राणायाम रोज करने चाहिए?
1: जी मुकेश जी, धन्यवाद। बदलते मौसम के लिए सबसे बेहतर जरूरी होता है कि हम लोग आग नाक कान को ठीक रखें। उसके लिए उज्जयी प्राणायाम होता है जो गले को बहुत अच्छे तरह से ठीक रखता है। साथ ही साथ हम कुछ और चीजें भी कर सकते हैं, जैसे नाक में, नासिका में तेल डालना
0: जी,
1: और डेली बेसिस पे डाले तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग, उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं हम लोग, और सिंह गर्जना कर सकते हैं। इससे गले की खराश ठीक होगी और गला ठीक रहेगा, तो बदलते मौसम में फिटनेस बनी रहेगी।
0: जी अनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल नींद ना आना एक बड़ी समस्या है, अनिद्रा के लिए कौन सा योग सबसे कारगर रहता है?
2: अनिद्रा के लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान लगाने की आदत होनी चाहिए, उससे बहुत जल्दी आपको नींद आ जाती है। ध्यान लगाएंगे, जैसे आप लेटेंगे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए अपने आप को, थॉटलेस हो जाइए
0: जी,
2: सबसे बेस्ट ये है। बाकी आप जो है ना मोबाइल को दूर रखें सोने से एक घंटा पहले, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी।
0: जी बहुत अच्छी बात बताई आपने। और इस बीच हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं हिसार से, राजेंद्र। राजेंद्र, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विशेषज्ञ से क्या सवाल पूछना चाहेंगे?
3: नमस्कार जी मुकेश जी और विशेषज्ञ जी को नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता जी, घुटनों का दर्द और कमर का दर्द अक्सर रहता है और जो बैठने का काम करता है उनको ज्यादा ही, और कुछ काम करने से भी घुटनों का दर्द ज्यादा और कमर का दर्द बढ़ जाता है, और ये योग करना चाहिए, कौन सा स्टेप है जो करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, और इसके बारे में जानना था। जब भी डॉक्टर साहब गले के बारे में बता रहे थे, अक्सर लोगों को गले का कैंसर बहुत ज्यादा आ जाता है
0: जी।
3: तो उसके बारे में भी कोई योगा का स्टेप है तो उनके बारे में भी बताएं। नमस्कार जी।
0: मुझे लगता है इन्होंने कई सारे प्रश्न एक साथ कर दिए हैं। सिद्ध जी बताएं।
2: हाँ देखिए, कमर के दर्द के लिए सबसे अच्छा है आप ना भुजंग आसन करें, बहुत आराम आराम से करें, मरकट आसन करें। यदि कमर में दर्द है तो भी आप मरकट आसन कर सकते हैं
0: जी।
2: और आपने जैसे बोला है कि घुटनों में दर्द है तो आप हल्दी मेथी सौंठ, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर शाम को दूध के साथ 5 ग्राम ले लें
0: जी।
2: तो ये कंटिन्यू आप लेंगे तो इसमें आपको बहुत लाभ होगा। गले की जहां तक आपने बोला है कि गले में है तो उज्जयी प्राणायाम करेंगे और आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको उसमें लाभ होगा। गले में भी लाभ होगा जैसे मौसम के बदलते हुए उसमें गुनगुना पानी करके उसको उसका सेवन किया करें गरारे किया करें तो गले में आपको लाभ होगा
0: जी और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं कमल जी हरिद्वार से रवि जवालिया रवि जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है पूछें क्या सवाल है आपका
4: हाँ जी नमस्कार जी और विशेषज्ञ को भी नमस्कार जी
1: नमस्कार
4: जी और सबसे पहले आप सभी का आज पवन दिवस है जी विश्व पवन दिवस उसकी हार्दिक शुभकामनाएं जी और मैं जानना चाहता हूँ जी योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है सभी जानते हैं तो सर मेरा जो वर्क लोड है वो मतलब कंपनी में मेरा ज्यादातर बैठने का कार्य है जी तो उसके लिए मुझे क्या कौन सा आसन करना चाहिए जिससे कि मुझे मतलब ज्यादा दिक्कत ना हो किसी हड्डी में या कोई भी फ्रैक्चर ना हो क्योंकि ज्यादातर मेरा बैठने का ही कार्य है जी काम कंपनी में और एक और क्वेश्चन और है कि क्या मतलब जो मुझे काउंटिंग करनी होती तो क्या म्यूजिकली काउंटिंग से भी एक मतलब रिदम बन सकता है मेरा
1: धन्यवाद रवि जी और आपका जो प्रश्न है उसमें ज्यादातर लोगों का ये प्रश्न है क्योंकि शायद लोग मैक्सिमम ऑफिस में ही काम करते हैं बैठने का काम तो ये आपके माध्यम से उनके भी काम आएगा इसके लिए आप चेयर पे बैठे बैठे भी कुछ योग कर सकते हैं जैसे पैरों को हिलाना पैर की मूवमेंट करना लेफ्ट राइट पैरों को लेके जाना हड्डियों के लिए जैसे आपने बताया उसमें भी कार्य करता है ठीक है और पैरों की रोटेशन जो होती है कई तरह से हो सकती है ठीक है लेफ्ट राइट लेके जाना उंगलियों को दबाना छोड़ना सांसों के साथ कर सकते हैं और साथ ही साथ बीच बीच में आप उठने का प्रयास करें हर दो घंटे बाद और अपने डेस्क के आसपास पानी जरूर रखें क्योंकि पानी अगर बीच बीच में ज्यादा पीते रहते हैं कि बॉडी हमारी 70% पानी से बनी हुई है
0: जी
1: तो पानी की कमी भी बहुत सारे रोगों का कारण बनती है तो आप इसको करें आपको निश्चित लाभ होगा धन्यवाद
0: बिल्कुल लाभ होगा और अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे कि हाई बीपी के मरीजों को कौन से आसन नहीं करने चाहिए उनके लिए क्या सावधानियां
2: हाई बीपी के मरीजों को एक तो आसन बहुत धीमी गति से करने होते हैं
0: जी
2: फास्ट कोई भी आसन नहीं करना है और सबसे बेस्ट उसके लिए जो है सब आसन है कहने में तो एक हंसी की बात आ जाती है
0: सभी के लिए
2: हाँ लेकिन जैसे हाई बीपी होता है तो आप सब आसन में लेट जाएंगे तो आपका बीपी 5 मिनट में काफी कम हो जाएगा तो इस चीज का विशेष ध्यान करें सब आसन का मतलब होता है वही थॉटलेस होकर सीधे लेट जाना लंबे गहरे श्वास धीमी गति से भरना और धीमी गति से छोड़ना
0: और इस समय हमारे साथ एक श्रोता और जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से राजेश नेमा राजेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है क्या प्रश्न है आपका
5: जी मैं सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है इस हेतु बहुत बधाई

0: तो कोशिश करें 3 सेकंड को सांस छोड़ने में लगाएं
1: जी.
0: तो इस तरीके से करना है. फिर धीरे धीरे क्या करना है, 2.5 सेकंड में रोकना है, 2.5 सेकंड भरना है, फिर 3 सेकंड छोड़ने में लगाना है. छोड़ने में अधिक समय लगाने का जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके सांसों का रिदम बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको काफी लाभ होगा उसमें.
1: जी कमल जी, आप जानना चाहेंगे पाचन तंत्र ठीक रखने के लिए सवेरे उठकर कौन से 3 योग करने चाहिए.
2: सवेरे सबसे पहले एक कार्य करना चाहिए, 1 ग्लास या 2 ग्लास या 3 ग्लास जितना आपसे हो सके उतना पानी पीना है. बट इसमें मिशन है कि आपको कुल्ला नहीं करना है और रात में ब्रश करके सोना है
1: जी.
2: ठीक है, मुंह साफ रहना चाहिए. रात में जो भी लार बनती है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है. जनरली हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, हम लोग सुबह उठते ही कुल्ला करते हैं और हमारी जो बहुमूल्य लार है
1: वो निकल जाती
2: है, वेस्ट कर देते हैं. तो जब बॉडी के अंदर वो लार पानी के साथ जाती है तो आपकी पाचन क्रिया को स्वतः ही तंदुरुस्त करती है. साथ ही साथ उसके बाद ताड़ासन कर सकते हैं. हाथों की प्रक्रिया होती है जिसमें कमर में रोटेशन होती है, इस तरह के जो 2-3 आसन होते हैं वो कर सकते हैं. रोटेशन के साथ हाथों को लेफ्ट राइट लेके जाना है जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े. बैठ करके किया जा सकता है, इसके अंदर घुटनों को लेफ्ट राइट दबाना जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े. इससे पाचन क्रिया सुदृढ़ होगी और पाचन क्रिया में लाभ मिलेगा. धन्यवाद.
1: बिल्कुल लाभ मिलेगा. और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश. राकेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे.
3: जी धन्यवाद. मैं राकेश कोटखाई शिमला, और मेरा एक प्रश्न है, जिनको मोतियाबिंद है या किसको कम दिखाई देता है तो मैं विशेषज्ञ से ये पूछना चाहता हूँ कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए.
0: हाँ, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, बड़ा बहुत ही अच्छा है, आप रात को ब्रश करके अच्छे से सोएं. ठीक है, और जो लार होती है ना मॉर्निंग में, उस लार को आंखों में काजल की तरह लगाएं तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. धीरे धीरे चश्मा भी उतर जाता है इससे. ठीक है, और मुंह में पानी भर के, फ्रेश होने के बाद मुंह में पानी भर के आंखों में छपके मारना. और वो बेस्ट ये होगा कि यदि आप रात को त्रिफला भिगो देते हैं, उसको छान के सुबह उसमें आंखों को धोना, यानी कि आई कप मिलते हैं उसमें आंखों को घुमाना, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है.
1: अनीता जी, जैसे आपने बताया कि रात में ब्रश करके सोएं और सवेरे जो लार है उसको आंख में लगाएं, क्या एजेंट ऐसा होता है उसमें जो आंखों के लिए लाभदायक होता है.
0: लार तो सर बहुत इफेक्टिव है, जैसे भैया ने अभी बोला था, कमल भैया ने, कि आपको कुल्ला नहीं करना पानी पीने से पहले, तो वो लार आपके लिए उससे बढ़िया दवाई तो कुछ है ही नहीं.
1: बिल्कुल. और महाराष्ट्र के पुणे से जुड़ गए हमारे श्रोता श्रीकांत झकड़े. श्रीकांत जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है हमारे विशेषज्ञ से.
4: हेलो नमस्कार, मैं मुकेश जी.
1: जी नमस्कार.
4: नमस्कार है
1: जी, सवाल पूछिए. डिस्टर्बेंस है, इस वजह से आपका प्रश्न हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं. आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए. उससे पहले जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य पर अगर हम बात करें अनीता जी, तो छात्र परीक्षा के तनाव को योग से कैसे कम कर सकते हैं, कोई एकाग्रता बढ़ाने वाला कोई आसन है.
0: जी हाँ बिल्कुल, प्राणायाम है
1: जी.
0: भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये प्राणायाम बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं जिससे कि उनकी एकाग्रता बढ़ती है. और थोड़ा थोड़ा वो अनुलोम विलोम और कपालभाति भी करें, लेकिन उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है जो हर बच्चा आसानी से कर सकता है
1: जी. और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, विजय कुमार. विजय जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है.
5: कृष्ण कुमार जी.
1: जी क्या सवाल है आपका.
5: कुमार जी नमस्ते.
1: नमस्कार, क्या सवाल है आपका.
5: सर को भी मेरा नमस्कार जी.
0: नमस्कार
5: नमस्कार. मेरा पहला सवाल यह है कि वेट बहुत ज्यादा है
1: जी,
5: इसके लिए कौन सा योग करना चाहिए. और मेरा पेट का ऑपरेशन हो गया है 2004 में
1: जी.
2: जी
5: और योगा करने से वो ये होगा
2: वेट के लिए. विजय कुमार जी सबसे पहले तो अपने खाने पीने की जो दिनचर्या है उसको नियमित करें, एक निश्चित समय तक खाएं और सूर्योदय के बाद खाना बंद करें. पहला सबसे पहला कार्य आपको ये करना है. दूसरा कार्य आपको ये करना है, जैसे आपका ऑपरेशन हो रखा है तो सिस्टम यानी गड़बड़ हो रखा है, तो आपके जीवन शैली के आपने फर्मेंटेड चीजों का ज्यादा प्रयोग करना है. फर्मेंटेड चीजों के अंदर आप बासी चावल ले सकते हैं दही के साथ में अगर सूट करता है, उसके बाद कांजी है और उसके बाद अचार है, इस तरह की चीजों का आप यूज कर सकते हैं. पत्ता अमृत भी ले सकते हैं. और आसनों की अगर

0: बात करें तो आप लेट करके दोनों पैरों को ऊपर उठाना, गोल गोल घुमाना, दोनों पैरों से तभी करें जब आपको हाई बीपी ना हो, अदरवाइज एक एक पैर का प्रयोग करें। साइकिलिंग का प्रयोग करें लेट करके, वो वेट में काफी लाभदायक है। और बैठ करके कटि सौंदर्य आसन होता है, लेफ्ट राइट पैर को खोल करके हाथों को घुमाना, ये करना है आपने। और सूर्य नमस्कार अधिक से अधिक करने का प्रयास करें, निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
1: अनिता जी, एक मेरे दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा है कि योग और प्राणायाम मेडिटेशन, इसमें क्या फर्क होता है, क्या दोनों को करना आवश्यक है?
2: ये दोनों योग के ही अंग हैं
1: जी,
2: प्राणायाम और आसन
1: जी।
2: प्राणायाम श्वासों की क्रिया है जिसको कि हर व्यक्ति कर सकता है। कई बार क्या होता है कि एजड पर्सन ये सोचता है कि शायद मैं तो योग कर नहीं सकता हूँ, योग में वो केवल आसन मानते हैं। तो आसन ही नहीं, यदि आप प्राणायाम को भी अपना लेते हैं, और प्राणायाम संपूर्ण है, प्राणायाम से आप शरीर के हर रोग को निकालकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं
1: जी।
2: तो श्वासों की क्रिया को ही प्राणायाम कहा जाता है, और योग का ये एक अंग है, और व्यायाम और आसन इसके और विभिन्न अंग है।
1: और हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं बिहार के दरभंगा से, मोहन पासवान। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से?
3: जी धन्यवाद, प्रणाम इकट्ठे सर
1: जी, बताइए।
3: सर जानना चाहता हूँ कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वास्थ्य का स्वस्थ होना जरूरी है, तो इसके लिए योग व्यायाम और खान पान कैसा होना चाहिए? दूसरा बात है सर, दूसरा प्रश्न है कि आरोग्य विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय पूरे देश में पंचायत से लेकर शहर मोहल्ला तक खोलने की योजना है क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की? मैडम
2: नमस्कार। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी योजना जो है योगियों की तो है ही, श्रद्धेय स्वामी जी की भी है इसमें, रामदेव बाबा की भी है इसमें। ये बिल्कुल वो चाहते हैं कि गांव गांव और गली गली तक ये सुविधा उनको पहुंचे। और आपने बोला स्वास्थ्य के लिए बोला है ना कि
1: है
2: ना, वो तो उसके लिए क्या है, आपको आपको प्राणायाम अपनाना है। श्वासों की क्रिया में क्या, लंबे देखिए श्वास आप प्रतिपल लेते हैं, उसी श्वास को ध्यान के साथ कंसंट्रेट होकर शांत मन से बैठ जाएं और लंबे गहरे श्वास भरें और लंबे गहरे श्वास छोड़ें, उससे आपको बीमारियां भी दूर होंगी। देखिए आपको लगता है कि श्वास तो हम प्रतिपल ले रहे हैं, लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम से आपके रोग जो खत्म होते हैं, और आपको विश्वास नहीं होगा कोरोना के टाइम में तीव्र भस्त्रिका हम लोगों ने किया, और हमें कोरोना के पेशेंट के पास बैठकर भी हमको कोरोना का कोई मतलब नहीं।
1: बहुत बड़ी बात। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, आज हम रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं योग विशेषज्ञ अनिता कौशिक और कमल किशोर। तो अनिता जी, घर से काम करने वालों के लिए आंखों और मानसिक थकान दूर करने का कोई योग है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और अधिकतर लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं तो बड़ी थकान सी होती है।
2: देखिए आंखों के लिए तो पहली बात तो है कि हर दो घंटे के बाद आंखों को धो लें पानी से
1: जी।
2: और उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ, जैसे कि दवाई आती है ना आंखों की, हमारे तो दृष्टि है, इसको डालें थोड़ा सा आंख में, जो कंप्यूटर में बैठते हैं उनको जरूर डालने चाहिए। दो तीन तरह की अब तो आंखों की दवाइयां आ गई हैं। और जहां तक बात है कि हमें थकावट हो जाती है, तो थोड़ा जब हम थोड़ा समय निकालेंगे शरीर के लिए, एक घंटा हमको जरूर निकालना चाहिए। और आप सुबह प्रातः काल में यदि थोड़ा कपालभाति, अनुलोम विलोम ये करेंगे तो आपके शरीर की थकावट बहुत जल्दी दूर होगी, आपको लगता है, और आप इतने एक्टिव हो जाएंगे कि लगेगा कि हम पड़ोसियों के भी काम कर दें।
1: जी बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, रशीद अहमद खान। रशीद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: थैंक यू। नमस्ते सर, सब लोगों को नमस्कार।
2: नमस्कार
1: जी,
4: पिछले हफ्ते आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए थे, फोन नहीं लग पाए थे, इसलिए आप भी मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ पूरे देशवासियों को, पूरे
1: प्रधानमंत्री शुभकामनाएं जी। सवाल पूछिए।
4: सवाल हमारा ये है कि जैसे क्या योगा करने से चश्मा उतर जाता है, एक बात। दूसरी बात, क्या गुलाब जल वगैरह डालना आंखों में कितना लाभदायक रहता है, प्लीज बता दीजिए।
0: धन्यवाद रशीद जी, बिल्कुल निश्चिंत ही चश्मा उतर जाता है, परंतु उसके लिए आपको योग निरंतर करना होगा। और आंखों में गुलाब जल तभी डालें जब गुलाब जल आपका शुद्ध हो, शुद्धता की जांच आप अपने लेवल पर कर लें। अगर गुलाब जल नहीं मिलता है तो फिर आप शुद्ध लेवल पर नाम लें कि ऐसे आंखों में कुछ भी डाल लें, ठीक है। और योग के अंदर आप प्राणायाम सबसे ज्यादा करें, चश्मा बिल्कुल उतर जाएगा। और आंखों के अंदर जैसे अनिता जी ने पहले ही बताया कि सुबह सुबह की बासी लार जो होती है आंखों में रेगुलर बेसिस पर लगाएं, काजल की तरह आपको चश्मा जरूर उतर जाएगा। धन्यवाद।
1: और अनीता जी, गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम करने के लिए कौन सा प्राणायाम है जो हम दो मिनट या पांच मिनट जितनी जरूरत है कर सकते हैं?
2: उसके लिए सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम
1: जी,
2: आपके मन को शांत करने के लिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और अपना जो ध्यान का मैंने आपको बोला ना, थोड़ा कंसंट्रेट होके करें प्राणायाम को। यदि आप ध्यान में बदल कर, यानी कि आप फुल कंसंट्रेशन के साथ अनुलोम विलोम करते हैं
1: जी,
2: तो आपका माइंड काफी शांत हो जाता है। लेकिन करेंगे तो मिलेगा रिजल्ट।
1: बिल्कुल, करेंगे तो होगा।
2: हाँ।
1: कमल जी, आजकल डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, योग इनकी रोकथाम में किस तरह सहायता कर सकता है?
0: देखिए, डायबिटीज और बीपी ये बीमारियां आज की डेट में ही पैदा हुई हैं
1: जी,
0: पहले नहीं हुआ करती थी। उसके पीछे कारण है कि हमारा लाइफस्टाइल खराब कर लिया हम लोगों ने। तो ये मतलब नेचुरल बीमारी नहीं है, हम लोगों के द्वारा पैदा की गई बीमारी है
1: जी।
0: बीपी का मुख्य कारण हमारे यहाँ रेडिएशन फैला हुआ चारों तरफ, हम लोग जहाँ जाते हैं वाईफाई है, मोबाइल के अंदर वाईफाई है, ये भी एक मुख्य कारण है
1: जी।
0: हर जगह तनाव में, टॉक्सिक माहौल में, ऑफिस में भी टॉक्सिक माहौल है, कई जगह पर बहुत ज्यादा अननेसेसरी प्रेशर रहता है, ये भी एक मुख्य कारण होता है। पहले कारण को जानना जरूरी है, उसके बाद ही निवारण होगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी कार्य करें, योग प्राणायाम जो भी करें, इतना स्लो करें कि आपको स्वयं की आवाज भी सुनाई ना दे। आप प्राणायाम कर रहे हैं तो इतना धीरे धीरे करें। मैंने कई बार देखा लोग गलती में है ना, बहुत लग जाते हैं, उनका नुकसान होता है
1: जी, जी, जी।
0: बट मेरा मानना है आप कम करें, बट जितना धीरे करेंगे आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, मेरा अपना अनुभव यह है। और डायबिटिक के लिए अगर आप बात करें तो मंडूकासन वन ऑफ द बेस्ट है, रामबाण है, घुटने के बल बैठना होता है, वज्रासन में बैठना होता है। और वज्रासन की खास बात यह है कि खाने के बाद इकलौता एक ऐसा आसन है जिसमें आप बैठ सकते हैं। इससे खाने के बाद पाचन क्रिया भी दुरुस्त होती है
1: जी।
0: और खाना जो खाया वो जल्दी पचता भी है। जैसे किसी का समय नहीं है टहलने का, तो वज्रासन में बैठ सकते हैं 5-10 मिनट, उनका जो भी खाया हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसमें मंडूकासन में दोनों मुट्ठियों को बंद करें, नाभि के पास लगाएं, आगे की तरफ झुकें, हिप और एड़ियां मिले रहेंगे, जितना संभव हो सके आगे झुकने की कोशिश करें, गर्दन सीधी रखनी है और सांसों को नॉर्मल लेना है। ये है मंडूकासन, ये बिल्कुल रामबाण इलाज है। इसके अलावा वक्रासन है, गौमुख आसन है, जिस पे भी नाभि पे प्रेशर पड़ता है वो सब डायबिटिक के लिए लाभदायक है। धन्यवाद।
1: निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को इससे लाभ होगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से अनिल। अनिल, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। क्या सवाल है आपका?
5: सर, हमारा सवाल ये है कि जो महिलाएं गर्भवती होती है, क्या उनको योग करना चाहिए क्या, और डॉक्टर कौन सा योग की सलाह देते हैं जो उनके लिए और उनके होने वाले बच्चे के लिए सही है?
1: बहुत अच्छा सवाल,
2: बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न रहा है। कुछ आसन होते हैं जो उनको करने होते हैं, पैर ऊपर उठाने वाले आसन नहीं करने हैं, जैसे अभी मंडूक आसन बताया वो नहीं करना है, सीधे लेट कर पैर, जैसे मरकट आसन होता है वो कर सकते हैं, जो कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो धीरे धीरे बहुत धीमी गति से मरकट आसन कर सकते हैं। प्राणायाम में उनको कपाल भाती नहीं करना है, बाह्य प्राणायाम नहीं करना है, उनको अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है, उद्गीत करना है। तो ये कुछ प्राणायाम है जो उनको करने हैं, और हमेशा योग शिक्षक के समक्ष बैठकर ही वो करें, सीखें, उसके बाद करें।
0: इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जी, बटरफ्लाई रेगुलर करना है। बटरफ्लाई करेंगे रेगुलर, बहुत आसान होता है, बैठ के किया जाता है, ये बहुत लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।
1: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से धर्मवीर। धर्मवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए, क्या सवाल है आपका?
6: नमस्कार।
1: नमस्कार,
6: धर्मवीर गांधी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट को भी नमस्कार। एक मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि मन में सवाल आया था कि आजकल जो हमारी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी हाइट कम रह जाती है, कम होती है, तो वे बेचारी ऊंची हील की सैंडल पहनती है हाइट बढ़ाने के लिए, पर वो ठीक नहीं है, पर उनका जो शारीरिक हाइट कैसे बढ़े उसके लिए कौन सा आसन करना चाहिए, क्योंकि सुनने वाले सभी ये इसको जरा गौर से सुनेंगे, क्योंकि ये मेन समस्या आज की तारीख में शादियां नहीं हो पाती, कई जगह टूट जाती है, इस बारे में आप बताएं। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है कि घर घर की ये कहानी है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनके खाने पर ध्यान दीजिए। जितना ये बच्चे फास्ट फूड खाते हैं वो आप उसको डाइजेस्ट नहीं होता, जब डाइजेशन ठीक नहीं होता तो प्रॉपर हाइट कैसे बढ़ेगी। सबसे पहले आप उसका अब खाने पे ध्यान दीजिए। मैं देखती हूँ, मेरा भी चिकित्सालय है, तो मैं वहाँ बच्चों को यही समझाती रहती हूँ कि बेटे इन चीज़ों को मत खाइए जो आपको नुकसान देती हैं। प्राणायाम करें और आसन, ताड़ासन है, ठीक है, वृक्षासन है, और आपको 5-6 आसन का ये उपयोग वो करेंगे तो उससे उनकी जो

0: हाइट बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले फिर भी मैं ये कहूंगी कि खाने का ध्यान रखें, समय से उठना, समय से सोना, इस चीज का बहुत जरूरी है उन पर नियंत्रण करना।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को इससे जरूर लाभ होगा। और कमल जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये श्रोता पूछते हैं कि खाली पेट योग करना जरूरी है क्या, और खाना खाने की कितनी देर बाद योग कर सकते हैं?
2: जी बिल्कुल, खाली पेट करना योगा बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना खाली पेट अगर योगा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा
1: जी,
2: क्योंकि उस समय हमारा सिस्टम पाचन क्रिया में लगा होता है। अगर हम खाना खाने के बाद योग करते हैं, उस समय सारा ब्लड सर्कुलेशन पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में लगा होता है, तो योग नहीं करना चाहिए। खाने के कम से कम अगर दिन की बात करें तो 4 से 5 घंटे बाद करना चाहिए, दोपहर के बाद में, और शाम को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खाने से आप एक काम कर सकते हैं, जिनको इस तरह की परेशानी होती है, तो खाना खाने से 1 घंटा पहले कर लें, आधा घंटा पहले कर लें, वो उनके लिए लाभदायक रहेगा। और अर्ली मॉर्निंग सबसे ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि उस समय नेचुरल हवा होती है, उस समय पॉल्यूशन नहीं होता, बॉडी के अंदर बिल्कुल एकदम नेचुरल नॉर्मल रहती है, बॉडी एकदम रिफ्रेश रहती है, तो उस समय करेंगे ज्यादा लाभदायक रहेगा। इस तरह से करें, ज्यादा लाभदायक रहेगा।
1: और राय बरेली से एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमाशंकर वाजपेयी। रमाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी।
3: मेरा सवाल यही है कि योग और दंड बैठक, जिसे हम लोग देहाती भाषा या आम प्रचलन में योग, एक तो बहुत गणित कठिन है, और जो है ये दंड बैठक, ये भी स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ लाभदायक है या क्या?
2: जी रामाशंकर जी नमस्कार, धन्यवाद आपने जो प्रश्न किया। ये बेसिकली दंड बैठक योग के अंदर जो प्राणायाम के बल जो आसन होते हैं उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी दंड बैठक, जो पहले प्राचीन टाइम पे हुआ करता था वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप जब वो दंड बैठक लगाएंगे तो उससे शारीरिक विकास ज्यादा अच्छा होगा, और जिनके शरीर में बल नहीं है उनके अंदर बल आएगा। युवाओं को खासतौर से बहुत बात है, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है जो उनकी स्फूर्ति को बढ़ाए और उनके शरीर से पसीना जल्दी निकाले। तो दंड बैठक का समावेश ऑलरेडी योग के अंदर होता है, आप उसका प्रयोग करें और निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। बट इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि दंड बैठक के साथ साथ प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि जब शरीर के अंदर जाली नहीं होगी तो फिर दंड बैठक लगाई नहीं जाएगी, तो प्राणायाम जितना ज्यादा अच्छे से करेंगे वो आपको ज्यादा लाभ देगा।
1: और बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं अमित। अमित, क्या सवाल है आपका?
4: जी नमस्कार सभी विशेषज्ञ टीम को, मैं अमित उपाध्याय सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल था कि जैसे कि हम लोग योगा करते हैं अलग अलग, जैसे कोई ट्रेनर हो गया, बाबा रामदेव का एक अलग रहता है, और बाकी जो ट्रेनर का रहता है, जो मॉड्यूल रहता है, अलग एंगल से रहता है, तो ये हम लोग के शरीर में कितना ये इफेक्ट डालता है कि कभी उस ट्रेन कर लिया मैंने, देखकर हम लोगों ने ये इसको देखा तो इससे कर लिया, इससे कुछ शरीर में इफेक्ट पड़ता है क्या, या फिर या 10 दिन या 1 महीना करने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं, रेगुलर नहीं हो पाता है, तो इससे शरीर में कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? जी यही सवाल था।
0: देखिए रेगुलरिटी तो बहुत जरूरी है, आप देखिए कि जो भी योगाचार्य होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, सालों साल करते हैं, जब तक जीते हैं तब तक करते हैं, तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। 10 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, हमने इतने दिन से अपने शरीर को बिल्कुल बेकार बनाया हुआ है, डल बनाया हुआ है, तो रेगुलरिटी जरूरी है। और जो यदि आपको कोई सिखा रहा है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई आपको शिक्षक सिखा रहा है तो उसके संपर्क में आके आप कर सकते हैं।
1: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, इंदर भान सिंह। इंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, शायद उनसे संपर्क कट गया है। अनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिन्होंने घुटने बदलवाए हैं, कुर्सी पर बैठकर भी कोई योग आसन है?
0: हाँ नहीं, सबसे पहली बात वही है, मैंने बोला ना कि लोग कहते हैं अरे हम योग कैसे करें, योग का एक अंग है प्राणायाम, जो कि संपूर्ण है। यदि हम आसन भी नहीं कर पाते हैं तो प्राणायाम करें, जिन्होंने घुटने बदलवाए या कुर्सी पे बैठ के करते हैं नहीं वो ज्यादा कुछ कर सकते हैं, और बैठने के आसन भी बहुत सारे हैं, लेकिन वही है योग शिक्षक के संपर्क में जाकर वो अपना आसन कर सकते हैं, घुटनों को हिलाते रहें, हाथों को हिलाते रहें, इतना तो कर ही सकते हैं, रोटेट करें, गोल गोल घुमाएं, तो ये कर सकते हैं, और प्राणायाम सबसे कंपलसरी है।
1: कमल जी, बुजुर्गों में याददाश्त की कमी हो जाती है, कमजोर होने लगती है, तो उसके में उस स्थिति में भ्रामरी प्राणायाम लाभदायक हो सकता है?
2: जी बहुत अत्यंत लाभदायक है भ्रामरी प्राणायाम, और इसके अलावा अनुलोम विलोम भी करें साथ साथ, क्योंकि वो भी बहुत लाभदायक होता है। वो आपकी जो तीसरी नासिका होती है, जो विशेष नस बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, सुषमा नारी होती है उसको एक्टिवेट करता है ब्राह्मणी प्राणायाम। के अलावा बुजुर्गों को ये भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपस में मिलें, और हाथों की अलग अलग एक्सरसाइज भी क्या करें, जैसे बदल बदल के क्या करें, और भी कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे मोबाइल लेफ्ट की जगह राइट में रख लिया, तो इससे क्या होता है कि मानसिक रूप से उनको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और सबसे ज्यादा मैं चाहूंगा बुजुर्गों से कि आपस में

वार्तालाप ज्यादा बना के रखें, क्योंकि वार्तालाप बनाते नहीं है तो उसकी याददाश्त पे असर होता है। तो जितना आप में बातचीत करेंगे उतना बुजुर्ग फायदेमंद रहेंगे। और श्रोताओं, घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही हमारी योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है eirnsgtalks@gmail.com। और कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में मैं अनुराधा अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म चा चा चा के बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, बोल है नीरज के और संगीत इकबाल कुरैशी के। और इस गीत को पसंद किया है गांव फरासी से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और ग्राम पारसा टोला छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी तुषारनी और खुमेंद्र मसिया ने। तो आइए सुने हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये नगमा।

ज़िला हनुमानगढ़ से कालू खां दमामी, भंवर खां दमामी, चिराग खां दमामी, मोहम्मद सलीम शिपा, अख्तर अली शिपा, रुखसा शिपा और भानपुर भोपाल से रामगोपाल विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा, ग्यारसी विश्वकर्मा, बंटी विश्वकर्मा, संजय, सूरज, सोनू, लक्ष्मी, ये सभी श्रोता सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। फिल्म तेरे नाम का बहुत ही प्यारा सा गीत जिसे आवाज़ दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, बोल हैं समीर के और तर्ज बनाई है हिमेश रेशमिया ने।

आइए अब सुनते हैं आर डी बर्मन के संगीत से सजा हुआ गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, फिल्म का नाम है बेताब और खूबसूरत आवाज़ें लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि रक्षित, शशिकांत, रिया, रीत, स्वीटी, सागर, अंशु, रितिका, ऋचा, चित्रंजन, उमेश, कमल, सरोज, रेखा, आरती, ऋषभ राजावत और राज राजपुरी राज। और इसी गीत को पसंद किया है खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, सत्या साहू और प्रतीक कुमार ने।

मैंने प्यार किया। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं असद भोपाली और संगीतकार राम लक्ष्मण। सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता, सुभाष कपूर, सुषमा कपूर, ज्योति भदौरिया, सरवत कुरैशी, सपना, साना, सोनम, संगीता, सिद्धांत, अरमान, आनंद और विशाल, ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं हातमपुरा से। और एक और पत्र हमारे हाथ में है, कवर कॉलोनी बड़वास से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज शिमाली। तो सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं धरती फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, बोल है राजेंद्र कृष्ण के और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरिया नमल, अनीता मोटवानी, राजेश रीशन, अनिल राज मोटवानी और तिलदा कैंप से कमल, हरीश, खेतपाल, प्रियंका, सुशीला और राखी। और इसी गीत को पसंद किया है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा ने।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रुचिरा काले का ख्याल गायन, राग है केदार। विलंबित ख्याल एक ताल में और द्रुत ख्याल एक ताल में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे रुचिरा काले का ख्याल गायन, राग था केदार। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ।

0: मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
3: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
3: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
2: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एविया पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ. APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान